दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम है भोर सुहानी। दोस्त हमें प्रेरित करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, गलत रास्ते पर चलने से रोकते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए दोस्त जीवन में अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है।

जिस तरह जीवन में अच्छी हवा, अच्छा खान पान जरूरी है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी बहुत जरूरी है। आपको स्वस्थ रखने में बहुत अहम भूमिका भी निभाती है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत अपने लिए, अपनी सेहत के लिए थोड़े हंसी के पल, अपनी

0: और इस समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें, साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जल्द मुलाकात होगी छोड़ के जा रहे एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

अब जानते हैं आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कौन से कार्यक्रम सुन पाएंगे। प्रातः 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 7:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात का।

8:45 का समय रहेगा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्लगी का। 10:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स।

11:10 का समय रहेगा प्रोग्राम तस्वीर का। दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम घर आंगन। 1:10 का समय होगा प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल का। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम संगीत.com। 3:10 का समय रहेगा प्रोग्राम मन।

रात्रि 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम हर श्रृंगार का, और 11:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितम्बर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता कि में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपये मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का और आज अर्पण में आपके साथ हूँ मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह को भक्तिमय बनाएं प्यारे प्यारे से भजनों के साथ। जय श्री राम।

पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से घबराता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पंछी डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा करता है। इसलिए इंसान को स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। और यकीन मानिए, हमारा ये जो भरोसा होता है ना, यही हमारी नैया को पार कराता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण मेरे यानी सुरति के साथ। आशा में आनंदित रहिए, कलेश होने पर स्थिर हो जाइए। और जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसे में नित्य प्रार्थना में लगे रहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन जो है एकदम सरल और प्रेममयी हो जाएगा।

हमने अक्सर देखा है कि हम किसी ना किसी बात को सोचकर चिंतित रहते हैं और चिंता में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि हम हकीकत भूल जाते हैं। तो भाई किसी भी बात की चिंता मत करिए, लेकिन हर एक बात में आप निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सम्मुख उपस्थित उस बात को करिए। फिर देखिए कि किस तरह से आपको आपकी चिंता में आराम मिलेगा और कहीं ना कहीं जिस रास्ते को आप तलाश रहे हो उस रास्ते की युक्ति आपको जरूर मिलेगी।

अच्छी बातें पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन जानते हैं हम भले ही बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ लें, सुन लें, सत्संग कर लें, लेकिन अच्छी बातें हमें तब तक लाभ नहीं पहुंचाएंगी जब तक कि हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार लेते।

कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। इससे जरूरी नहीं कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है हम भी पलटकर उसके साथ वैसा ही करें। इसीलिए कहते हैं ना कि उसमें और हम में फिर फर्क क्या रह जाएगा, है ना।

अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है अब श्री रामचरितमानस गान का, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर श्री रामचरितमानस का अगला भाग।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: सप्तविंशति दिनांके उद्घाटिताः भविष्यन्ति। भारतस्य पुरुष बैडमिंटन दलं जापान देशस्य आईची नगरे उपांत्य चक्रे चीन दलेन एकं त्रीणि इत्यंकांतरालेन पराजितम्। अनेन पराजयेन भारतेन कांस्य पदकं प्राप्तं। सहैव भारतस्य पदक संख्या द्वादश जाता, यस्मिन् एकं सुवर्णं, पंच रजत पदकानि तथा षट् कांस्य पदकानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जनसेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1,170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारत नाविकों की जल्द स्वदेशी वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमनिंग तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और

बीत गई है तारों वाली हसीन रात, अब सूरज ने फैलाई है अपनी बात, एक प्यारी सी सुबह आई है साथ। बोलिए गुड मॉर्निंग मेरी यानी सुरती के साथ। आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: वैसे तो FM गोल्ड के प्यारे प्यारे से गाने जैसा भी मौसम हो हसीन बना देते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें आज के मौसम की कि आखिरकार आज का मौसम कैसा रहने वाला है, तो गर्मी भरा रहने वाला है। यानी कि आज आपको मौसम में जो है गर्माहट फील होगी, धूप निकल रही है, धूप का पूरे दिन आनंद लेंगे। और तापमान की बात करें तो अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम जो है 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तो जैसा भी मौसम हो भाई, प्यारे प्यारे से गाने और प्यारे प्यारे से गानों का साथ मौसम को हसीन बना ही देते हैं, है ना। आइए सुनते हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत FM गोल्ड पर।

दिल की बात हो रही है और ऐसे में अगर हम अपने दिल को स्वस्थ ना रखें तो ये गलत होगा, क्योंकि हमारा जो दिल है वो हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बिना रुके पूरे शरीर में खून और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल, गलत खान पीन, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से हार्ट डिसीजेज आजकल बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अपने हार्ट को यानी अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें अपनानी है और फिर देखिए कैसे हमारा दिल जो है एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में क्या करना है, हरी सब्जियां और फल खानी है, साबुत अनाज, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स और बीज, इनका सेवन करना है और साथ ही तले भुने, ज़्यादा नमक और शुगर वाले खाद्य पदार्थों से बचना है, रोज़ाना व्यायाम करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल पर अपनी नजर बनाए रखनी है, धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनानी है, तनाव को बाय बाय करना है, अपने वेट को कंट्रोल करना है, डायबिटीज चेक करते रहना है, नींद जो है पर्याप्त लेनी है और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका हमने ध्यान रख लिया तो देखिए फिर हमारा दिल एकदम दुरुस्त और मस्त हो जाएगा।

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनल।

0: मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गोल्ड सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। वक्त हो गया है इजाजत लेने का, क्योंकि अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे। उसके बाद 8 बजे हिंदी में समाचार, 8:15 बजे अंग्रेजी में समाचार और 8:30 बजे उर्दू में समाचार। ठीक 8:45 पर सुनिएगा म्यूजिकल दिल लगी मेरे अनी सुरती के साथ। और अब सुनते हैं कार्यक्रम आज सवेरे।
2: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, अपने बच्चे को अपनी ही शिक्षा तक सीमित न रखें, क्योंकि वो एक अलग युग में पैदा हुआ है।

0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
1: नमस्कार। हेलो मनोज एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड दिस ब्यूटिफुल थॉट दैट मनोज हैज शेयर्ड विद अस रिगार्डिंग आवर चिल्ड्रन एंड देयर एजुकेशन। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we will be giving you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 24th of September. So let's begin with the news first, Manoj.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: द जल जीवन मिशन
3: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। इसी अवसर पर वडनगर से वाराणसी तक बाइक यात्रा को भी रवाना किया गया था।
1: मूविंग ऑन टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड भारत टैक्सी एंड मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, टेकिंग टू मेजर स्टेप्स फॉर टैक्सी ड्राइवर्स एंड फार्मर्स थ्रू भारत टैक्सी। टू व्हीलर टैक्सी एंड थ्री व्हीलर ड्राइवर्स विल बी एबल टू ज्वाइन ऑन जीरो कमीशन अपॉन रजिस्ट्रेशन। दे विल ऑल्सो रिसीव सोशल सिक्योरिटी ऑफ 5 लाख रुपीज। इट्स ऑपरेशन हैव स्टार्टेड इन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी एंड प्रयागराज। MOUs हैव ऑल्सो बीन साइंड with various institutions including Lucknow Airport, Lucknow Metro and Lucknow Police. Referring to Prayagraj Mahakumbh 2025, the Chief Minister noted that lakhs of young people help devotees to reach Sangam on their bikes through Rapido. They also help pilgrims to reach railway station and airport from Sangam. Under Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, the interest rate on loans provided to farmers

0: through the Uttar Pradesh Cooperative Gramya Vikas Bank has been reduced from 11% to 6%.
1: वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से इस महीने की 28 से 30 तारीख तक बुलाई गई 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। ये हड़ताल 26 और 27 सितंबर की सप्ताहांत की छुट्टियों के ठीक बाद हो रही है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से चालू रखने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल को टालने की अपील की है और आवश्यक बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।
0: And Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving a goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. And today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Jal Jeevan Mission.
2: The Jal Jeevan Mission, launched by the central government in 2019 with the objective of providing tap water supply to people living in remote and rural areas of the country, is benefiting people across Himachal Pradesh. So far, around 17,09,000 rural households in the state have been provided with tap water connections, and as per the provisions of the Jal Jeevan Mission, 55 liters of clean drinking water per person per day is being made available. Mamta, a resident of Badhai village in Shimla district, said that the Jal Jeevan Mission has provided tap water connections to every household in her village, bringing significant relief, particularly to women.
3: मेरा नाम ममता है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ.
4: My name is Mamta and I am a resident of Gram Panchayat Badhai in Shimla. Earlier, there was a lot of difficulty in getting water in our village. Since taps were installed in every household under the Jal Jeevan Mission, it has brought a lot of convenience, especially for the women. Now we are getting clean drinking water. I would like to thank Prime Minister Narendra Modi for providing tap water to every household.
3: मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: सिमिलरली अजय शर्मा, अ रेजिडेंट ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर एंश्योरिंग टैप वाटर सप्लाई इन रिमोट एरियाज अंडर द जल जीवन मिशन।
5: मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं हिमाचल प्रदेश जिला चंबा।
2: माई नेम इज अजय शर्मा एंड आई एम अ रेजिडेंट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। द जल जीवन मिशन इज एन इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई हैव आल्सो बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द स्कीम एंड एवरी हाउस होल्ड इन माई विलेज हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ टैप कनेक्शन। आई थैंक प्राइम मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर लॉन्चिंग द जल जीवन मिशन।
5: मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये योजना चलाई है।
2: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एनकरेज्ड हिमाचल प्रदेश फॉर इट्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन फंक्शनैलिटी असेसमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज मेड अ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ 258.07 crore टू द स्टेट अंडर जल जीवन मिशन 2.0 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। रितेश कपूर, आकाशवाणी न्यूज, शिमला।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
0: Moving on to some news from IMD, the deep depression over the Bay of Bengal has crossed the North Andhra Pradesh, South Odisha coast near Kalingapatnam and is now moving further inland. The system is continuing to trigger heavy to extremely heavy rainfall over several parts of Odisha, particularly the

0: Southern districts. India Meteorological Department has warned of further heavy rain, strong winds, waterlogging and landslides as the system moves inland. More from our correspondent.
1: In Odisha, incessant rain has disrupted normal life in several districts, especially the southern districts, with reports of waterlogging, landslides and disruption of road connectivity in vulnerable areas. The deep depression crossed the coast near Kalingapatnam late last night with winds of about 55 to 65 kilometers per hour, gusting up to 75 kilometers per hour, and is moving inland while gradually weakening. The landfall process of the deep depression continued for almost 3 hours. The IMD has issued red warning today for Navrangpur for extremely heavy rainfall, while orange warning has been issued for 6 and yellow for 8 other districts. The state government has deployed 33 Odisha Disaster Rapid Action Force teams with rescue equipment and shelters kept ready. Schools and Anganwadi centers remain closed in several vulnerable districts, while leave of government employees has been cancelled in affected areas. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
2: उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरिगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1,170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली सरकार ने इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों की आस्था और भक्ति का सम्मान करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना है। श्रीमती गुप्ता ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे गणपति विसर्जन के लिए इन कृत्रिम विसर्जन कुंडों का अधिक से अधिक उपयोग करें और श्रद्धा के साथ साथ दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें।
0: And Manoj, I have two news from Chennai Metro. But the first news, there is some awesome news dating a couple of thousand years back that we are going to talk about. So the Tamil Nadu archaeology team has found a 2,000-year-old port city called Pumpuhar, built by the Cholas and lost to tsunamis. There are more than 200 potsherds and images of structures more than 2 kilometers from the coastline off the Bay of Bengal that reiterate the region's trade links with West Asia. Underwater Pumpuhar has been explored since 1981, but this phase was the first to find torpedo jars, long barrow transport vessels associated with the Persian Gulf trade network, suggesting the movement of wine and other goods. Moving on to the next news, the state informed the Madras High Court that financial assistance were paid to a pregnant woman who was transfused with the HIV infected blood at a government hospital in Vedunagar in 2018. The court had directed the state to pay a compensation of 25 lakh rupees and provide her government employment. The court had directed the state to provide monthly assistance of 7,500 rupees to the woman.
2: अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। आईआईटी बॉम्बे ने द्वितीय वर्ष के बीटेक छात्र साहिल वाकोड़े की कथित आत्महत्या के

0: मामले की जांच के लिए कल 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा भी इस मामले की जांच कर रही है। वाकोडे 18 सितंबर को अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए थे। उन्हें कथित तौर पर मध्यावधि परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। संस्थान की समिति द्वारा प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला से भी पूछताछ किए जाने की संभावना है, जिन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है। मुंबई की एक और खबर, ठाणे पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 5,66,00,000 रुपए मूल्य का 2 किलोग्राम और 480 ग्राम से अधिक मेफेड्रोन MD जब्त किया है। ठाणे शहर अपराध शाखा की एंटी नारकोटिक सेल ने घोड़बंदर रोड और कोपरी के पास 2 छापेमारी की। स्वापक औषधि और मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस आपूर्ति नेटवर्क की जांच कर रही है।
1: मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, कर्नाटका इंडस्ट्रीज मिनिस्टर MB पाटिल लीडिंग अ हाई लेवल डेलीगेशन टू सिंगापुर एंड हेल्ड डिस्कशंस विद द सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन एंड सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स टू द स्टेट। द टॉक्स फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग बिजनेस टाइज, सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड टैलेंट कोलैबोरेशन। द मिनिस्टर इन्वाइटेड लीडिंग कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन कर्नाटकास ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2027।
0: अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर, पश्चिम बंगाल सरकार अब उन दमकल कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित करेगी जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये पदक पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले पदकों के समान होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को रेड रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणा की, जहां 226 आधुनिक दमकल गाड़ियां और उन्नत उपकरण सेवा में शामिल किए गए। मुख्यमंत्री ने दमकल विभाग में लगभग 1,500 स्थायी कर्मियों की भर्ती के निर्णय की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से जल्द ही कुल 1,400 पद भरे जाएंगे, जिनमें 1,000 दमकल संचालक, 325 दमकल इंजन संचालक, सह संचालक और 75 उप अधिकारी शामिल हैं। अगले वर्ष के भीतर अतिरिक्त 2,500 स्थायी पद सृजित किए जाएंगे। संविदा भर्ती पर निर्भर रहने के लिए पिछली सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने जोर दिया कि अनुशासित और कौशल उन्मुख बल के लिए स्थायी भर्ती आवश्यक है।
1: Moving on to Hyderabad, the BJP state president N. Ramachandra Rao in Nagaule inaugurated a massive mega blood donation drive organized by the Bharatiya Janata Yuva Morcha as part of the Seva Sankalp Abhiyan. The initiative marks Prime Minister Narendra Modi completing 25 successful years in public office as Chief Minister and Prime Minister. Inaugurating the camp and donating blood himself, Ramachandra Rao emphasized that public service must remain an integral part of every political leader's mindset. He highlighted Prime Minister Narendra Modi's transformative educational reforms, noting the significant increase in IITs, AIIMS and IIMs across the country to secure students' futures.
0: अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेनू कटारिया से।
1: थैंक यू मनोज। चेन्नई इज टू विटनेस क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ अ थंडरस्टॉर्म इन द आफ्टरनून। टेम्परेचर विल रेंज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 35 degree Celsius. Bengaluru will have generally cloudy sky with light rain or showers possible. Temperature will range from 20 degrees to 30 degrees Celsius. And Hyderabad is to experience cloudy and humid temperature with thundery showers likely in the afternoon. Temperature will range from 24 degrees Celsius to 30 degrees Celsius.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 24 सितंबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1726 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई, कलकत्ता और मद्रास में नगर निगम और महापौर अदालतों को बनाने के लिए अधिकृत किया गया।
1: I will go a little back, Manoj. I will begin with the year 1493. On this day, Christopher Columbus began his second expedition to the New World, setting sail with a fleet of 17 ships.
0: 1932 में आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित करने को लेकर एक विशेष समझौता हुआ। 1932 में आज ही के दिन बंगाल की क्रांतिकारी राष्ट्रवादी प्रीतिलता वाडेदार देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली पहली महिला बनी।
1: In 1970, the Soviet probe Luna 16 landed back on Earth after the first unmanned round trip to the moon. And in 2014, the Mars orbiter mission, also known as Mangalyaan, successfully entered the Martian orbit.
0: 1948 में आज ही के दिन होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई। 2003 में आज ही के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया। 2008 में आज ही के दिन कपिल देव भारतीय क्रिकेटर को थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने एक समारोह में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पदवी प्रदान की।
1: And I think now it is time for us to move to our last segment, wherein we are going to remember the famous personalities who either died on this day or have their birthdays or birth anniversaries on the 24th of September. So, whom are we beginning with first, Manoj?
0: सबसे पहले आज हम याद करते हैं अभिनेत्री पद्मिनी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 12 जून 1932 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नर्तकी थी, जिन्होंने अपने करियर में लगभग 250 फिल्मों में काम किया। वे अपनी बहनों ललिता और रागिनी के साथ त्रावणकोर सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध नृत्य तिकड़ी का हिस्सा थीं। उन्होंने जिस देश में गंगा बहती है, परदेसी और मेरा नाम जोकर जैसी कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 1990 में सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: जी बिल्कुल, एंड यू वेरी ट्रूली सेड दैट दे वर द थ्री ऑफ देम वर कॉल्ड द ट्रावणकोर सिस्टर्स। शी इज एक्टेड इन तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु एंड रशियन लैंग्वेज फिल्म्स, एंड शी इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द चार्मिंग ब्यूटी क्वींस ऑफ द 50s एंड 60s। एंड वेरी ट्रू, हर ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस इन जिस देश में गंगा बहती है वॉज आउटस्टैंडिंग एंड मेड a national star. But here we're going to listen to a very beautiful song from her movie Kajal and remember her.

0: और अब एक कविता। पेड़ के मरने पर भी जड़ नहीं छोड़ती है अपनी जिद, बार बार उठती है पोपले ठूंठ में, उतनी ही गति से देती है ताकत जड़ों की पोर पोर। पेड़ की हत्या पर रहती हैं जिंदा जड़ें कई दिन, धरती के गर्भ में सुरक्षित बराबर जागती हुई तगना उगने के इंतजार में। ये काव्य रचना है सुदर्शन वशिष्ठ की। आज जयंती है सुदर्शन वशिष्ठ की। उनका जन्म 24 सितंबर 1949 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियों में कविता संग्रह के अंतर्गत अनकहा, जो देख रहा हूं, युग परिवर्तन, सिंदूरी सांझ और खामोश आदमी शामिल है। आपकी चुनिंदा कहानियों के 3 संग्रह गेट संस्कृति, विशिष्ट कहानियां और मानस गंध है। आपको जम्मू अकादमी, हिमाचल अकादमी और साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
1: जी, एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू थियोडोर स्यूस, हु वाज एन अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर, पोएट, एनिमेटर, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म मेकर, एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट चिल्ड्रन

0: Christmas a lot. But the Grinch, who lived just north of Whoville, did not. The Grinch hated Christmas, the whole Christmas season. Now, please don't ask why. No one quite knows the reason.
1: आज जयंती है महुआ राय चौधरी की। उनका जन्म 24 सितंबर 1958 को दमदम पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका मूल नाम शिप्रा राय चौधरी है। वे बांग्ला भाषा सिनेमा की एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में बांग्ला फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने वर्ष 1972 में तरुण मजुमदार की प्रसिद्ध फिल्म श्रीमान पृथ्वीराज से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में श्रीमान पृथ्वीराज, पाक्का देखा, रेंजर साहब और प्रेम ओ पाप शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनका एक गीत।

0: Today we are also remembering Francis Scott Key Fitzgerald, who was an American fiction writer whose work helped to illustrate the flamboyance and excess of the jazz age. And perhaps the most notable member of the lost generation of the 1920s, he is regarded as one of the greatest American writers of the 20th century. And to talk of his novels, The Great Gatsby is a 1925 novel by him about a mysterious self-made millionaire named Jay Gatsby and his obsessive love for a wealthy married woman named Daisy Buchanan. And Manoj, aapko pata hai, there was this movie made on this novel wherein Leonardo DiCaprio played the Great Gatsby.
1: जी जी. और आज जयंती है असित सेन की. उनका जन्म 24 सितंबर 1922 को बिक्रमपुर बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था. वे एक भारतीय फिल्म निर्देशक, छायाकार, वृत्तचित्र, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक थे जिन्होंने बांग्ला और हिंदी दोनों सिनेमा में काम किया. उन्होंने हिंदी और बांग्ला में 17 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया. वे बांग्ला में दीप ज्वली जाए और उत्तर फाल्गुनी तथा हिंदी में ममता, खामोशी, अनोखी रात और सफर जैसी फिल्मों के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं.

0: आज जन्मदिन है श्रीनु वैटला का। उनका जन्म 24 सितंबर 1972 को आंध्र प्रदेश में हुआ है। वे एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं जो तेलुगु सिनेमा, खासकर एक्शन कॉमेडी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर डे डियर लिसनर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वही आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
6: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशक

0: मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपये मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को डेढ़ के मुकाबले ढाई पॉइंट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम के साथ इस गुफ्तगू से सेवा यात्रियों को अपने सफर के तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद सफर में आने वाले मकामात पर नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी खिदमात को मुंसलिक करना है। यह सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और ये अवामी खिदमत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 25 साल को उजागर करने के वसीतर सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल अफराद कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों से होकर सफर करते रहे हैं। इसमें कम्युनिटी खिदमात और अवामी राब्तों की सरगर्मियों को सबसे निचली सतह तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। ये सफर मोटरसाइकिल मुहिम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये इस तरह तरतीब दिया गया कि यात्रा के रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत, राब्तों, नौजवानों की शमूलियत, समाजी बहबूद, सकाफती राब्तों और लोगों को यकजा किया जा सके। वडनगर से वाराणसी के इस सफर में 10 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। वडनगर और वाराणसी के दरमियान दोनों तरफ से होने वाली मोटरसाइकिल यात्राओं में नौजवान अफराद मुख्तलिफ रियासतों, जिलों और गांवों से होकर गुजर रहे हैं। दिल्ली की काबीना ने दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन और मुखन्नस अफराद को रोजगार के महफूज और बावकार मौके फराहम करना है। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कल नई दिल्ली में वजीर आला रेखा गुप्ता के जेर सदारत मुनक्किद काबिनी मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे, जिनमें से 1170 ऑटो खवातीन के लिए जबकि 130 ऑटो मुखन्नस अफराद के लिए मखसूस होंगे। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम से खवातीन और मुखन्नस अफराद को इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि हर एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट खवातीन के लिए ज्यादा से ज्यादा 90 और मुखन्नस अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रिक ऑटो मुख्तस किए जाएंगे। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ टैक्सी ड्राइवरों और किसानों के लिए बड़े इकदामात करते हुए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का आगाज किया। भारत टैक्सी के जरिए टू व्हीलर टैक्सी और थ्री व्हीलर ड्राइवरों को रजिस्ट्रेशन पर कोई कमीशन नहीं देना होगा। इन ड्राइवरों को 5 लाख रुपए की सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में इसकी खिदमात शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के साथ मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज कम 9 मुसाफिरों की झुलसने से मौत हो गई। कई दीगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के नजदीक आधी रात के आसपास पेश आया। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वजारत खजाना ने कहा है कि इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक

0: लोगों की सहूलत के लिए इस महीने की 27 तारीख को यानी इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम की जानिब से इस महीने की 28 तारीख से 30 तारीख तक पूरे मुल्क में 3 दिन की मुजवजा बैंक हड़ताल के मद्देनजर यह फैसला किया गया है, क्योंकि इससे कबल 26 और 27 सितंबर को खत्म हफ्ता की तातीलात भी हैं। वजारत ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों की शाखों, दफातर, एटीएम से वाबस्ता शाखों और करेंसी चेस्ट को इतवार के रोज पूरी तरह काम करने की मंजूरी दे दी है। इधर वजारत खजाना ने कहा है कि सरकार और बैंकों की इंतजामिया ने यूनियनों से अपील की है कि वो मुजवजा हड़ताल मुलतवी कर दें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए गए हैं कि जरूरी बैंककारी खिदमत बिला रुकावट जारी रहें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से वाबस्ता एक केस में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। कालेधन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक बैंक फ्रॉड केसों के तहत प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और इसी तरह की प्राइवेट फर्मों के दीगर एसोसिएट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी के मुताबिक तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोजेक्ट के ताल्लुक से 290 करोड़ रुपए मालियत के बैंक फ्रॉड में मुलव्वस है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अजम के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: मरकजी हुकूमत के जरिए 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के दूर दराज और देही इलाकों में रहने वाले लोगों को नल से पानी फराहम करना था, जिससे हिमाचल प्रदेश में लोगों को फायदा हो रहा है। दुश्वार गुजार जोग्राफियाई इलाके के बावजूद हिमाचल प्रदेश ऐसी पहाड़ी रियासतों में से एक बनकर उभरी है, जहां तकरीबन हर घर में नल के जरिए पीने का पानी सप्लाई हो रहा है। अभी तक रियासत के तकरीबन 17,09,000 देही घरों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और जल जीवन मिशन के प्रोविजन के मुताबिक योमिया फीकस 55 लीटर साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया जा रहा है। शिमला जिले के बदेई गांव की रहने वाली ममता ने कहा कि जल जीवन मिशन ने उनके गांव के हर घर को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं, जिससे खास तौर से खवातीन को काफी राहत मिली है।
2: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी, जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
1: इसी तरह से उमंगों वाले जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दूर दराज इलाकों में नल से पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया।
3: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: फालियत के जायजे और पीने के पानी के मेयार में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से हिमाचल प्रदेश की मुसलसल हौसला अफजाई की जा रही है। जल शक्ति की वजारत ने माली साल 2026-27 के लिए जल जीवन मिशन के दूसरे मरहले के तहत रियासत के लिए 258,07,00,000 रुपए की आर्जी रकम मुख्तस की है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: खलीज बंगाल के ऊपर बनने वाला हवा के गहरे दबाव का हल्का कालिंगापट्टनम के नजदीक शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी उड़ीसा के साहिल को पार कर गया है और अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसके जेर असर उड़ीसा के कई हिस्सों, खासतौर पर जनूबी जिलों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: उड़ीसा में लगातार बारिश होने से कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई इलाकों में पानी भर जाने, चट्टानों के टुकड़े गिरने और सड़क राबते मुनक़ता हो जाने की इत्तला मिली है। कल

0: देर गए हवा के गहरे दबाव का हल्का कलिंगापट्टनम के नजदीक साहिल को पार कर गया। उस वक्त 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चल रहे थे। अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए रफ्ता रफ्ता कमजोर होता जा रहा है। ओडिशा सरकार ने कुदरती आफात की सूरत में तेजी के साथ काम करने वाली 33 टीमों को बचाव से मुतालिक साजो सामान के साथ मुतय्यन किया है। कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्सों में आज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर और झारग्राम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता और कई जनूबी जिलों में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। इनमें शिमाली और जनूबी 24 प्रगना, हावड़ा, बांकपुरा, परोलिया और बीरभूम शामिल हैं। शिमाली बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। साहिली जिलों जनूबी 24 प्रगना और मशरकी और मगरबी मिदनापुर में हवा के तेज झक्कड़ चलने की भी पेशगोई की गई है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में न जाएं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अंडमान निकोबार, जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे और मराठवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इधर गोवा, महाराष्ट्र और रायलसीमा में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी और वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। वो फाइनल में चीन के झांग शियाओ यू से 3-0 से हार गईं। रोशबीना ने 2023 के हांगजू एशियाई खेलों में भी चांदी का तमगा जीता था। कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। इस मुकाबले में चीन ने सोने का तमगा जबकि उज्बेकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता। समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इस तरह मौजूदा आलमी चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल की है, जबकि आजमूदाकार खिलाड़ी माइकल एडम्स के साथ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। इधर निहाल सरीन को लूक मैकशेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए निकिता वित्युगोव को हराया, जबकि सियाह मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने डेनियल हार्वर्ड फर्नांडिस को शिकस्त दी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि तरक्की पजीर ममालिक को फैसला साज इदारों में जगह दी जानी चाहिए। अखबार इनकलाब वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के हवाले से लिखता है, भारत अचानक रूस से खाम तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता और न ही फौरन दूसरे सप्लायर्स पर शिफ्ट हो सकता है। अखबार की एक अहम सुर्खी है, सरकारी बैंकों में 27 सितंबर बरोज एतवार भी होगा काम, हुकूमत ने हिदायत जारी की। जीरो कमीशन पर चलेगी भारत टैक्सी, ड्राइवरों को मिलेगा 5 लाख रूपये का समाजी तहफ्फुज।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में ख्वातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मेरे यानी सुरति के साथ वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। एक प्यारे से गाने के साथ करते हैं प्यारी सी शुरुआत, फिर करेंगे ना ढेर सारी बातें, लेकिन अभी सबसे पहले ये सुपर डुपर हिट सॉन्ग आपके लिए।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: अगर आप ड्राइव करते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये न्यूज आपके काम की है। जानते हैं, सारथी और वाहन पोर्टल पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस में 25 सितंबर तक करंट मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ना करने पर ई चालान और डिजिटल सेवाओं के निलंबन जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये प्रोसेस करना जरूरी है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसे आप आसानी से घर बैठे बैठे पूरा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, 25 सितंबर यानी कि कल तक का टाइम आपके पास है, तो इसका पूरा फायदा उठाएं और बिना देरी किए इसे जरूर कर दें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: म्यूजिकल दिल्लगी में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। ठीक 9:10 पर सुनना ना भूलिएगा हमारी स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा, और उसके बाद सुनना ना भूलिएगा ठीक 9:45 पर म्यूजिकल दिल्लगी, जिसका ये सफर नीतू लेकर हाजिर होंगी। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से इस समय संवाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संवाद।
1: हमारे सबके प्रेरणा स्रोत

0: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच है, हम करतल ध्वनि से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बीच में 10 अलग अलग जगहों के राजस्थान और मध्य प्रदेश जहां से हमारा रूट अभी पहुंचा है वहां पे सभी सेवा यात्री मौजूद है। वहां के गांव के जो वहां के नागरिक है वह कोई कुछ लाभार्थी भी मौजूद है और साथ में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी भी अलग अलग जगहों पे यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी अनुमति से मैं संक्षेप में इस पूरी यात्रा का अब तक का ब्यौरा आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत चल रही इस यात्रा के हर सेवा यात्री की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 2001 से आज तक आपके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष देश के युवाओं को एक नई सीख देते हैं। पद कोई भी हो, सेवा का संकल्प सबसे बड़ा होता है। इसी प्रेरणा से युवा मोर्चा ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह यात्रा आरंभ की है जो चार भावों पर चल रही है। जल, पवित्र नदियों का जल, हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ाव। जन, हर गांव हर वर्ग से सीधा संवाद और संपर्क। सेवा, इस यात्रा का केंद्र बिंदु, हर पड़ाव पर सेवा कार्य। और संकल्प, सेवा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प जिस पर आप खुद चल रहे हैं। 17 सितंबर को यात्रा वडनगर और काशी से एक साथ आरंभ हुई। भारत की पवित्र नदियों के नाम पर बनी 20 टोलियां 10 राज्यों के 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1159 गांवों से होकर यह यात्रा गुजर रही है। वडनगर से चले यात्री गुजरात की नदियों का जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे और श्री काशी से चले यात्री उत्तर प्रदेश की नदियों का जल लेकर श्री हाटकेश्वर महादेव वडनगर में जलाभिषेक करेंगे। हर पड़ाव पर लगभग 25 प्रकार के सेवा कार्य हो रहे हैं जिसमें वृक्षारोपण, स्वच्छता, फल वितरण, मेडिकल।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। कई अन्य यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस स्टेशन इलाके के दयानाथपुर गांव के पास हुई। ये स्लीपर बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस में आग लगने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना तथा लागत में कमी लाना है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन की राजकीय यात्रा पर कल अमरीका के वॉशिंगटन पहुंचे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह तथा सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi to interact via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. Now we go over live to the function where the Prime Minister is interacting with the participants of Seva Yatra.
0: 1469 वृक्षारोपण हुए हैं. टोटल सेवा यात्री जो जुड़े हैं वो 536 सेवा यात्री जुड़े हैं. टोटल पब्लिक कनेक्ट जो हुआ है वो 50,460 लोगों से उनका संपर्क हुआ है. और टोटल स्वच्छता जो अभियान हुए हैं वो 41 स्वच्छता अभियान अभी तक हुए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी, जब 20 दिनों के लिए यात्रा का हम विचार कर रहे थे, क्योंकि ये यात्रा ऑल टेरेन, ऑल वेदर एंड ऑल डे यात्रा है. रन में से भी ये लोग गुजरे हैं, बारिश में से भी गुजरे हैं, बहुत कड़ी धूप से भी गुजरे हैं, और कई बार थोड़ा उन्होंने ठंडी का भी अनुभव किया है. फिर भी इस यात्रा का रिटेंशन रेट 90% है. कहीं कोई यात्रियों के घर में कुछ इमरजेंसी आ गई हो या उनका कुछ शिक्षा को लेकर परीक्षा देना जाना हो, इसके सिवा एक भी यात्री अभी तक हमसे अलग नहीं हुआ.
2: The Delhi Cabinet has approved the Durga e-Auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched Bharat Taxi and Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, taking two major steps for taxi drivers and farmers. Through Bharat Taxi, two-wheeler taxi and three-wheeler drivers will be able to join on zero commission upon registration. They will also receive social security of 5 lakh rupees. Its operations have started in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi and Prayagraj. MOUs have also been signed with various institutions including Lucknow Airport, Lucknow Metro and Lucknow Police. Referring to Prayagraj Mahakumbh 2025, the Chief Minister noted that lakhs of young people help devotees to reach Sangam on their bikes through Rapido. They also help pilgrims to reach railway station and airport from Sangam. At least 9 passengers were burned to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. Several other passengers managed to escape by jumping out through the windows. According to police, the incident took place around midnight near Dayanathpur village under the Jewar police station area. The Bihar registered sleeper bus was travelling from Noida towards Agra and reportedly had around 35 passengers on board. The bus suddenly caught fire near Dayanathpur village. Jewar police has filed an FIR in this regard and started the investigation. Police said the identities of the 9 deceased passengers have not been yet ascertained. Efforts are underway to identify the victims and inform their families. The cause of the fire is yet to be established. Chief Minister Yogi Adityanath has expressed condolences to the families of those killed in the bus fire and directed officials to ensure proper medical treatment for the injured. Indian Wushu player Roshibina Devi Noiram signed off with a silver medal in the women's 80 kg Sanda event at the Asian Games after losing 0-2 to China's Zhang Jiaoyi in the final at Nagoya in Japan. It is the third Asian Games medal for Roshibina, who won a silver at the 2023 Hangzhou Asian Games and a bronze at the 2018 Jakarta Palembang Games. Indian rowers Satnam Singh and Salman Khan won bronze medal in the men's double sculls event this morning. The Indian pair stayed in second place until the 1500 meter mark before slipping to third in the final 500 meter. And reigning world champion D. Gukesh and R. Pragnananda registered victories as India defeated England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
2: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नया गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहां भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं, और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके। स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में, लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि

0: 8 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों की 60% था
1: जी।
0: और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है, लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया। और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला, पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी। और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है, वहां से शुरुआत हुई
1: जी। तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओ, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए

0: करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
2: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया, 2 से नहीं चलेगा, 4 करना पड़ेगा। जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचड़ा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहां तक वहां सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ। वहां पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े के जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा उसको निकालकर एकर्स जमीन निकाल के वहां पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहां प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहां एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहां की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस, और वो स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है, और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है। स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
2: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा RWA की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं इसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ

0: भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई हैं
1: और
0: एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर मंत्रालय के अंदर। ये काम तो जारी है लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा नंबर दो पर आएगा तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में और 2017 में नंबर एक पर आ गया। और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है। तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया और उसमें उन्होंने जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
0: आप दूसरे बात पर अभी चले गए हैं लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था। कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो सिक्स है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें। और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम फ्लड वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना और जहां सूखा है वहां पानी देना और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह से, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे ये सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंबा की बात है। और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहाँ प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ। वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदाने पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं। इंदौर पहले आया लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होंगे कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800 5,000 शहरों में आज की तारीख में जो

0: स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई सौ हैं, हजार तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचड़े से भी मुक्त होगा, क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है,
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है, सफाई शिक्षा से आता है। घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, चार पी, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है। पहले, हम चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी, जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सकें। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस है, उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन, जो पैड वगैरह

0: है, इनके लिए इनको इनका जो इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई, सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए, घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है, जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सालों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
1: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में सोच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टैब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
2: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
1: हाइजीन का कॉन्सेप्ट, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है, तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा कि, और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जब आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए, ये सब चीजों को मानना पड़े। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा, खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
2: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
1: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए, स्पॉटलेस। जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है, बोलते हैं ना। ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव, हर शहर।
2: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
0: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
2: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
0: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपी किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिये मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके सब जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे

0: में कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था। एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करें, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किले को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
1: काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है
2: जी।
1: और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल क्या जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारे चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
2: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज ये बताई है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए।
1: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों, खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने, कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूं। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें। हमारा घर, हमारा दफ्तर, हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा। जितना निकले कम निकले, और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
2: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
0: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो। और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
2: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं, मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
1: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर की कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
2: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वीं संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

101.9 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर म्यूजिकल दिल लगी। और आज है सितंबर का आखिरी वीरवार यानी थर्सडे, और आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस। आप जानते ही हैं कि समुद्र के जरिए व्यापार जो है वो हमेशा से होता आया है और आज भी बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसीलिए दुनिया के 80% से ज्यादा वैश्विक व्यापार का ट्रांसपोर्टेशन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के जरिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पर्यावरण संबंधी मुद्दों, कानूनी मुद्दों, सुरक्षा, समुद्री दक्षता और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, और वो जहाजों से समुद्री प्रदूषण को रोकने, दुर्घटना और क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय बनाने, शिपिंग में ज्यादा दक्षता बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, और इसीलिए मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। तो ये दिन बनते रहते हैं और हम सब इनको सेलिब्रेट भी करते हैं, साथ ही साथ गानों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है।

फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी फेम इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग, उनके निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्रदूषण और पेट्रोल डीजल पर जो निर्भरता है वो कम की जा सके।

माया, ओ जन मन सुन ले, ये दीक्षा कुमारी है, ये दीक्षा कुमारी हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी।

com, ये ईमेल आईडी याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर हम दिल का मेल बॉक्स में आपकी रिक्वेस्ट लेंगे और उन्हें पूरी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नीतू को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन के मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। श्री मोदी ने ये बात गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है।
1: हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देश

के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा, सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नाओ रेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सलमान सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से भारत को एक और पदक दिलाया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि टीम की ये उपलब्धि उसके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और जुझारू भावना को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Parmo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।

0: अध्यक्षता की। बैठक में सदस्य देशों के बीच साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के अंतर्गत ये विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलन के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के अंतर्गत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समोआ के उप प्रधानमंत्री और वित्त तथा फिजी मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, सोलेमन द्वीप समूह, तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। टोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों ने न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वनुआतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों को जल्द स्वदेश भेजने के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 20 और 21 सितंबर के दौरान BSF जवानों ने भारत बांग्लादेश सीमा सड़क के पास तस्करी से लाए गए विदेशी मूल के सोने के 27 टुकड़े बरामद किए, जिनका वजन लगभग 3 किलो 15 ग्राम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमरीका की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर वॉशिंगटन में है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलोनिया ट्रंप ने शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान आज व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत समारोह और राजकीय रात्रि भोज होगा, जबकि कल शी जिनपिंग नेशनल आर्काइव्स का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों को लेकर तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह यात्रा हो रही है। सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष सीनेटर रोजर विकर ने इस स्वागत की आलोचना की और चीन के सैन्य विस्तार तथा ईरान को उसके समर्थन जैसे मुद्दे उठाने की अपील की। विदेश मंत्री

0: मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर की बातचीत जरूरी है। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस यात्रा से किसी बड़े समझौते की संभावना कम है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इस सप्ताह की शुरुआत में रावलकोट में दो अलग अलग घटनाएं सामने आईं, जिनमें दो मोटरसाइकिल सवारों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और इसके और बिगड़ने की आशंका है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रुशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रुशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रुशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल दो दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सतनाम सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से भारत को एक और पदक मिला है। दोनों खिलाड़ियों का संयम और आपसी तालमेल विशेष रूप से सराहनीय रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि उन्हें आने वाले वर्ष में और बड़ी सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें की। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर हमले की निंदा की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग अमरीका की 3 दिन की यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे। जापान में एशियाई खेलों में रुशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। नौकायन में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में इंग्लैंड को मात दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स। मैं हूं आपके साथ नीतू और ये जो पहला गाना आपने सुना ये अभिनेत्री पद्मिनी को याद करते हुए प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने सुनना चाहा था। उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा और आप भी अगर अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर जल्दी से लिख भेजिए अपनी पसंद के गीत के बोल और फिल्म का नाम अगर आपको पता है।

तो, और हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश शामिल करने की। अभी जिनकी फरमाइश पूरी हो रही है वो है जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं।

0: वाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप, और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें अब बारी है अगले गाने की, जो कि है फहीम शालवाफ की पसंद का, और ये है सफर फिल्म से गाना। और सफर फिल्म का गाना सुनकर वाकई दिल खुश हो जाता है। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, अगर आपने देखी हो तो। फिलहाल तो गाने

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
6: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूँ?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

ये जो गाना आपने अभी सुना गैम्बलर फिल्म से, इसे सुनना चाहा था अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक ने। और आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स, मैं हूं नीतू आपके साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और अब बारी है अगले गाने की, जिसे सुनना चाहा है फारूक अली खान, फैजी, फराज, ताहिरा, फरहीन, फरहान और फारिया ने।

भगवती सोलंकी, मधुराणी, अनीता वर्मा, कौशल्या देवी, दयावती, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव, इन सभी की फरमाइश पर आ रहा है प्रोग्राम का आखिरी गीत। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और नीतू को दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। यात्रियों ने लोगों से संवाद किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतरक्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता और सतनाम सिंह तथा सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबीना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियाओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanagar to Varanasi. The Prime Minister said, Seva Parmo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said that they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. The Delhi Cabinet has approved the Durga e-Auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under the scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated

तस्वीर शुरू हो गया है और आज हम जिस जगह की बात करेंगे वो वाराणसी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था और वो जगह भी जहां सम्राट अशोक की वो लाट संरक्षित है जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ये है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

आज हम बात कर रहे हैं सारनाथ की। भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वो पहुंचे सारनाथ, जहां उन्होंने अपने पांच शिष्यों को पहला उपदेश दिया। उन्हीं पांच शिष्यों ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यहाँ आपको प्राचीन खंडहर देखने को मिलेंगे जो ज्ञान प्राप्ति की कहानियां सुनाते हैं, जबकि बौद्ध धर्म की विरासत सारनाथ की शानदार वास्तुकला, ऊंचे स्तूप, मठ और मंदिर और बेहतरीन मूर्तियों में आज भी देखी जा सकती है। उस भव्यता का एहसास आप कर सकते हैं जब आप जाएंगे धामेक स्तूप देखने के लिए। धामेक स्तूप जो है वो 42 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसके अंदर जाने का कोई जरिया नहीं है, यानी कि एक सॉलिड स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और यहाँ पर उनकी भी एक मूर्ति है। इस तरह के जो स्मारक हैं, खंडहर हैं, जो अवशेष हैं, उन्हें देखकर ना बहुत कुछ आपको समझ में आता है उस इतिहास के बारे में जो एक समय में बहुत भव्य था, लेकिन अब सिर्फ उसकी निशानियाँ हैं।

सारनाथ में बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है मूलगंध कुटी विहार, जिसे श्रीलंका टेंपल कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण श्रीलंका के राजा ने करवाया था। उनकी मूर्ति भी इस मंदिर परिसर में लगी हुई है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की गोल्डन कलर की एक मूर्ति है और कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध के अवशेष संरक्षित हैं, लेकिन उन्हें आम दिनों में नहीं देखा जा सकता। सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन अस्थियों और मूर्तियों को निकाला जाता है और उस जगह पर ले जाया जाता है जहां उन्होंने उपदेश दिया था। वहां परिक्रमा करने के बाद उन अवशेषों को इसी मंदिर में दर्शन के लिए रख दिया जाता है। उस दिन यहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारे बौद्ध अनुयायी आते हैं दर्शनों के लिए।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: Attention, national recognition for your hard work. For those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices, the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period, 10th August to September 30th, 2026. So, what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ ये है तस्वीर और आज हम बात कर रहे हैं सारनाथ की। और जब आप सारनाथ का नाम इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको भगवान बुद्ध की खड़ी हुई एक विशालकाय प्रतिमा दिखाई देगी। इसे ही देखने बहुत लोग यहाँ आते हैं। ये प्रतिमा है थाई मॉनेस्ट्री में। श्रीलंकन टेम्पल के अलावा यहाँ चाइनीज टेम्पल भी है। यानी सारनाथ देखा जाए तो सिर्फ वहाँ पर भारतीय ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों की वास्तुकला और परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले कई देशों ने यहाँ अपने अपने मठ और मंदिर बनाए हैं, जिससे ये जगह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बन गई है।

इतिहास में अगर आपको रुचि है तो सारनाथ संग्रहालय आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना साइट म्यूजियम माना जाता है और यहाँ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मध्यकाल तक की बहुत सारी महत्वपूर्ण पुरावस्तुएं सुरक्षित हैं। लेकिन संग्रहालय का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण जो है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था अशोक चिन्ह, चार शेरों वाला राष्ट्रीय प्रतीक जिसे हम सरकारी दस्तावेजों और सिक्कों पर देखते हैं, उसे असल में आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है तस्वीर। मैं हूँ नीतू और हम बातें कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो कि एकदम शांत है, जहाँ आपको बौद्ध भिक्षुओं के शांत मंत्रोच्चार सुनाई देंगे, जहाँ प्रार्थना चक्र है, ध्यान करते हुए श्रद्धालु हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक जो कि सारनाथ नाम की इस जगह को एक व्यापक रूप दे देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं और देश विदेश से बहुत से बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं। आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि जब मौसम सुहाना होता है ना तो स्मारकों को टटोलने के लिए सबसे अच्छा रहता है और पैदल चलने के लिए भी सबसे अच्छा, क्योंकि आप स्मारकों में तो बहुत दूर दूर तक बड़ी बड़ी जगह तक फैले होते हैं उनके खंडहर, उनके अवशेष, तो वहाँ आपको पैदल चलना है, उन्हें अच्छे से समझना है, तो सबसे अच्छा जरिया है कि आप अच्छे मौसम में जाएं ताकि आप हर चीज़ को ठीक से देख पाएं, महसूस कर पाएं।

सारनाथ पहुंचने के लिए प्रमुख हवाई अड्डा और जंक्शन वाराणसी में ही है। वहां से आपको ऑटो या टैक्सी लेकर सारनाथ पहुंचना होगा। अगर आप वाराणसी घूमने जा रहे हैं तो और भी अच्छा है, आप सारनाथ भी घूम आइए, बिल्कुल पास है। और दोनों जगह लेकिन जो है वो काफी कॉन्ट्रास्ट है दोनों जगहों में। वाराणसी जहां भीड़ भाड़ वाली चहल पहल वाली जगह है, वहीं सारनाथ शांत जगह है। और जिंदगी में चहल पहल भागदौड़ के बाद शांति की चाहत तो होती ही है ना, और शांति के बाद फिर से उसी जद्दोजहद में जाने की तमन्ना जहां से हम निकल कर आए थे। ऐसी ही है ना लाइफ, किसी एक ठिकाने पर टिकती नहीं है, ना ही किसी एक चीज से खुशी मिलती है। एक मंजिल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो शेर कहना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये जिंदगी ऐसी ही है, सब कुछ मिल जाए तब भी हम खुश नहीं होते कभी कभी, और जब कुछ नहीं होता है तब तो खैर बात ही क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज से परेशान होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं होता वो उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं।

इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले, क्योंकि तस्वीर का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों

0: की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for

0: आंगन।
1: नमस्कार। आज सुबह जब खिड़की खुली दोस्तों, तो हवा में सच बताऊं वो पहली ठंडक महसूस हुई जो बताती है कि मौसम अब करवट लेने लगा है। उसी ठंडी हवा के साथ हम आपके बीच फिर से हाजिर हैं और कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन। और स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का और
2: मेरा यानी श्रुति पुरी का नमस्कार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको सुनाई देता है आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी इसे सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े रहना पसंद करते हैं, उनके लिए हम मौजूद हैं YouTube के चैनल AIR न्यूज़ लाइव 24x7 पर।
1: भाई वाह, क्या बात।

0: है श्रुति जी, बड़ी जबरदस्त आपने गाड़ी चलाई, लेकिन मेरा तो ये कहना, मेरा क्या, संत कबीर का ये कहना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यानी जिंदगी में जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और सहजता से ही चलने पर असली सफलता मिलती है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है आपने। और वैसे भी रश्मि जी, अब त्योहारों का मौसम आ रहा है और धीरे धीरे ये ना हमारे घर आंगन में भी दस्तक दे रहा है और हमने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। तो इसी उत्सव के माहौल को ध्यान में रखते हुए हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं। और

0: मीठा सवाल है।
1: हाँ मीठा मीठा सवाल। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बताइए घर में कोई खास मौका या त्योहार आने पर आप मीठे में सबसे पहले क्या बनाना तय करते हैं, और अपने जवाब हमें भेजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पर। ईमेल आईडी एक बार फिर नोट करिए fmgoldga@gmail.com पर। और जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचे, आइए सुनते हैं ये गीत।

पेइंग गेस्ट। इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। रश्मि देखो, पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से बात हो रही थी मेरी, जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके

0: घर की खिड़की से बंदरगाह पे लगे बड़े बड़े जहाज दिखते हैं। ये सुनकर मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई कि हमारा देश तो सदियों से समुन्द्र से जुड़ा हुआ है और आज यानी 24 सितंबर को हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है
1: जी।
0: और इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस साल 2026 और 27 दोनों के लिए एक साझा विषय दिया है जिसका भाव है नीति को व्यवहार में बदलना और समुद्री उत्कृष्टता को शक्ति देना।
1: बिल्कुल। और भाई जो भारत है वो तो उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है श्रुति, और हमारे नाविक और मछुआरे परिवार इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। तो भाई उनकी मेहनत के बिना ना तो बंदरगाह चलेंगे ना ही व्यापार आगे बढ़ेगा। और देखिए ना संभावनाएं समुद्री पर्यटन की कितनी अपार संभावनाएं हैं। गोवा, केरल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात के तट और इसके अलावा जिसे कहते हैं जैव विविधता, मछुआरे समुदाय और जलवायु संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार है समुद्र। तो भाई इन तटीय परिवारों को हमारा प्रणाम जिनकी वजह से हमारे घरों तक इतनी सारी चीजें पहुंच पाती हैं।
0: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म समुंदर में।
1: श्रुति, कल शाम को मुझे एक जगह ना ढोल बजने की आवाज आई, तो ना सच बताऊं कि मेरा जो मन है ना एकदम अपने गांव के मेले में पहुंच गया। वहां ना इतनी भीड़ और इतनी रौनक और इतने रंग एक साथ होते थे, और वहां ना एक हर साल एक मेला लगता था जिसमें झूले होते थे और मिट्टी के खिलौने होते थे, और सच बताऊं वो मशहूर जलेबी वाला जिसकी दुकान पर सबसे लंबी कतार लगती थी।
0: असल में गांव में लगने वाले मेले सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं होते, बल्कि हमारी गांव की संस्कृति की धड़कन हुआ करते हैं। फसल कटने के बाद पूरे साल की मेहनत का उत्सव इसी मेले में मनाया जाता है, और तभी लोकगीत गाए जाते हैं। कठपुतली, नौटंकी जैसी लोक कलाओं का मंचन तो पुराने समय में कितना हुआ करता था, और साथ ही जो गांव के कारीगरों को भी अपनी मेहनत को बेचने का ये मौका सबसे बढ़िया मिलता था।
1: बिल्कुल, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं और जो हमारे बुनकर हैं, लकड़ी के खिलौने गढ़ने वाले जो कारीगर हैं, भाई पूरे साल इन्हीं मेलों के इंतजार में तो रहते थे, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता था। यानी ये छोटे छोटे मेले गाँव की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी हुआ करते थे।
0: देखो, भारत में तो कुछ मेलों का इतिहास सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला सदियों पुराना ऊंट मेला है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है और आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसी तरह बिहार का सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े पशु मेलों में गिना जाता है ये मेला।
1: और जो अब देखो आपने कहा था ना, भाई सवेरे थोड़ा थोड़ा ठंडक सी जो महसूस हो रही है, तो अब हमें मेलों की भी याद आने लग गई। और भाई हमारे जो हरियाणा का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आएगा, और बहुत खूबसूरत वो मेला होता है। कुशल कारीगरों को मंच देने के लिए वो शुरू किया गया था।
0: और आपको एक बात बताऊं कि इस मेले में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भी हजारों शिल्पकार और लाखों दर्शक पहुंचते हैं। और इसी तरह मेरठ का नौचंदी मेला तो आपको याद ही होगा, और अभी देखो नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में नरी सैमरी का मेला लगता है, कैला देवी का मेला लगता है, और करौली का मेला भी बड़ा प्रसिद्ध मेला है।
1: वही श्रुति, वक्त के साथ इन मेलों का स्वरूप भी बदल गया है। पहले जहाँ ये छोटे कस्बों और गाँव का सामाजिक केंद्र हुआ करते थे, वहीं आज जो ये मेले हैं ना, बड़े संगठित आयोजन और प्रदर्शनी का रूप ले चुके हैं, जहाँ जो कारीगर हैं वो सीधे बड़े बाजार और खरीदारों तक पहुँचने का उन्हें मौका मिलता है।
0: देखो, फिर भी उनकी आत्मा वही पुरानी है। आज भी अगर मौका मिले तो किसी नजदीकी मेले में जाकर वो पुराना अनुभव फिर से जिया जा सकता है कि नहीं।

0: अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, फिल्म थी राजा रानी।
1: और मेलों से हम वापस आते हैं अपने घर की ओर। जो मीठा आप पूछ रही थी ना श्रुति जी, तो जवाब आ चुका है हमेशा की तरह।
0: बल्कि मैं कहूंगी मेलों से मेलों पर आते हैं
1: जी, मेलों से मेल पर आते हैं। तो पहली मेल आ गई है नवीन भाटिया जी, मोती नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कह रहे हैं कि हमें पसंद है भाई बेसन के लड्डू, बहुत बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बेसन के लड्डू को नवीन भाटिया जी। आगे
0: देखो, मेरे पास भी एक मेल आई है, ये आई है डॉक्टर राजेश्वर राव जी की। ये लिखते हैं कि हम तो पायसम बनाने में बड़ा मजा आता है, और जिसे हिंदी में खीर कहते हैं, विद ड्राई फ्रूट्स। और पायसम में तो और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बड़ी स्वादिष्ट होती है पायसम खाने में।
1: और हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश कुमार ख्याला से, और लिख रहे हैं कि त्योहारों पर हलवा बनाते हैं और प्रोग्राम और गाने जो है वो साथ में होते हैं, तो भाई अब बहुत अच्छा लगता है हमें। भाई क्या बात है, मीठे मीठे गीतों और मीठा मीठा हलवा, तो भाई ये तो जबरदस्त एक जोड़ी बन जाती
0: है। और देखिए, हलवा किसी और के यहाँ भी बनाया जाता है। ये है सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।
1: अच्छा,
0: ये लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सूजी का हलवा और दूध की खीर बनती है।
1: भाई क्या बात है, भाई हम तो कहते हैं ना ये दिल है देसी। भाई जो देसी खाने में जो मजा है अपना, जो भारतीय खान पान है वो गजब है। और एक और मेल आया है शशि भूषण आदर्श नगर दिल्ली से, कह रहे हैं कि मीठे में खीर बनाते हैं, तो भाई देखिए दिल है देसी बिल्कुल, है ना।
0: और देसी अगर दिल है तो गाना भी देसी होना चाहिए ना।
1: तो ऐसे ही खत लिखते रहिए, मेल लिखते रहिए और जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ।

0: देखिए रश्मि जी, कितना प्यारा गीत अभी हमने श्रोताओं को सुनाया, और ये गीत था फिल्म आए दिन बहार के, इस फिल्म से हमने लिया था, और गायिका थी आशा भोसले। और क्या हुआ रश्मि जी, एक मैं आपसे एक वाकया वो करना चाहती थी साझा। पिछले हफ्ते मैं ना घर की सफाई कर रही थी और एक दराज खुली तो उसमें न जाने कितने पुराने चार्जर और दो खराब मोबाइल पड़े हुए थे। तभी ख्याल आया कि ऐसा तो शायद हर घर में होता होगा
1: जी। और ये जो पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, इसको कहा जाता है ई कचरा। और भारत में इसके सुरक्षित निपटान के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं, और इन नियमों के तहत हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है श्रुति कि वो पुराना मोबाइल और पुरानी बैटरी या खराब उपकरण सामान्य कूड़े में ना फेंके। जी,
0: और सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए। कई मोबाइल कंपनियां और शोरूम भी आजकल तो पुराना फोन वापस लेने की सुविधा दे रहे हैं, और एक्चुअली इन जो उपकरणों में हानिकारक तत्व होते हैं जो अगर मिट्टी और पानी में मिल जाएं तो सेहत को बड़ा नुकसान साबित हो सकता है।
1: और देखिए, जो पुराना सामान जो होता है ना, वो कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है, वो भी हम कहेंगे तो वो सही नहीं होता, क्योंकि ये असंगठित जो बाजार में इन्हें बिना किसी सुरक्षा के लिए अगर तोड़ा जाता है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जब अगली बार अपने घर से श्रुति कोई पुराना मोबाइल या बैटरी निकाले तो भाई थोड़ी सजगता जरूर रखें और उन्हें आप सही जगह पहुंचाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है।
0: और मेरी प्रार्थना ये है कि अगला गीत सुने।
1: जी।

0: शर्मीली फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे। रश्मि, आज सुबह जब चाय बनाते वक्त शहद की शीशी मेरे हाथ में आई ना, मैं शहद वाली चाय पीती हूँ, तो एक पुराना सवाल मेरे मन में कौंधा। आपको पता है कि मिस्र में हजारों साल पुराना शहद मिला है, वो आज भी खाने लायक है।
1: अच्छा अश्रुति, ये ना इस बड़ा दिलचस्प विज्ञान है इसके पीछे। दरअसल क्या होता है, शहद में ना पानी की मात्रा बहुत कम होती है और ये हवा से नमी खींचने का गुण रखता है, जिसमें

0: बैक्टीरिया के लिए जीवित रहना बिल्कुल असंभव हो जाता है।
1: हाँ, तभी तो शहद का जो पीएच स्तर है ना, वो काफी अम्लीय होता है
0: देखिए
1: और लगभग 3 से 4.5 के बीच, जैसे नींबू के रस में होता है, वो
0: जी,
1: भी तो अम्लीय माना जाता है। तो इस माहौल में ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव हैं वो पनप ही नहीं पाते।
0: और इसके अलावा श्रुति, मधुमक्खियां जो हैं वो शहद बनाते समय एक एंजाइम भी छोड़ती हैं जिसमें हल्की मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, और ये भी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करता है।
1: यही तो वजह है कि हमारी नानी दादी हमेशा कहा करती थी कि शहद को कभी फ्रिज में मत रखो, बस उसे तो कस के बंद करके
0: मैं
1: बर्तन
0: क्या
1: में
0: बात है श्रुति, आज तो मीठा मीठा
1: रख
0: बिल्कुल मीठे मीठे गीत सुना रहे हो, मीठा बनवा रही
1: दो।
0: हो और शहद के बारे में बता रही
1: एक
0: हो
1: काम करते हैं, मीठा नहीं, आपको थोड़ा खट्टा मीठा एहसास दिला देते हैं इस गीत से।
0: जी

0: खट्टा मीठा फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और श्रुति, घर की दहलीज पे जो है गणपति बप्पा जब अपने धाम लौटने की तैयारी करते हैं ना, तो सच बताऊं हर और एक खामोश सी उदासी और एक ना भीनी सी मुस्कान ना दोनों साथ साथ उतर आती हैं। तो बप्पा की विदाई का दिन बस आने ही वाला है और जो लोग दो दिन तीन दिन के गणपति रखते हैं वो लोग भी लगातार उनकी विदाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, इस विदाई को कैसे भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए और साथ ही धरती के प्रति जिम्मेदारी भी हम अपनी निभाई जाए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विसर्जन नदी या तालाब में सीधे करने की जगह अब कई शहरों में नगर निगम ने कृत्रिम कुंड और मोबाइल टैंकों की व्यवस्था की है, जहां विसर्जन करने से नदी का जल जो है वो भी शुद्ध रहेगा और विधि विधान भी पूरा हो पाएगा
1: जी। और अगर जुलूस की बात करें श्रुति, तो भाई ढोल ताशे भजन और कीर्तन से माहौल को इतना ही उत्सवी बनाया जा सकता है। बस ध्यान देना ये है कि रात 10 बजे के बाद आप लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी सी धीमी कर दें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और जो फूल माला हम बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं, नारियल जैसी जो पूजा सामग्री हो उसको पानी में बहाने की जगह जो निर्माल्य है, निर्माल्य कलश में डाला जाए। और सच बताऊं बहुत सी जगह ना इसे खाद बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो, यानी बप्पा का प्रसाद धरती के लिए भी वरदान बन सकता है। जो कल बप्पा की विदाई करें तो दिल में धरती के लिए भी उतनी ही श्रद्धा रखें, उतनी ही सच्चाई और उतनी ही भव्यता और दिव्यता से गणपति को विदाई दें
1: जी, और ताकि वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

दो लोग और जुड़ गए हैं, राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, विवेक चौधरी। वैसे कहते हैं जो भी खाना बना हो लेकिन जरूरी ये है कि वो बाजारी खान पान से जो है रसायनों से मुक्त हो। और साथ में गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं रोहतक से, कह रहे हैं कि भाई खसखस का हलवा या पोस्त का हलवा उसको रात को भिगो दें और सुबह सिलबट्टे पर पीस कर बादाम मिला दें और दिमाग के लिए दवाई का काम करता है और दूध भी डालना पड़ता है। पूरी सर्दी ये खाएं और रोजाना और सुबह शरीर के में ताकत का भी काम करता है। शुक्रिया।

0: हैं जाने की, और साथ में कहते हैं
1: कि आप सभी को बहुत सारा स्नेह हमारी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, और हम फिर से इस घर आंगन में आपको मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे श्रुति पुरी
0: और रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा

यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे अभिनेता फिरोज खान की। फिरोज खान एक अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। वो हिंदी फिल्मों के मोस्ट स्टाइलिश एक्टर्स में से एक थे। उस दौर में उनके गुड लुक्स और स्टाइल ने फैंस का दिल जीता और वो सबके चहेते बन गए थे। फिरोज खान ने अपने करियर में 60 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और फिल्मों के लोकप्रिय स्टाइल आइकन्स में से एक बन गए थे। उनके फिल्मों की बात की जाए तो आरजू, सफर, मेला, अपराध, खोटे सिक्के, काला सोना, धर्मात्मा, नागिन, कुर्बानी, जांबाज और वेलकम जैसी बेहतरीन फिल्मों में दमदार भूमिकाओं से फिरोज ने सभी का दिल जीता है। तो आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम उन्हीं की बात करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी, करियर से जुड़ी बातें हम करेंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, फिरोज खान के चेहरे में वो जादू जरूर था जिसने हम सबको उन पर फिदा कर दिया था। उस दौर में उनके गुड लुक्स और स्टाइल ने फैंस का दिल जीता था और फिरोज खान सबके चहेते बन गए थे। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में हुआ था। उनका असली नाम जुल्फिकार अली शाह खान था। वो एक अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उनके निर्देशन में बनी कुछ फिल्में आज भी आइकॉनिक मानी जाती हैं। अच्छी कहानी के साथ दमदार संगीत उनकी फिल्मों का हिस्सा रहा। आपको बता दें कि 70-80 के दशक में सबसे हैंडसम हीरोज में से एक फिरोज को इंडस्ट्री का काउबॉय भी कहा जाता था। आज भी फिरोज खान हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में 60 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें आरजू, सफर, मेला, अपराध, खोटे सिक्के, काला सोना, उपासना, धर्मात्मा, नागिन, कुर्बानी, जाबाज जैसी सफल हिंदी फिल्मों में बेहतरीन भूमिकाओं से फिरोज खान ने हम सबका दिल जीता।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: जी हाँ, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप बने हुए हैं और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेता फिरोज खान की।

जी हाँ, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ हम बने हुए हैं। और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता और निर्देशक फिरोज खान की। वे कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहे, जिनमें आरजू, सफर, मेला, अपराध, खोटे सिक्के, उपासना, काला सोना, धर्मात्मा, नागिन, कुर्बानी, जांबाज जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उनके शुरुआती दौर की बात की जाए तो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद फिरोज खान मुंबई आए और उन्होंने पहली फिल्म 1956 में की थी, जिसमें उनका एक छोटा सा किरदार था। इस फिल्म का नाम हम सब चोर है था। इसके बाद उन्होंने जमाना, बड़े सरकार और दीदी जैसी फिल्मों में सेकंड लीड के तौर पर काम किया था। 1960 और 70 के दौरान फिरोज खान ने कई फिल्मों में अभिनय किया। बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म घर की लाज थी, जिसमें उनके ऑपोजिट निरूपा रॉय ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फनी मजूमदार की फिल्म ऊंचे लोग उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं एक सुपरहिट गीत फिल्म जांबाज से, जो पिक्चराइज्ड है फिरोज खान और श्रीदेवी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता और निर्देशक फिरोज खान की। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कलाकार हुए जो हमेशा अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते थे और करते हैं, और उन्हीं कलाकारों में से एक थे फिरोज खान, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल के जरिए। उनका एक किस्सा बेहद मशहूर है। 1976 की बात है, प्रकाश मेहरा फिल्म हेरा फेरी का ऑफर लेकर फिल्म का प्रपोजल लेकर फिरोज खान के पास पहुंचे, लेकिन फिरोज खान ने ये फिल्म ठुकरा दी, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग जो थी वो संडे को थी, और फिरोज खान ने कहा कि हम संडे को काम नहीं करते। ऐसा कहकर उन्होंने फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया, और फिरोज के बाद ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आकर गिरी। तो ऐसे ही थे हमारे फिरोज खान। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं फिल्म कुर्बानी से, और कलाकार बेमिसाल का सफर जारी रहेगा। सुनते रहिए FM गोल्ड।

आपको बता दें फिरोज खान को 1970 में फिल्म आदमी और इंसान के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। वहीं साल 2000 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से वे सम्मानित किए गए थे। वे अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहे, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जिनमें ऊंचे लोग, आरजू, रात और दिन,

औरत आजा सनम अंजाम, आदमी और इंसान, सफर उपासना, मेला अपराध, खोटे सिक्के, गीता मेरा नाम, धर्मात्मा, काला सोना, नागिन, कुर्बानी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। और कई ऐसी फिल्में रहीं जिनमें उन्होंने अभिनेता के साथ साथ एक निर्माता और निर्देशक की भी बखूबी भूमिका निभाई। उनमें अपराध, धर्मात्मा, कुर्बानी, जाबाज, दयावान, यलगार, प्रेमगन और जानाशीन जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि साल 2007 में अनीस बज़मी के डायरेक्शन में बनी वेलकम फिरोज खान की आखिरी फिल्म मानी जाती है।

फिरोज खान को हमेशा एक अलग अंदाज और खास शैली के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेमिसाल में बस इतना ही। फिलहाल वक्त तो चला है समाचारों का, सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म, रहनुमा उसूल होना चाहिए। वज़ीर-ए-खारिजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वज़राए-ए-खारिजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए और हर फर्द में ये एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी खिदमत ही रहनुमा उसूल होना चाहिए, खा कोई भी फर्द कितने ही आला ओहदे पर पहुंच जाए। जनाब मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा करने वाले अफराद के साथ वर्चुअल वसीले से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेवा परमो धर्म, खिदमत आला तरीन फर्ज है और ये हमेशा रहनुमा उसूल रहना चाहिए।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: गुफ्तगू के दौरान सेवायात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने तजर्बात शेयर किए। इन लोगों ने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने पौधे लगाए और सफाई सुथराई की मुहिम में शामिल हुए। इन अफराद ने यह भी कहा कि सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने आवाम से बात की और सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के फायदों के बारे में लोगों ने मुस्बत रद्दअमल का इजहार किया। वज़ीर-ए-खारिजा डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर इश्तराक FIPIC से मुतालिक फोरम के वज़राए-ए-खारिजा की मीटिंग की सदारत की। मज़कूरा मीटिंग से FIPIC शराकत दारी और इलाकाई नीज कसीर रुखी फोरमों में इश्तराक व तआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करने से मुतालिक अहद का इआदा किया गया। ये FIPIC फ्रेमवर्क के तहत मुनाकिद होने वाली वज़राए-ए-खारिजा की दूसरी मीटिंग थी। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज कम 9 मुसाफिर की झुलसने से मौत हो गई। कई दीगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के नजदीक आधी रात के आसपास पेश आया। पुलिस ने कहा है कि हलाक होने वाले 9 मुसाफिरों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में लोगों की अमवात होने पर रंजोगम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया है, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार के रोज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके

0: क्षेत्रीय के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीमी निजाम में अहम तब्दीलियां लाना है। ये हुनरमंदी, तहकीक और अख्तरा को भी फरोग देती है। ओडिशा कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज के सिलसिले में इकदाम कर रहा है। आला तालीम को बेहतर बनाने और तलबा को नए हुनर सीखने की खातिर ज्यादा मौके फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। ओडिशा में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नई पॉलिसी से हम आहंग हैं। ये तालीम में भारतीय जबानों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी अहमियत देती है। हुकूमत तालीमी इदारों और सनतों के दरमियान रबते को बेहतर बनाने और तहकीक को मुस्तहकम करने के लिए भी काम कर रही है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीम को ज्यादा लचकदार, सबकी शमूलियत पर मबनी और तलबा के लिए साजगार बनाना है। दीपक कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की मजमुई अंदरूनी मुल्क मांग के तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज नई दिल्ली में भारत के 13वें पब्लिक अफेयर्स फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब कृष्णन ने कहा कि भारत सालाना तकरीबन 32 करोड़ से लेकर 33 करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 5 बड़ी मोबाइल फोन ब्रांड्स भारत में मौजूद हैं और वो मुल्क में अपने मोबाइल फोन तैयार कर रही हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने, अंदरूनी मुल्क वैल्यू एडिशन में इजाफा करने, सप्लाई चेन निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने और भारत की आलमी मुसाबिकत को वसत देने की खातिर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है। भारत ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर मुश्तरका मेजबानी के 1SCD का आगाज किया है, जो सिकल सेल की देखभाल के सिलसिले में बराबरी को फरोग देने और यकसर तब्दीली लाने से मुतालिक एक आलमी शराकत दारी है। तकरीब से खिताब करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने से मुतालिक कौमी मिशन के जरिए इस बीमारी के सिलसिले में भारत के जामे इकदाम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2023 में इस मिशन का आगाज हुआ था। G4 के मुल्कों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़राए खारिजा ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जल्द इस्लाहात पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर वजीर खारिजा डॉ एस जयशंकर और ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़राए खारिजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका वजारती बयान में उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों जुमरों में सलामती काउंसिल की तौसी को इस्लाहात में मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आज बिहार, झारखंड, विदर्भ और सिक्किम में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य

0: शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ने शुरू से ही अपना गलबा जारी रखा, जिसकी वजह से हाफ टाइम में उसे 23-11 की बढ़तरी हासिल हो गई थी, जिसे टीम ने सेकेंड हाफ में भी जारी रखा। सेकेंड हाफ को भारतीय टीम ने 14-10 से जीत लिया। इस दौरान खवातीन की भारतीय टीम ने भी इफ्तिताही मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद ईरान को 37-23 से हराकर जीत की अपनी मुहिम बरकरार रखी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म रहनुमा उसूल होना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जजायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वजराए खारजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर

0: covered semi-finals with a convincing 37-21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India stormed into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव

0: विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
5: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार किया।

0: आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और फिलहाल वक्त हो गया है संगीत.com का। एक बार फिर से मैं रुचिका स्वागत करती हूं आप सभी का।

जी हाँ, ये सुपरहिट गीत आपने सुना फिल्म बेताब से, और कहाँ सुना आपने, एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और संगीत.com का सफर जारी है, आपको बता दें। चलिए फिलहाल एक और गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, फिल्म सौतन का। जी हाँ, ये फिल्म आपको याद होगी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, टीना मुनीम और पद्मिनी कोहलापुरे ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और इस फिल्म का संगीत भी सुपरहिट हुआ था और संगीत दिया था उषा खन्ना जी ने। खास बात आपको बता दें कि इस फिल्म में जो रोल टीना मुनीम ने निभाया था रुक्मणी का, आपको याद होगा, वो सबसे पहले जीना तमान को ऑफर किया गया था, लेकिन किसी वजह से जीना तमान ने ये रोल स्वीकार नहीं किया। उसके बाद ये ऑफर हुआ प्रवीण बाबी को, लेकिन वो भी नहीं कर पाई और बाद में ये जो रोल था रुक्मणी का, ये आ गिरा टीना मुनीम की झोली में और फिल्म, जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर हिट साबित हुई थी। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच एफआईपीआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
2: बैठक में एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 3:11 और ठीक 1 सेकंड मनभावन लेकर देविका हाजिर है। और मनभावन की ईमेल आईडी fmgoldaiardelhi@gmail.com जहां आप हमें मेल्स कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए fmgoldaiardelhi@gmail.com। और मनभावन का आगाज, जी हाँ, आपकी पसंद का गीत और मेरी भी पसंद का गीत।

जी हाँ, आगाज हमने किया मन भावन का फिल्म आखिरी गुलाम के गीत के साथ, आशा भोसले और शबीर कुमार की आवाज़। और बहुत सारी मेल्स आपकी हम तक पहुंच चुकी हैं। पहली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है सनाबाद से शेख मूसा मोहसिन ने, और इनकी फरमाइश है फिल्म नाइट इन लंदन का ये सबसे बेहतरीन गीत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की।

फिल्म 19 लंदन और आवाज मोहम्मद रफी साहब की। और अगली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो हमें भेजी है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, और इन्होंने फरमाइश की है फिल्म आंधी के इस गीत की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: जी हाँ, ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं हमारे जो FM गोल्ड के बिना नहीं रह सकते, और ये हमें आपकी मेल्स से पता चल रहा है। कुछ श्रोता हैं जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत, अक्रम वसीम, अक्रम रुबेना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन, तुलसी मस्की, मीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, मेहर नगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर राही, श्रीमती सरिता गवानकर, प्रणीता सिद्धांत गवानकर, लाडला टुकटुक गवानकर, एकांश सुमित गवानकर, कुमारी ध्वनि गवानकर, परी होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल हैं, अरहान अहमद, सूफिया नवाब, शबाना भारती, नवाब अहमद भारती बल्ली मरान से, अफरोज शेख पता नेमुआ बिहार से लिखते हैं, और किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईरा सपकाल, विशाल सपकाल, और इसके साथ हम तक पहुँचा है श्रोता संत जय जिनेन्द्र परभनी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रदेश संघई और पूरा संघई परिवार मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा हैं, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर रमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बेटा बजाज, हिसार से राजकुमार डूरी, प्रमोद कुमार डूरी, पुष्पेंद्र कुमार डूरी, गाजियाबाद से शीशपाल अकेला हैं, और एक और मेल हम तक पहुँची है। इन्होंने हमें लिखा है कि मनभावन कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता दीपिका जी को सादर नमस्कार। देखिए दीपिका और देविका में थोड़ा सा फर्क है, और फिर से एक बार बता देती हूँ, आपके साथ देविका है, और कहते हैं कि खुशियाँ बांटिए और हमारी कामना यही है। जी हाँ, खुशियाँ बांटने ही आए हैं, और इन्होंने लिखा है रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञक कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, बाबू वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत शुक्रिया, यही आपने नाम लिखे हैं। भवरपुर बसना से चंपा राधेश्याम देवांगन, मोहम्मद सईद अबासी, निकत परवीन अबासी, शाहनवाज अबासी, सरफराज अबासी, फरदीन सुहान अरजान, अवान अबासी परिवार के सभी सदस्य, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनभावन सुन रहे हैं आपसे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सीख।

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, 3:36 ठीक 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैलेंज सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम है मन भावन और बहुत सारी मेल्स आप लोगों की हम तक पहुंची हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो मेल हमें भेजी है हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, और इन्होंने फिल्म झुक के आसमान के इस गीत की फरमाइश की है।

जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और फिल्म थी छुक्या आसमान। और कुछ होता है जिनके नाम हम ज़रूर लेना चाहेंगे। अनारकली बाज़ार पंजाब से डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, सुनील पाठक, कमल पाठक, गवैया मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पा ढींगिया है। खेल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का है। और ये हमें सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग ने भेजा है कि जिंदगी जब भी किसी शय की तलब करती है तो मेरे होंठों पे तेरा नाम मचल जाता है। FM गोल्ड की महफिल में आप सभी का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सूरत जहां नाज शिक्षिका तलत नाज जहां फरहत जहानाज रिफत जहानाज और नुजहत जहानाज साजिया शहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। और कहते हैं कि हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। लीजिए, दे दिया। और पवनी शर्मा, विजय बिहारी शर्मा वकील, पूरी चांदनी चौक दिल्ली से लिखते हैं। और इसके साथ विजय शर्मा है, ये भी दिल्ली से हमें मेल भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने। इन्होंने फिल्म दिल ने फिर याद किया का इस गीत की फरमाइश की है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मनभावन से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और बहुत सारी मेल्स ऐसी भी हम तक पहुंची हैं, बहुत सारे श्रोता हैं जो नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि ज़िंदगी में थोड़ी सी पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ ऐसे श्रोता हैं जिनके नाम अगर नहीं शामिल होते हैं तो वो ऐसी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं हमसे। तो हम तक पहुँचा है हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजुल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया का। झारखंड से उत्तम कुमार भगत हैं, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद। और पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत हैं, गुड्डी भगत हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर, राही, शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजन खान, आबाद खान। और वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष हैं। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा शादिस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक, लुबना, अलिजबा, अयान मंसूरी, यश मंसूरी और प्यारा नवासा नैमूर मंसूरी। और इन्होंने फिल्म नागिन के इस गीत की फरमाइश की है।

जी हाँ, महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में आपने गीत सुना। और कुछ होता है जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। उत्तर नवगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला नानी, गीतिका खोलवार, भानु प्रकाश, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से, रेखा बसंत, कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अवंतिका, तनुश्री गुप्ता। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूँ यार।
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

3:54 और ठीक 33 सेकेंड। जी हाँ, मनभावन सुन रहे हैं आप और मनभावन का बस आखिरी ही गीत हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं और आखिरी फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं। वो है उत्तर नगर दिल्ली से कमला नारी बोधगज खोलवार, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश की, और इन्होंने फिल्म शक्ति के इस गीत की फरमाइश की है। और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत

0: एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न एमडी, एमएस, डीएनबी, डॉक्टर, एनबी 6 वर्षीय पाठ्यक्रम और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और परिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इससे पहले रोशिबिना देवी ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष डबल्स टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक सुनिश्चित हो गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। जी हाँ, 100.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं आप। 4:11 ठीक, 11 मिनट हो गए हैं और 1 सेकंड हुए हैं। देविका है आपके साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, फिल्म आखिरी खत का गीत आपने सुना, कैफी आजमी साहब के बोल, खयाम का संगीत और आवाज मोहम्मद रफी की। और थोड़ी सी देर में होंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार, और उसके बाद होगा परिक्रमा।

0: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में इन विभागों में रिक्तियां उपलब्ध हैं: बौद्ध अध्ययन सह प्रोफेसर 1 पद, सहायक प्रोफेसर 2 पद, हिंदू अध्ययन सह प्रोफेसर 1 पद, सहायक प्रोफेसर 2 पद, दर्शन शास्त्र 1 पद प्रोफेसर, सह प्रोफेसर 1 और सहायक प्रोफेसर 2 पद, संस्कृत प्रोफेसर सह प्रोफेसर 1-1 पद तथा सहायक प्रोफेसर 2 पद, डेटा विज्ञान और AI प्रोफेसर 1 पद, सह प्रोफेसर 1 पद तथा सहायक प्रोफेसर भी 1 पद, विज्ञान टेक और नीति अध्ययन विभाग में प्रोफेसर का 1 तथा सह प्रोफेसर का भी 1 ही पद उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, तैनाती के स्थान, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 12 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र अथवा नालंदा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.nalandauniv.edu.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुनिए: www.nalandauniv.edu.in। भारत मौसम विज्ञान विभाग उप महानिदेशक प्रशासन के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इस पद के लिए पात्रता शर्तों और अन्य विवरणों के लिए कृपया देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट www.mausam.imd.gov.in। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कुल सचिव 1 पद, अधीक्षण अभियंता और तकनीकी अधिकारी भी 1-1 पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए IIT गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज में प्रतिनियुक्ति आधार पर सीधी भर्ती द्वारा संस्थान के निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं हैं: इतिहास सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री, इतिहास सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में किसी भी बड़े एशियाई देश से संबंधित उच्च योग्यता का प्रकाशित अनुसंधान कार्य, कम से कम 5 वर्ष के लिए एक जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव सहित कम से कम 10 वर्ष का पढ़ाने और अनुसंधान का अनुभव। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सभी प्रतियां निदेशक मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के पास रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 3 हफ्ते के भीतर पहुंच जाने चाहिए। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, हर शाम अपने साथ ये संदेश लाती है कि एक नया सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। आज जो कुछ भी अधूरा रह गया उसे कल पूरा करने की उम्मीद ही इस शाम का असली जादू है। इसी उम्मीद, पॉजिटिविटी और दिन भर की बड़ी हलचले समेटे हम हाजिर हैं कार्यक्रम का एक नया अंक लेकर। आज भी आपको देंगे तमाम

0: Argo reaches its destination and the ocean remains safe from pollution? Well, behind every voyage is a complex system of international rules, trained professionals, technology, safety procedures and cooperation between nations. And today, as we mark World Maritime Day, we take a closer look at this fascinating world of shipping, of seafarers, safety and sustainability. The theme for these 2 years is From Policy to Practice, Powering Maritime Excellence.
1: और शगुन, हमें लगेगा कि समुद्री उद्योग हमसे डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दुनिया भर में 80% से ज्यादा व्यापार समुद्र के जरिए ही होता है। उद्योगों को चलाने वाला ईंधन, उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और देशों के बीच आने जाने वाला अनगिनत सामान, यानी हमारे पास पहुंचने वाली ज्यादातर चीजों को हम तक पहुंचाने के लिए जहाजों का इस्तेमाल होता है। इसलिए समुद्र सिर्फ देशों को अलग करने वाले पानी के विशाल भंडार नहीं है, बल्कि ये दुनिया को जोड़ने वाले हाईवे हैं। हर दिन हजारों जहाज इन हाईवों पर चलते हैं और बंदरगाहों, अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों और समुदायों को आपस में जोड़ते हैं।
0: एंड सर फिरोजी, बिहाइंड दीज शिप्स आर द पीपल हु मेक मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट पॉसिबल। दे आर द सीफेयरर्स। Well, they work for long periods away from their families, from their homes. They navigate ships and they operate machinery. They handle cargo and maintain equipment and also respond to emergencies. Their work is actually very demanding and their contribution to global trade, it is enormous. So World Maritime Day, it actually provides an opportunity not only to recognize the importance of shipping, but also to acknowledge the dedication and professionalism of these people, seafarers, people working at sea. Because ships, they may be made of steel, but the maritime industry ultimately depends on people. They run it. And Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, has said that India's maritime sector is a strong anchor for national progress. And he mentioned in a social media post on World Maritime Day today that the government is focused on infra modernization, policy reforms and a resolute seafarer first vision which is driving this growth forward. Sir Firozi.
1: Aur Shagun, ab baat kar lete hain is saal ki theme par jo ki hai policy se practice tak. Lagbhag 8 dashkon se International Maritime Organization surakshit, kushal aur paryavaran ke prati जिम्मेदार शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, कोड और गाइडलाइन बनाती रही है। ये नियम समुद्री सुरक्षा और संरक्षा से लेकर प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण तक कई तरह के मुद्दों को कवर करते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है शगुन कि नियम बनाना तो बस एक शुरुआत है। किसी पॉलिसी की असली अहमियत तब पता चलती है जब उसे असल दुनिया में सही ढंग से लागू किया जाए।
0: And let us make it very simple for you. Think of it this way. Imagine that a city introduces a rule requiring every motorcyclist to wear a helmet. The rule may be perfectly written, but if people do not follow it, if authorities cannot enforce it, or if people do not understand why it matters, the rule alone cannot provide protection, right? Maritime regulations work in much similar way. An international agreement can be adopted, but its real impact comes when countries implement it, when ports enforce it, when shipping companies follow it, and when crews are trained to put into practice. That is the journey from policy to practice, which is in fact the theme for this year.
1: बिल्कुल शगुन, और जब कोई जहाज किसी बंदरगाह पर पहुंचता है तो इस पूरी प्रक्रिया से पहले और इसके दौरान कई सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि उपकरणों का रखरखाव, प्रशिक्षित क्रू सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी होती हैं, पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है और अधिकारियों के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि लागू मानकों का पूरी तरह पालन हो। इसी को कहते हैं इम्प्लीमेंट। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई किसी चीज को जहाज, बंदरगाह पर और लोग और असल नतीजों के साथ लागू करना।
0: एंड सो इफ यू आर कमिंग बैक ऑन द थीम फॉर दिस ईयर 26-27 थीम दिस ईयर, दिस प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, ऑन एनफोर्समेंट, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। सो द IMO's वर्क इज नॉट सिंपली अबाउट डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सपोर्टिंग मेंबर स्टेट्स एंड पार्टनर्स थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस, training and other forms of capacity building. Maritime excellence cannot be achieved simply by writing good policies. It requires people who understand those policies, resources to implement them, appropriate technology as well, एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड कंटिन्यूस कोऑपरेशन।
1: और शगुन, आज समुद्री क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मौजूद है, यह है हमारे समुद्री पर्यावरण।

0: पर्यावरण की सुरक्षा। शिपिंग इंडस्ट्री साफ सुथरे और ज्यादा टिकाऊ कामकाज की दिशा में काम कर रही है, जिसमें उत्सर्जन कम करना, ऊर्जा की क्षमता बढ़ाना, नई तकनीकें अपनाना और समुद्री प्रदूषण से निपटना शामिल है। वहीं प्लास्टिक प्रदूषण भी चिंता का विषय है। हमारे महासागरों में काफी विविधता मौजूद है, उनकी सुरक्षा के लिए सरकारों, इंडस्ट्रीज, बंदरगाहों, जहाजों और आम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा। साफ सुथरी शिपिंग की ओर बढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें नई तकनीकें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रिसर्च और सबसे जरूरी बात, भविष्य के जहाजों को चलाने वाले लोगों के लिए नई स्किल्स और ट्रेनिंग शामिल करना जरूरी है।
1: दैट इज ट्रू सर फिरोजी, एंड देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट फीचर दैट आई वुड लाइक टू टेल आवर लिसनर्स अबाउट फॉर दिस थीम। For the first time, the IMOs, the International Maritime Organization, World Maritime Day theme is being observed over a biennium. And this covers both 2026 and 2027. And that is significant because meaningful implementation takes time. And countries and organizations may need technical support, training, infrastructure, resources and opportunities to share knowledge and experience. And the two-year focus provides an opportunity to look beyond the creation of policies and concentrate on how those policies can deliver practical improvements across the maritime sector, sir Firuzi.
0: बिल्कुल शगुन, और समुद्री क्षेत्र में बेहतरीन काम करने का असल में क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है ज्यादा सुरक्षित जहाज और काम करने की जगहों को सुरक्षित बनाना। इसका मतलब है अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुरक्षित समुद्री कर्मचारी। इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय मानकों को असरदार तरीके से लागू करना, साफ सुथरी टेक्नोलॉजी और पर्यावरण पर कम असर। इसका मतलब है सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए बंदरगाहों और जहाजों का मिलकर काम करना, और इसका मतलब है देशों का आपस में सहयोग, ताकि ये पक्का किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम सिर्फ कागजों पर ना लिखे हों, बल्कि उन्हें समझा जाए, लागू किया जाए और असल नतीजों में बदला जाए।
1: एंड यू नो व्हाट आई थिंक दैट ओशन ऑल द countries, basically the nations, they are all seafaring nations nowadays, and the ocean connects us all thereby. It carries our goods and supporting livelihoods, and economies are also linked because of the oceans, and this provides a home to an incredible diversity of marine life. World Maritime Day 2026-27 therefore reminds us that protecting this interconnected system requires more than ambitious policies. What does it require? It requires commitment, cooperation, knowledge, technology and action as well. And a regulation has value when it helps prevent an accident. So an environmental standard has value when it contributes to cleaner seas. And the message of World Maritime Day 2026-27, it is very simple. It is time to move from policy to practice, from commitments to action, and from rules on paper to results at sea.
0: श्रोताओं, अब चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। शगुन,
1: सो वी आर बिगिनिंग विद अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉज पब्लिश्ड ऑन 22nd September 2026। वी हैव अ डिटेल्ड रिपोर्ट, लिसन इन।
2: According to the Chief Electoral Officer, Pawan Kumar Sen, Arunachal Pradesh now has a total of 6,96,026 electors. This includes 3,43,709 male voters, 3,52,315 female voters, and two-third gender electors, reflecting a gender ratio of 1,025. Additionally, 5,552 service voters have been enrolled. During the revision process, 8,803 names were newly included and 1,924 names were deleted from the draft roll. Further, the Office of the Chief Electoral Officer, Arunachal Pradesh, said an appeal against the decision of the Electoral Registration Officer can be filed before the District Magistrate within 15 days from the date of publication of final electoral roll under Section 24A of the Representation of the People Act 1950, read with with Rule 27 of the Registration of the Electors, Rule 1960. It further said, if dissatisfied with the first appeal decision, a second appeal may be preferred before the Chief Electoral Officer within 30 days of the District Magistrate's order as per Section 24B of the Representation of the People Act 1950, read with Rule 27 of the

0: Registration of the Electors Rules 1960 for Parikrama Kenyum Ango Akashwani Itanagar.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
4: So listeners, Ganesh Chaturthi is being celebrated since September 14th, well, and it was the start of this 10-day festival, and the final day of immersion, it's tomorrow. And this coincides with Anant Chaturdashi. So arrangements have been made by Pune Police and Civic Administration for Ganesh Idol Immersion Procession, which is scheduled for tomorrow. We have a detailed report. We will now be listening to that.

तिलक रोड, कुमटेकर रोड एंड केलकर रोड. ओवर 10,000 पोलीस पर्सनल, होम गार्ड्स एंड अदर सिक्युरिटी पर्सनल विल बी डिप्लॉय फॉर द सिक्युरिटी एंड क्राउड मैनेजमेंट. द प्रोसेशन विल बी मॉनिटर्ड थ्रू अराउंड 3,500 सीसीटीवी कैमराज अलॉन्ग विद फेशियल रिकग्निशन सिस्टम एंड ड्रोन्स. ए स्पेशल कंट्रोल रूम हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट फरासखाना पोलीस स्टेशन, वाइल 5 मोबाइल सर्वेलेंस व्हीकल्स एंड 19 मिनी सर्वेलेंस व्हीकल्स विल असिस्ट द मॉनिटरिंग द प्रोसेशन. ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस एंड डायवर्शंस विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द सेवरल मेजर रोड्स, वाइल हेवी व्हीकल्स विल फेस रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द इमर्शन पीरियड. माधव जायभाई, आकाशवाणी, पुणे.

0: love for the nation. We salute her indomitable spirit.
1: Listeners, today we are remembering a pioneer who changed the course of Indian sport. Aarti Saha. She became the first Asian woman to swim across the English Channel on 29 September 1959, and she was just 19 years of age, and her historic feat placed India on the global map in long distance swimming. Well, she represented India at the 1952 Summer Olympics at the age of 12 and later focused on breaststroke events as well. Before conquering the channel, actually, Aarti Saha dominated state-level competitions in West Bengal. She won 22 titles between 1945 and 1951 as well.
2: और 1960 में आरती साहा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. वो पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी.
1: एंड आरती साहा's legacy continues to inspire generations of Indian athletes, don't you think so?
2: बिल्कुल शगुन. आज पुण्यतिथि है मोहन सेन की. ये भारत के जाने माने गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे. इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और द्रव यांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया. इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया साल 1974 में. और आज ही पुण्यतिथि है राजा रमन्ना की. ये परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साल 1964 में भारत के परमाणु कार्यक्रम में ये शामिल हुए और प्रारंभ में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की देखरेख में इन्होंने काम किया और उनके निधन के बाद 1967 में खुद कार्यक्रम के निदेशक बने. इन्होंने परमाणु हथियारों के विकास से संबंधित वैज्ञानिक शोध का निरीक्षण किया और उसे बढ़ावा दिया. साल 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक दल के भी ये मुखिया रहे.
1: Today we are also remembering Robert Lee Chick Willis. Today it's actually his birth anniversary. The blues singer and guitarist performed and recorded from the 1950s to the 2000s.

आज जन्मदिन है मोहिंदर अमरनाथ भारद्वाज का। ये भारत के ख्याति प्राप्त पूर्व क्रिकेटरों में से एक हैं। वर्तमान समय में ये क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के विश्लेषक हैं। मोहिंदर अमरनाथ जिम्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। अपने समय के तेज गेंदबाजों का सामना करने में मोहिंदर अमरनाथ सबसे माहिर माने जाते थे। ये भारत के प्रथम कप्तान लाला अमरनाथ के पुत्र हैं। इनके भाई सुरेंद्र अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी और राजेंद्र अमरनाथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। मोहिंदर अमरनाथ वर्ष 1983 में भारत की पहली विश्व कप जीत के नायक थे। और आज ही पुण्यतिथि है अभिनेत्री पद्मिनी की। ये प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और भरत

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित

कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा

साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल ने आज कहा कि विद्युत मंत्रालय नई राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार कर रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में इसका मसौदा जारी किया था। मंत्रालय ने हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों को इसमें शामिल किया है और इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों

0: साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल ने आज कहा कि विद्युत मंत्रालय नई राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार कर रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में इसका मसौदा जारी किया था। मंत्रालय ने हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों को इसमें शामिल किया है और इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म में प्रसिद्ध गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक से बातचीत आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगी। श्रोता इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said, service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: The Prime Minister said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only when there is spirit of service. 4 crore poor have received permanent houses. Chief of Defence Staff General N.S. Rajasubramani has stressed the need for country's defence acquisition system to adapt swiftly to keep pace with this changing character of warfare. Addressing an event organised by a media house in New Delhi today, General Subramani highlighted the importance of the integration of technology, data and industry in strengthening the defence ecosystem. He stressed upon the need to have the means to sustain, replenish and repair weapons in the battlefield. He emphasized that startups, universities, engineers, students and technology companies can all contribute towards country's mission of self-reliance and defence manufacturing. Indian Railways has approved the introduction of a new daily train service between Kanpur Central Railway Station in Uttar Pradesh and Anand Vihar Terminal in Delhi, providing an overnight rail connectivity option between the two cities. Railways has also approved the construction of a 4-lane road overbridge at Alkapuri in Vadodara Division of Western Railway. The Ministry of Railways said the cost of the project is over 166 crore rupees and will be shared equally between railways and the state government. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार। हमारी जिंदगी के जितनी यादें हैं उनका आईना बन जाती है कुछ आवाजें। प्यार के सुर सुनते हैं उनसे तो कहीं खुशियों की धुन सुनाई देती है तो कहीं जुदाई के एहसास, जिनमें से एक आवाज आज हमारे बीच भी उपस्थित है। लंबे अंतराल के बाद चुनौतियों का सामना करते हुए आज वो हमारे बीच है, लेकिन ये एक ऐसी आवाज है जिन्होंने न केवल हमारी जिंदगी को सुरों से सजाया है बल्कि उन्होंने संगीत की एक विरासत भी देश को दी है। इसीलिए उनके तुलनीय योगदान को देखते हुए देश ने भी उन्हें पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा है। हमारे साथ हैं सुर साम्राज्ञी पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक।
3: जाने

0: अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: और आपको ढेरों बधाई, पद्म भूषण का सम्मान मिला है आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इतने पुरस्कार तो आपको पहले ही मिल चुके हैं अलका जी, लंबी फेहरिस्त है, उनके बीच पद्म भूषण का सम्मान आपके लिए क्या मायने रखता है?
1: बहुत बड़ा मायने रखता है। सरकार की तरफ से अगर किसी कलाकार को अप्रिशिएट किया जाए तो उसमें बात ही और हो जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपनी सरकार का जिन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा है।
0: आपसे मैं अब वो सवाल पूछने वाली हूँ जिस सवाल को मुझे लगता है हर आपका प्रशंसक, आपके फैंस पूछना चाहते हैं। अलका जी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ और अपने फैंस के लिए मैं आज सामने हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं सब और बहुत मुबारक दे रहे हैं मुझे बार बार।
0: जी बिल्कुल, मेरे को लगता है पूरा देश मुबारकबाद देना चाहता है क्योंकि आपने ना इतने दौर कवर किए हैं, इतने दशकों से आप गा रही हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी की यादों में कहीं ना कहीं कोई गीत ऐसा होता ही है जो अलका जी से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अलका जी, अब जब आपकी जिंदगी का इतना बड़ा अवसर है, आपके सामने आपको पद्म भूषण मिला है और ये जश्न का अवसर है, ऐसे जश्न के वक्त में अलका जी का क्या मन करता है कि कौन सा गीत है जो आपकी भावनाओं को दिखाता है?
1: मेरा अपना गीत तो मुझे ध्यान नहीं है,
0: कोई भी गीत, कोई भी,
1: लता जी का गाना है। हाँ? आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे,
0: क्या बात है,
1: बोलो देखा है कहीं तुमने मुझे उड़ते हुए।
0: और हम आपको

0: आपने इतनी शोहरत, इतना प्रेम हासिल किया है, प्यार हासिल किया है सबका, किसको देती हैं इसका श्रेय?
1: इसका श्रेय मैं देती हूँ अपने माँ। मम्मी मेरी गुरु रही हैं, क्लासिकल सिंगर थी, क्लासिकल गाती थी, और मेरा झुकाव जो था वो लाइट की तरफ था थोड़ा, तो उन्होंने मुझे वैसे भी ट्रेन करना शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक में, ताकि उसको जिस तरह से यूज कर सकते हैं लाइट की फील्ड में, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो बस वो होती है आज तो बहुत खुश होती हैं।
0: वाकई बहुत खुश होती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आपका हाथ पकड़कर वही आपको मुंबई तक लेकर गई, उन्होंने ही आपके सफर को आगे मुंबई तक पहुंचाया था। तो आपको याद है वो यादगार पल जब राज कपूर जी से मिले आप, लक्ष्मीकांत जी से, कल्याण जी, इन सब ने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना?
1: हाँ, किया तो है। मैं जब बॉम्बे आई तब मैं बहुत छोटी सी थी और मम्मी पापा मेरे साथ रहते थे, और हर दिन उनकी छत्र छाया में मैंने गाने गाए और लोगों ने सुने।
0: और लक्ष्मीकांत जी ने आपका हाथ थामा, उसके बाद शायद आपको एक और ऊंची उड़ान के पद मिले।
1: हाँ, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो जब मैं आई इस लाइन में तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा एक नाम था, तो उन्होंने मुझे सुना, पसंद किया और अच्छे अच्छे गाने दिए। गाने को एक दो तीन जैसे था, बहुत पॉपुलर हो गया था, एक के बाद एक
0: गाने आते गए और आप गाती गई। लेकिन सोचिए 1980 में आपने अपना पहला गाना गाया ना, उसके बाद अब तक तो कितने दौर की अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए आपने गाया। कौन सी ऐसी अभिनेत्रियां थी जो आपकी आवाज कहते थे कि आपकी आवाज उन अभिनेत्रियों पे सबसे सटीक बैठती है? जैसे आपको माधुरी की आवाज तो कहा ही जाता था।
1: मेरी आवाज मुझे लगता है कि सबसे अच्छी माधुरी दीक्षित पे बैठती है, और जूही चावला, रानी मुखर्जी, एक्चुअली सभी के लिए गाया है मैंने।
0: बहुत से गायकों के साथ भी आपने गाया है, कभी आपको अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करनी पड़ी?
1: नहीं, कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ी। गाया तो मैंने सब सिंगर्स के साथ है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यादगार जो है वो है किशोर कुमार के साथ गाए हुए गाने। और कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, मैं बस आती थी, गाना सीखती थी और दिल से गाती थी।
0: अच्छा, अगर गायकों की मैं बात करूं, आपने बहुत सारे लेजेंड्स के साथ गाया है, मतलब सोचिए लता दी, आशा ताई, किशोरदा के साथ साथ आपने उदित नारायण, कुमार सानू तक सबके साथ ही गाने गाए। इन सबके साथ गाते हुए कौन से ऐसे गायक हैं जिनमें आपको लगता है सीखने को बड़ा कुछ मिला?
1: किशोर कुमार।
0: कोई वाक्य याद है?
1: नहीं, वो बहुत हंसमुख थे और हंसाते रहते थे हर वक्त, रिकॉर्डिंग के टाइम भी कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे कि हंसते हंसते गला बैठने लगता था। फिर बोलना पड़ता था कि किशोरदा इतना हंसाइए मत, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे।
0: जाहिर है, लेकिन आप जो छोटी सी 10 साल की अलका थी जो मंच पर खड़ी हुई थी और इतनी तालियां मिली थी आपको उस परफॉर्मेंस में जब आपने परफॉर्म किया था।
1: हाँ, मैं कुछ 10 साल की थी तब, एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं बलसारा करके, वी बलसारा, उनके साथ मैंने स्टेज पे गाना गाया था।
0: अच्छा अलका जी, आप मुझे लगता है कि जब भी कोई बहुत अच्छा गाती है ना तो उनके बच्चों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि बहुत अच्छी लोरियां सुनने को मिलती हैं। आप साइशा को क्या लोरी सुनाती थी?
1: साइशा को मैं लोरी तो नहीं, मगर वो जो गाना है लता दीदी का, मेरे घर आई एक नन्ही परी,
0: अच्छा,
1: वो फिर गाती थी मैं उनके लिए, उसकी बर्थडे पर मैं हमेशा खास तौर से गाती थी।
0: फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता था? इतना व्यस्त रहता था आपका कार्यक्रम।
1: ऐसा था कि मम्मी और पापा दोनों का, उनका बहुत सॉलिड सपोर्ट था, तो वो लोग काफी कुछ संभाल लेते थे, तो उनकी वजह से मैं कर पाती थी काम।
0: कोई आपका ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि ये गाना मेरे को जब भी मन करे मैं गा सकती हूँ, एनी टाइम?
1: एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था।
0: आप एक रैपिड फायर करते हैं, एक कंपोजर, कोई एक ऐसे संगीतकार जो इनके साथ आप आज भी गाना पसंद करेंगे किसी भी दौर का?
1: आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
0: ओके, क्लासिकल म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक?
1: फिल्म म्यूजिक।
0: स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
1: स्टेज परफॉर्मेंस।
0: ओके, एक सॉन्ग कोई भी कभी का भी जो आपको लगता है कि काश मैंने गाया होता, किसी और का गाया हो?
1: ये गाना जैसे है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मैंने नहीं गाया, लता दीदी ने गाया जी, लेकिन मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि काश मैंने गाया होता ये गाना।
0: एनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, कोई स्टेज की मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो आपके जहन में आ रही हो?
1: अब्रॉड जो शोज होते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ के जितने शोज हैं अब्रॉड के वो मुझे सब यादगार हैं।
0: अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती?
1: सिंगर नहीं होती तो हाउसवाइफ होती, नॉर्मल।
0: सीरियसली?
1: हाँ, ऐसा कुछ शौक नहीं था कि मैं सिंगर बनूं या कुछ, मैं यूं ही गाती थी। मेरी जो मम्मी थी उनको लगा कि इसमें कुछ खासियत

0: है, खास बात है इसकी सिंगिंग में, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए।
1: मुझे लगता है कि सभी फैंस को आपकी मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आई हैं। अंत में पद्म भूषण को लेकर सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगी?
0: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा दिल से उनके लिए सम्मान है, और इसके लिए कंसिडर किया और ये अवार्ड दिया मुझे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैंने सोचा ना था।
1: सभी फैंस, सभी उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो फिल्मों में गाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहेंगे? अपनी जिंदगी का कोई एक सबक जो आप उनके साथ साझा करना
0: ना
1: चाहेंगे?
0: फोकस रखें अपने काम पर, अपने गाने पर, रियाज पर। ये जो चकाचौंधी है उससे दूर रहें, लगन से करना चाहिए काम जो भी करना है।
1: वेल, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच अलका जी।
0: वेलकम।
1: आई एम श्योर हमारे आपके सारे फैंस आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और उन सबके तरफ से और हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स
0: थैंक
1: के
0: यू
1: बीच वापस
0: थैंक यू
1: आइए।
0: थैंक यू थैंक यू।

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम DD News के सहयोग से प्रसारित किया गया।
1: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर गाते गुनगुनाते और देविका है आपके साथ 5:20 और ठीक 11 सेकेंड। भाई शाम का वक्त हो और संगीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी एक अच्छा गाना पूरे दिन की थकान मिटा देता है ना श्रोताओं। तो अपने मूड को थोड़ा सा म्यूजिकल बनाइए, दिल को आराम दीजिए और थोड़ी सी देर हमारे साथ बिताइए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
7: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
8: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
9: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
10: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
6: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
11: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। NACO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देशभर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said, service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle, even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा

0: है। भारत के करीब 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% व्यापारिक मूल्य का आवागमन समुद्री मार्गों से होता है। बंदरगाहों से लेकर जहाज निर्माण, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवाहन और समुद्री पर्यटन तक। समुद्री क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। इसी व्यापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत कई पहल की हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत के समुद्री क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आए हैं, बंदरगाहों और जलमार्गों की क्षमता किस तरह बढ़ाई जा रही है, जहाज निर्माण को कैसे मजबूत किया जा रहा है और किस तरह सतत विकास के साथ भारत की ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत भारत के बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास में क्या प्रगति हुई है और समुद्री क्षेत्र को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं।
1: श्रोताओं, मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 भारत के समुद्री क्षेत्र के समग्र विकास की एक व्यापक रूपरेखा है। इसके अंतर्गत बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, नए बर्थ विकसित करने, माल की आवाजाही को आसान बनाने और सड़क, रेल तथा जलमार्गों के बीच बेहतर संपर्क विकसित करने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2013-14 में भारत के बंदरगाहों की कुल क्षमता लगभग 1400 मिलियन टन थी। वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 2818 मिलियन टन हो गई। वर्ष 2030 तक इसे 3500 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह बंदरगाहों का कार्गो थ्रूपुट वर्ष 2013-14 के 972 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1668 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। वर्ष 2030 के लिए लक्ष्य 2200 मिलियन मीट्रिक टन रखा गया है। बंदरगाहों की कार्य क्षमता में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 में प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों की कुल क्षमता 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी, जो 2025-26 में बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई है। इस दौरान कुल कार्गो हैंडलिंग भी 1052 मिलियन टन से बढ़कर 1668 मिलियन टन हो गई है। प्रमुख बंदरगाहों और जहाजों के रुकने और माल संभालने की प्रक्रिया भी तेज हुई है। औसत जहाज टर्न राउंड समय वर्ष 2014-15 के 96 घंटे से घटकर वर्ष 2025-26 में 48.8 घंटे रह गया है। श्रोताओं, समुद्री क्षेत्र का विकास केवल बड़े बंदरगाहों तक ही सीमित नहीं है, अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत जलमार्गों को माल ढुलाई के लिए एक वैकल्पिक और अधिक प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बंदरगाहों को सड़क और रेल से जोड़ने, बंदरगाह आधारित उद्योगों, तटीय समुदायों और तटीय नौवहन अंतर्देशीय जल परिवहन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही समुद्री क्षेत्र को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रमुख बंदरगाहों में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाया जा रहा है। ग्रीन टग ट्रांजिशन कार्यक्रम के अंतर्गत पारंपरिक डीजल आधारित बंदरगाह टग्स की जगह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी भारत के समुद्री क्षेत्र में विकास के साथ साथ आधुनिक तकनीक, बेहतर कनेक्टिविटी, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दिया जा रहा है।
0: श्रोताओं, समुद्री क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाज निर्माण। अगर भारत को अपनी समुद्री क्षमता को और मजबूत करना है तो देश में जहाज निर्माण की क्षमता बढ़ाना और इसके लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना भी जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि जहाज निर्माण समुद्री वित्त पोषण, कौशल विकास और सतत समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: श्रोताओं, भारत ने जहाज निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाना, शिपयार्ड को मजबूत करना, समुद्री क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। इस पैकेज में जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना के लिए 24,736 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं समुद्री विकास निधि के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें 20,000 करोड़ रुपए की समुद्री निवेश निधि और 5,000 करोड़ रुपए की ब्याज प्रोत्साहन निधि शामिल है। इसके अलावा जहाज निर्माण विकास योजना के अंतर्गत 19,989 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य

0: जहाज निर्माण की वार्षिक क्षमता को बढ़ाकर 45 लाख सकल टन भार तक करना और ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टरों को समर्थन देना है। श्रोताओं, जहाज निर्माण के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 11 शिपयार्डों ने 8 तटीय राज्यों के 34 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए समझौते किए हैं। इसके अंतर्गत 150 घंटे का प्रशिक्षण मॉडल शुरू किया गया है और अब तक 727 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पिछले 3 वर्षों के दौरान समुद्री क्षेत्र में कुल 92,697 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित कुशल और उच्च कुशल बनाया गया है। श्रोताओं, समुद्री विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जहाज पुनर्चक्रण। भारत जहाज पुनर्चक्रण के क्षेत्र में दुनिया में पहले स्थान पर है। गुजरात के अलंग में जहाज पुनर्चक्रण यार्डों को आधुनिक बनाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा भारत में समुद्री क्षेत्र को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मैरिटाइम सिंगल विंडो, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, मैत्री, ई समुद्र और ई परीक्षा जैसी पहलों के माध्यम से दस्तावेजीकरण, व्यापार प्रक्रियाओं और नियामक सेवाओं को आसान बनाने का प्रयास जारी है। श्रोताओं, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ केवल समुद्र से व्यापार करना नहीं है, इसमें समुद्र और उससे जुड़े संसाधनों का इस तरह उपयोग करना भी शामिल है जिससे आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण और समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा बनी रहे। इसी दिशा में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रमुख बंदरगाहों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 28% तक पहुँच गई है, जबकि 2030 तक इसे 60% तक करने का लक्ष्य है। श्रोताओं, मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 के बाद भारत का समुद्री विकास अब 2047 के व्यापक लक्ष्य से भी जुड़ रहा है। मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र में निवेश, रोजगार, जहाज निर्माण, बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास तथा पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार इस विजन के अंतर्गत भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
1: श्रोताओं, आज विश्व समुद्री दिवस हमें ये याद दिलाता है कि समुद्र केवल व्यापार का रास्ता नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, रोजगार, ऊर्जा, पर्यटन और पर्यावरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत के लिए समुद्री क्षेत्र का विकास बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने से लेकर जहाज निर्माण, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन, समुद्री पर्यटन और हरित तकनीक तक फैला हुआ है। मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत बंदरगाहों की क्षमता और कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ डिजिटल तकनीक और पर्यावरण अनुकूल उपायों पर जोर दिया जा रहा है। वहीं मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 के माध्यम से भारत के एक समुद्र

क्षेत्र को दीर्घकालिक विकास और ब्लू इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व समुद्री दिवस की इस वर्ष की थीम फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस पावरिंग मैरिटाइम एक्सीलेंस भी इस बात पर जोर देती है कि नीतियों और नियमों को प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू किया जाए ताकि समुद्री परिवहन सुरक्षित कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। नमस्कार।

वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेवाभावं जीवनस्य परम पुरुषार्थत्वेन प्राख्यापयत्। सेवा परमो धर्म इति न्यायः सर्वथा अनुसरणीयः मुख्य संकल्पः इत्यपि असौ सबलम् अकथयत्। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशने विदेश कार्य मन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण फिपेक विदेश मन्त्रिमण्डलस्य समलंकृता द्वितीय पीठिका। प्रशासनेन प्रोदीरितं भारतं स्वाभ्यंतर आवश्यकतानां 99.2% जंगमदूरवाणी यंत्राणि स्वदेशे एव संपादयति। चिकित्सा

0: और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री प्रख्यापयत् यत् सेवाभावः एव राष्ट्रविकासस्य मुख्य प्रवर्तक बलम् अस्ति। तेन सबलं प्रोक्तं यत् पीएम किसान निधिः वा पीएम सूर्यघर योजना वा एतादृशीनाम् अनन्तानां जनकल्याण परियोजनानां अन्तिमजनप्रापण सामर्थ्यमेव तासां सफलतायाः मुख्यं प्रमाणम् अस्ति।
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: राष्ट्र निर्माण व्रत धारिणः वयम् विकसित भारत रचनायाः संकल्प सिद्ध्यै प्रवृत्ताः इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितम्। 47-2000 वर्षे विकसित भारत निर्माणाभियाने युवकानां मुख्य सामर्थ्यं सर्वजनैः पूर्णशक्त्या समुन्नेतव्यम् इति तेन साध्ववाची।
0: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: न्यूयॉर्क नगरे 88वें संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रसंगे विदेश कार्य मंत्री एस जयशंकरेण फिपिक विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय उपवेशनम् समलंकृतम्। तेन सहभागी देशैः सह क्षेत्रीय सहयोग संवर्धनाय दृढ़ संकल्पः प्रख्यापितः। 23-2000 वर्षे उद्घोषितायाः प्रधानमंत्री मोदिनः 12-सूत्रीय कार्ययोजनायाः प्रगतिमधिकृत्य सम्भूय समीक्षा प्रोदीरिता। प्रमुख रक्षा अध्यक्षः जनरल एनएस राजा सुब्रह्मण्यः अद्य न्यगादीत् यत् युद्धकलायाः परिवर्त्यमान स्वरूपानुसारं भारतस्य सैन्य अधिग्रहण तन्त्रस्य द्रुत परिवर्तनं सर्वथा अनिवार्यम्। नवदिल्ल्यां रक्षाशिखर सम्मेलने सम्बोध्य तेन समदीदृशी यत् प्रौद्योगिकी दत्त सामग्री उद्योगानां समवायि सम्बन्धेनैव रक्षा पारिस्थितिकी तन्त्रं सुदृढं भवति। तेन प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी उद्योग संशोधनानां त्रिवेणी संगमेन रक्षा पारिस्थितिकी तन्त्रं अभूतपूर्वां प्रतिष्ठां प्राप्स्यति। संचार विघ्नेषु अपि अप्रतिहता कृत्रिम प्रज्ञा एव भावि युद्धानां जय हेतुः संभविष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया पीएएफआई 50-60 इत्यस्य त्रयोदश वार्षिक अधिवेशनस्य उद्घाटन सत्रे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभागस्य सचिवः एस कृष्णन वर्यः प्रतिपादितवान् यत् भारतवर्षम् अधुना देशस्य स्वदेशीयायाः चलदूरभाषमाङ्गल्यस्य प्रायः 99.2% भागं स्वयमेव निर्माति। तेन विशदीकृतं यत् भारते प्रतिवर्षं 30 वा 32 कोटि परिमिताः चलदूरभाषाः उत्पद्यन्ते। सहैव विश्वस्य 5 प्रमुखाः चलदूरभाष निर्माण संस्थाः अधुना भारते उपस्थिताः सत्यः अत्रैव स्वकीय यन्त्राणां निर्माणं सोत्साहं कुर्वन्ति। आयुर्विज्ञान राष्ट्रिय परीक्षा मण्डलेन अद्य नीट पीजी विंशति षड्विंशति इत्यस्याः प्रतिष्ठित परीक्षाया

परिणामः उद्घोषितः। परीक्षा एषा समग्रे अपि भारतवर्षे गते अगस्त मासस्य 30 दिनांके 26-27 इत्यस्य शैक्षणिकसत्रस्य विविध चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेषु यथा हि एमडी, एमएस, डीएनबी द्रवीभूत षण्मासिक पाठ भेदेषु तथा पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थं सोत्साहं समायोजिता आसीत्। मण्डलेनानेन विज्ञापितं यत् सर्वे अपि परीक्षार्थिनः अक्टूबर मासस्य प्रथम दिनांकादारभ्य अग्रे वा स्वकीय संगणकीय पट्टिकायाम् आसाद्य आत्मनः अंकपत्रं स्वीकर्तुं पारयिष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पश्चिम बंग, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीयांध्र प्रदेश, ओडिशा राज्येषु अतिभीषण वृष्टेः संभावनामधिकृत्य रेड अलर्ट इति संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन बिहार, झारखंड, विदर्भ, सिक्किम राज्येषु च अद्य अतिवृष्टि परं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। एतदतिरिच्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु असम, मेघालय, पूर्वीय मध्य प्रदेश, पूर्वीय उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मराठवाड़ा क्षेत्रेषु च अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। ग्रेटर नोएडा मण्डलस्थे यमुना द्रुत मार्गे ह्यः अर्धरात्रौ संवृत्तायां दारुणायां यानाग्नि दुर्घटनायां न्यूनातिन्यूनं 9 यात्रिणः मृत्युमुपगताः। आरक्षक सूचनानुसारेण दुर्घटना एषा जेवर आरक्षक स्थानान्तर्गत दयातानपुर ग्रामस्य समीपे मध्यरात्रौ समजनी। आरक्षकैः प्रोक्तं यत् मृतकानां 9 यात्रिणां अभिज्ञान प्रक्रिया संप्रति साध्या न जाता। जापान देशे समायोजितासु एशियाई क्रीडा 26-27 इत्येतासु भारतस्य पुरुष कबड्डी दलं स्वकीयायां अन्तिमायां वर्ग अ प्रतिद्वन्द्वितायां चीनी ताइपे दलं 37-21 इति सुस्पष्ट अंकांतरालेन पराजय्य उपांत्य स्पर्धायां प्रविष्टम्। भारतेन क्रीडारम्भादेव स्वकीयं प्रभुत्वं संस्थाप्य मध्यानन्तरं यावत् 23-11 इति सुदृढा अग्रता गृहीता। उत्तरार्धे च पुनरपि 14-10 इत्यंकैः तदैव वर्चस्वं निरन्तरं परिपालितम्। वर्गचक्रे भारतस्य एषः अनुक्रमात् चतुर्थः विजयः अस्ति इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे. उदयन, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस स्लंप. सेंसेक्स टंबल्स ओवर 1200 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,063. द गवर्नमेंट सेज इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग ओवर 99% ऑफ द कंट्रीज टोटल डोमेस्टिक डिमांड फॉर मोबाइल फोन्स. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स 1,200 अंकों से अधिक फिसला. निफ्टी 23,063 के स्तर पर बंद हुआ. सरकार ने बताया कि देश में मोबाइल फोन की घरेलू मांग का 99% से अधिक का उत्पादन भारत में हो रहा है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की.

0: गई। सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक लुढ़ककर 23,063 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी दबाव देखने को मिला। मिड कैप 100 सूचकांक 2.3% फिसला, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सत्र की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बैंकिंग तथा बीमा शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार को प्रभावित किया। सेंसेक्स और निफ्टी पूरे कारोबारी सत्र के दौरान दबाव में रहे और कारोबार के दूसरे हिस्से में बिकवाली और तेज हो गई।
1: Benchmark domestic equity indices slumped over 1.6% today. Sensex tanked 1,028 points to close at 73,581. Nifty plunged 384 points to settle at 23,063. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index shed 2.3%, while the small-cap 100 index lost over 1.5%. This morning, markets opened with a gap down as a spike in bond yields, elevated crude oil prices and a sell-off in banking and insurance stocks weighed on the indices. Sensex and Nifty remained under pressure throughout the session, with a sell-off intensifying during the second half of the trade.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 29 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एनटीपीसी अपरिवर्तित रहा। प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस करीब 5.5%, एक्सिस बैंक 4.7% और बजाज फिनसर्व 4.1% नीचे बंद हुआ।
1: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, all 28 sectors edged downward. Among the top losers, mid-small private banks declined 2.8%, housing finance lost 2.6%, and financial services shed more than 2.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,884 companies declined, 1,473 companies advanced, and 216 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उद्यन, हम जिस तरीके से मार्केट को अगर ट्रैक करते हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले लगभग कुछ महीनों से अगर मैं कहूँ, तो हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड को लेकर के अभी कुछ दिनों से एक सतर्कता है मौजूद। कच्चे तेल के दाम कितने वॉलेटाइल हैं वो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन आज बीमा के शेयरों में जो एक उहापोह और उथल पुथल देखने को नजर आया, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से इसने मार्केट की गिरावट में, जो 1.5% आज मार्केट गिरा, उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है?
2: जो बीमा क्षेत्र ने काफी कंट्रीब्यूट योगदान रहा, और उसका कारण यह है कि ये सिर्फ बीमा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये बैंकों से भी जुड़ा हुआ है
0: जी।
2: तो
0: दबाव उन स्टॉक्स पे भी हमने
2: बिल्कुल हुआ है, जो आपने कुछ बैंकों के नाम लिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, वो सीधा जुड़ा हुआ है
0: जी।
2: तो घटनाक्रम ऐसी रही कि IRDA जो आपके बीमा क्षेत्र में रेगुलेटर हैं, जो मैनेज करती हैं, रेगुलेशन रेगुलेट करती हैं, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला जो कि बीमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वितरण होता है, उससे जुड़े वहां पे कमीशन मिलता है, वहां पे फीस होती है, तो उससे जुड़ी हुई कई बातें जो हैं उसमें, अभी तो वो नियम बने नहीं है, पर उसमें उनकी मंशा, उनकी सोच सामने आ रही है, और ये एकदम से नहीं आया, इसके बारे में काफी संकेत मिल रहे थे और ये डिस्कशन पेपर आ गया, क्योंकि ये सरकार और रेगुलेटर की मंशा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि इस तरफ ये जा रहा है। और ये अभी जिस तरीके से बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस को किया जा रहा था, उसकी जिस तरीके से उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुनाफा जनरेट किया जाता था, उसके उसमें एक भारी बदलाव की के संकेत

0: प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मुनाफा जनरेट किया जाता
1: जी
0: था उसके उसमें एक भारी बदलाव की के संकेत हैं। उसके वजह से आपके जो जितने भी कंपनीज जो बीमा क्षेत्र की कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, स्वास्थ्य इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, जीवन बीमा हो गया, और वो बैंक जो वहाँ देखिए बीमा का जो वितरण होता है वो दो तरीके से, एक तो एजेंटों के थ्रू से होता है,

0: काफी था, और उसके ऊपर तेल वाला हेडलाइन आ गया जो उसकी खबर आएगी, जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, और चारों तरफ विश्व भर में बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड में जो आपको मिलता है उसमें भी आ गया। तो उस वजह से आपने इतना जबरदस्त मार्केट में रिएक्शन देखा। तो ये बताता चलूं एक एक एक सेंटेंस और, कि बैंकों के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बैंकों के लिए इंश्योरेंस जब वो बेचते हैं वो फी इनकम है। तो बैंकों के दो तरह के आय होते हैं, एक तो वो आप और हम जैसे लोगों से पैसे लेके, वो डिपॉजिट लेके फिर दूसरों को लोन देते हैं, तो वो फंड इनकम होता है, तो उसमें जो बीच में जो मार्जिन होता है उससे वो कमाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फी इनकम, वो इंश्योरेंस को बेचते हैं उसके एवज में उनको एक परसेंटेज मिलता है, ब्रॉडली हम मान के चलते हैं। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ऐड करता था। अब अगर कोई आके कहता कि आपका 15% या जो भी कमीशन था वो आपको नहीं मिलेगा, या आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो उसमें पूरा जो आपने जो इन्वेस्टमेंट में जो गणित आप बनाते हैं निवेश करने से पहले, एक बैंक में, एक इंश्योरेंस कंपनी में, या किसी ब्रोकिंग कंपनी में, ऑनलाइन जो एग्रीगेटर्स हैं जो वो बेचते हैं, जो ऑनलाइन बेचते हैं, सब में ये फर्क पड़ जाता है। तो इसके वजह से आप देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो इस वजह से।
1: So basically, IRD has recommended a cap on life insurance policy sales to the tune of 25%. Agencies making that commission fee, and the distributors being banks with the income has been hit. We have more on that story from my co-anchor.
2: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत बीमा वितरण के लिए 3 स्तरीय सरल व्यवस्था, खर्च की सीमाओं में कमी, कमीशन ढांचे में बदलाव और बीमा की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। बीमा विनियामक ने बीमा वितरण की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव से संबंधित एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें बीमा वितरण व्यवस्था, खर्च, कमीशन, बाजार आचरण, पारदर्शिता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत बीमा कंपनियों और बड़े वितरण संस्थानों को अपनी कमीशन नीतियों और ढांचे की जानकारी सरल और आसान भाषा में देनी होगी। कुछ निर्धारित वाणिज्यिक बीमा पॉलिसियों में भी कमीशन से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक ये जान सके कि पॉलिसी की कीमत में वितरण की कितनी लागत शामिल है। इरडा ने प्रस्ताव दिया है कि हर बीमा पॉलिसी को बेचने वाले संबंधित व्यक्ति की पहचान से जोड़ा जाए, साथ ही बीमा की गलत बिक्री से जुड़े मामले की जानकारी सार्वजनिक की जाए और गलत बिक्री के मामले में एजेंट या संबंधित विक्रेता से कमीशन वापस लेने का प्रावधान किया जाए। प्राधिकरण ने प्रस्तावित सुधारों पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 25 अक्टूबर 2026 तक सुझाव तथा टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
1: उदयन, वाइल देयर इज क्लियरली अ बेनिफिट फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बाइंग इंश्योरेंस इज लाइकली टू कम डाउन बिकॉज ऑफ अ कैप ऑन एजेंसी फी, द मार्केट टुडे लॉस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपीस financial and insurance stocks because of the hit on their income sources with this policy decision, which is not, it's been a recommendation right now by IRDA. How do you see the markets bouncing back, especially in the backdrop of what's happening geopolitically?
0: Well, let's start with the insurance bit, because I think it's fairly important what has come out. So, you know, this, even if I want to be very restrained, I still cannot help but say this is the right thing to be done. Let's forget about the bank income aspect for a little while. Just for a little while, let's forget it. And just concentrate on why an insurance company exists. Does it exist for the stock market, or does it exist to give protection to the people in this country? So my answer would be the latter.

0: Affairs Forum of India 2026 in New Delhi today, Mr. Krishnan said that India manufactures around 32 to 33 crore mobile phones annually. He added that five major global phone brands are present in India and are manufacturing the devices in the country. In more news, RBI Deputy Governor Rohit Jain today said technology was no longer merely an enabler of banking but was increasingly becoming a part of banks' risk architecture. Addressing the 13th SBI Banking and Economics Conclave 2026 in Mumbai, Mr. Jain highlighted the growing role of technology in banking and said technology is now embedded in almost every critical banking function. While talking to the media on the sidelines of the conclave, the deputy governor said that due to the festive season, there's a lot of credit demand on managing liquidity. He said banks will have a little difficulty deploying available liquidity in the coming months as credit demand continues to grow at 19 to 20%. The key question is at what rate?
1: But at the moment, still it is, we haven't seen any kind of cascading effect. We still haven't reached a stage, Arjun, where we'll have to have a crease on our foreheads. So, but maybe at some point, some of these things will show up. I mean, the oil price, domino effect.
0: More news. The government has reduced the basic customs duty on a major imported crude edible oils to moderate domestic edible oil prices. This will provide relief to consumers and help mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been reduced from 10% to nil, while the basic customs duty on crude soybean oil and crude palm oil has been reduced from 10% to 5%. The new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of next month. Under this framework, the unified payments interface UPI transactions of up to 2000 rupees will attract zero MDR merchant discount rate. Here are details on how UPI MDR is different from traditional debit and credit card MDRs.
2: National Payments Corporation of India, NPCI, has said that UPI MDR is structured to be much lower than all traditional card-based transaction fees. Standard credit card MDRs typically range from 1.5 to 2.5% per transaction. Debit card MDRs are capped at up to 0.90%. NPCI has said that the baseline UPI MDR of 0.4% on transactions above 2000 rupees with a cap of 300 rupees for high value purchases has been set to ensure that UPI remains the most affordable digital payment acceptance tool for commercial enterprises. It said that this cost difference helps merchants lower their payment processing expenses while accepting digital transactions. Ayushi Singh for Market Mantra.
3: अमेरिका और चीन ने अपने व्यापार युद्ध विराम को 2 महीने बढ़ाने पर सहमति जताई है। इससे दोनों देशों को व्यापक आर्थिक समझौते पर बातचीत के लिए और समय मिलेगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बुसान समझौते के अंतर्गत हुआ ये युद्ध विराम अब 10 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। मूल युद्ध विराम समझौते की अवधि 10 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। ये समझौता पिछले अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई सहमति के बाद हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में ढील और व्यापार युद्ध के दौरान लगाए गए भारी शुल्क को रोकना शामिल है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। उदयन, आप इसे कैसे देखते हैं और बेसिकली स्टॉक मार्केट पर इसका आप कैसा प्रभाव देखेंगे?
1: नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, पर दिलचस्प बात यह है कि अभी ये तब हो रहा है जब वो 100% 100% टैरिफ लगाने वाली बात हो रही है कि जो भी रशिया से तेल लेंगे। देखिए कैसे मानदंड है, चीन के लिए एक मानदंड है
3: जी
1: और हमारे लिए एक मानदंड है
3: जी।
1: तो ये आपने सवाल पूछा नहीं था पर ये बताने लायक बात है
3: जी, बिल्कुल,
1: क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बातचीत भारत और अमरीकी प्रशासन के बीच में हो रहा है। तो दिलचस्प बात यह कि उससे जो नेगेटिव हेडलाइन बनता है और सेंटिमेंट बनता है, क्योंकि बुरे खबरों का जो हेडलाइंस हैं वो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो उसका जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी।

तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत ब्राजील

0: विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार अवरोध और शांतिपूर्ण समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रोशिबीना देवी ने वुशू के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायान की डबल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जयकुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स्ड टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं परवीन ने 65 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड सर्विस शुड बी द मेन पर्पस ऑफ लाइफ एंड मस्ट बी इनहेरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। ही सेड दैट इन पॉलिटिक्स टू सर्विस शुड रिमेन द गाइडिंग प्रिंसिपल इवन व्हेन वन रीचेस द हाइएस्ट पोजिशन। मिस्टर मोदी मेड हिज रिमार्क्स ड्यूरिंग अ वर्चुअल इंटरेक्शन विद सेवा यात्रीज ट्रैवलिंग ऑन द यात्रा फ्रॉम वडनगर टू वाराणसी।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: The Prime Minister said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said

0: मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
1: धन्यवाद।
0: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
1: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब, गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में एक खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सेचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि एक गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसरा खतौनी था उनके पास
0: जी,
1: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता हो। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
0: जी,
1: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से एसडीएम से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया, मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
0: जी,
1: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गांव हमारे ODF ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन
0: जी।
1: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गांव में हो गई है, अब इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की हमारे एक आदर्श गांव बन सके उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
0: मिश्रा साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
2: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे।

0: पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहां पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गांव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम कि जो बुनियादी सुविधाएं गांव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक को मकान देना। मकान किसे देना? जो मकान पक्का मकान न बना सके, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा, मकान भी कैसा हो। मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है? मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं, नल के जल, जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है, जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा, हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले, यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो, यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी, स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए। लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा, पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खासतौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन कि लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गाँव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहने खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती हैं सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है। ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब, जो सबसे निचले तबके पे, जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गांव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, यही मनरेगा के तौर पर एक योजना
1: आई गई। बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गाँव की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके

0: स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्मदिवस का तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गांव-गांव में बने हैं। करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, कोई उनकी सुरक्षा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है, रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
0: पीड़ा में रहती थी।
1: तो आप सोचिए कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज हैं जो स्टडी कराएंगे उसके बाद, अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजेस थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
0: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था। इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है। और गाँव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है, इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गांवों में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गांवों में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गांवों में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है, बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है, महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं, यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांवों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की

0: दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले, तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं, बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुंच भी है।
1: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्त के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
2: देखिए, पानी पहुंचाना एक है, लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था, लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की, 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक में चढ़ के, वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी जिसको कहते हैं ना, तो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया, तो एक पानी शुद्ध देकर के इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने, कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा गांव हो, और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी, और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं, और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई, और हमें लगता है कि 70% से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी, उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी हुए, उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांवों की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है, वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं, देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा, तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियर चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है, तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, और गांवों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, बिजली गांवों में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आगे, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है। तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे पड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी, और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा दी गई। अब सवाल है बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जाकर के उनको अपने घर में बिजली लेने के लिए, गांव में कुछ दो चार लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाना, जैसे हर घर में नल और हर नल में जल है तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा, माने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, देखे छोटे बच्चे थे हम ढिबरी में पढ़ते थे
1: जी,
3: लालटेन में पढ़ते थे। अब लालटेन ढिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी आंखों में नुकसान पड़ता था, जितना हम पढ़ सकते थे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, उतना नहीं पढ़ सकते थे कि उसकी उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। अब लोगों को गांव-गांव में घर घर में बिजली पहुंचाना और वहां पे लाइट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंचित किंचित कहीं जो बचे हैं, जो लोग नहीं सामने आएंगे, उनको RDSS योजना में कहीं कहीं उनकी पूरी हो जाएगी। और ये उपलब्धि केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बिजली गांव में पहुंचाते हैं आप ये समझ लीजिए कि वो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था, 2.0, 3.0, मतलब वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे, उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली से चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो? बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो PSC है वो गांव के PSC को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था सुधार कर दी, और ये हमारा जो लाभ मिला, और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: जी जी
3: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया, और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे, उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई, तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव-गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी, पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
1: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहाँ पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
2: देखिए, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी, और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेतिहर किसान, छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं तो वो अपनी साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उस

0: इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है। जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
1: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
2: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है, अब तो आज वो सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी, आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। आज जो देखिए जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेनिटी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, इन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, घरौनी कहते हैं घर से हो गया, इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर,
1: टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
2: बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हर एक का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं, उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
0: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया। हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा।

0: ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहाँ अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहाँ पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट की इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे। और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहाँ पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा नेता होगा वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: तो मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूँ कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
0: बिल्कुल,
1: पीवीटीजी के लिए
2: नहीं, पीवीटीजी देखिए इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इनमें से 75 ऐसे पीवीटीजी जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सेचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल में जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
2: इसमें जोड़ूंगा जी, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
1: जी, वाइब्रेंट विलेज,
2: पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उपयोग करते थे, जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
1: वो पहला गांव क्यों नहीं है,
2: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन आया कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो, वहां टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहां पीने का पानी हो, वहां स्वास्थ्य का हर एक सारी सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हो, लद्दाख का हो, या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है उन सारे गांवों के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।
0: ये सारे गांव की सोच, गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, अब उनकी रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई, तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर वो बहुत ही आगे बढ़ रही है और इसका बहुत फायदा मिल रहा है, वहां के लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहाँ नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए, ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके, और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है। हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
1: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांव में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए DS मिश्रा साहब और SP सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व

सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: अभी आप सुन रहे थे जनसेवा से देश सेवा का 8वां संस्करण। 8 बजे होंगे हिंदी में समाचार, 8:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, और अब से कुछ ही देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने हरली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया, और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 10,870 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, और इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पालना केंद्रों से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस सम्मान पहल में शामिल किया जा रहा है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि आंगनवाड़ी बहनें बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं तक सेवाएं पहुंचाने, टीकाकरण में सहयोग और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 2 वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर और स्थायी भवनों में विकसित करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान, सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: आने वाले 2 साल

0: हैदरपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में क्षेत्रवासियों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
1: इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैदरपुर में लगभग 5000 गज भूमि पर 12वीं तक के नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सामुदायिक भवन और छठ घाट का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में निरोग धाम विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा, जहां आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों पद्धतियों से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में हैदरपुर क्षेत्र के AU ब्लॉक और AO ब्लॉक की झुग्गियों के लिए आवास निर्माण संबंधित टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण में आयुर्वेदिक अस्पताल क्षेत्र की झुग्गियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र की एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी और दिल्ली सरकार का उद्देश्य किसी को हटाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों तक सीमित न रहे बल्कि उन्हें नागरिकों के करीब लाया जाए ताकि उन्हें समय पर जांच और उचित उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त दिल्ली की नींव है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में आयोजित सद्भावना सम्मेलन को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता सामाजिक सुधार से अलग नहीं हो सकती। उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी, डॉ BR अम्बेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरदार तेजा सिंह समुद्री ने अपने अपने तरीके से जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। इसके अलावा राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत के आह्वान को दोहराया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। 31 अगस्त से 23 सितंबर के बीच फॉर्म 6 के 1,14,073, फॉर्म 6A के 216, फॉर्म 7 के 1,960 और फॉर्म 8 के 41,897 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में जरूरी दवाओं की उपलब्धता के बारे में हाल ही में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए बताया गया है कि सभी जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संस्थान ने बताया कि लगभग 90% दवाएं उपलब्ध हैं और स्टॉक की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मीडिया रिपोर्ट में संस्थान में दवाओं की उपलब्धता की पूरी और वर्तमान स्थिति को सही तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार DSCI के साथ ही राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर लगातार बारीकी से नजर रख रही है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज उत्तरी क्षेत्र स्थित राजन बाबू अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। श्री यादव ने ब्रोंकोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड कक्ष और लैब का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुधारने, बिजली के लटकते तार ठीक करने और पेड़ों की छटाई के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश दिए गए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज हिंदू राव अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर दवाइयों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली तथा सफाई, प्रकाश और सड़क की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए।
3: ICU में 8 बेडेड है, इसको 18 किया जाने का प्रावधान। इसके साथ साथ जो एक रेजिडेंस ब्लॉक है वहाँ पे एक 200 से अधिक बेड का नया एक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें हमारे पेशेंट को और सुविधाएं मिलेंगी, आसपास के लोगों को, दिल्ली के लोगों को।

श्री वाही ने लेबर रूम, बाल चिकित्सा, आपातकालीन ब्लॉक और अन्य वार्ड का भी निरीक्षण कर उनके उन्नयन और मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। श्री वाही ने कहा कि हिंदूराव अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ मरीजों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज दिल्ली गेट स्थित बाल भवन में नया रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निगम ने बताया कि केंद्र पर जरूरतमंद लोगों के लिए दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कपड़े, किताबें, खिलौने और बर्तन एकत्र किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उपयोगी वस्तुओं के पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा देना और कचरे को कम करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में विकेंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन और राजधानी को कचरा मुक्त बनाने पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान कचरा पैदा करने वाले बड़े संस्थानों द्वारा कचरे को स्रोत पर ही शत प्रतिशत अलग करने, वार्ड स्तर पर प्रोसेसिंग करने और नियमों का सख्ती से पालन करने पर बल दिया गया।

0: महापौर डॉ मोनिका पंत ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी केवल एक अभियान नहीं बल्कि स्वच्छ दिल्ली के निर्माण के लिए जन भागीदारी से जुड़ा संकल्प है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 14153 कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 पर प्रस्थान करेगी। ये गाड़ी अगले दिन सवेरे 4:50 पर आनंद विहार पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विश्व संचार हिंदुत्व का नाम की किताब जारी करने के बाद ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित विषयों पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और शासन में सुधार करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। उन्होंने नई अर्थव्यवस्था के 3 C यानी कम्प्यूट, कम्पेटेबिलिटी और कोलेबोरेशन का उल्लेख किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, इंजीनियर, विद्यार्थी और प्रौद्योगिकी कंपनियां देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा विनिर्माण में योगदान दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा कि इसके वास्तविक मूल्य का खुफिया जानकारी विश्लेषण, मिशन योजना, रसद, युद्धाभ्यास और निर्णय समर्थन में इसके उपयोग से पता चलता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीतने वाली वुशू खिलाड़ी रोशिबीना देवी और कांस्य पदक विजेता भारतीय रोइंग जोड़ी सतनाम सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सांडा 60 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली रोशिबीना देवी के लगातार प्रदर्शन, साहस और जुझारूपन की सराहना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन

0: का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देशभर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल

संगीत में हर राग का अपना एक रंग है, अपना एक भाव और अपना एक समय। आज की मधुरिमा समर्पित है एक ऐसे ही मधुर और मनमोहक राग को, जिसकी सुरभि रात के दूसरे प्रहर में और भी गहरी हो उठती है। हालांकि अभी उस प्रहर के आरंभ होने में कुछ समय बाकी है, मगर संगीत भला घड़ी की सीमाओं में कहां बंधता है। तो आइए हम प्रवेश करते हैं राग झिंझोटी की सुरमयी दुनिया में और शुरुआत करते हैं हिंदी सिनेमा के एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार नगमे से। साल 1969 की फिल्म चिराग का ये गीत सजा है मदन मोहन साहब की दिलकश धुन से। इसे खूबसूरत अल्फाज दिए हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और अपनी बेमिसाल आवाज से इसे यादगार बनाया है मोहम्मद रफी साहब ने। और गीत कौन सा है, लीजिए सुनिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका मधुरिमा में। बात चल रही है राग झिंझोटी की। राग झिंझोटी, इसकी प्रकृति चंचल, कोमल और मनमोहक मानी जाती है और इसी वजह से गायन के साथ साथ वाद्य संगीत में भी इस राग के सुर बड़ी खूबसूरती से

कृति चंचल, कोमल और मनमोहक मानी जाती है और इसी वजह से गायन के साथ साथ वाद्य संगीत में भी इस राग के सुर बड़ी खूबसूरती से खिलते हैं। श्रृंगार रस की कोमल अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने वाला ये राग ठुमरी और पदों में भी खूब सुनाई देता है। संगीत शास्त्र की बात करें तो राग झिंझोटी की उत्पत्ति खमाज थाट से मानी जाती है। आइए सुनते हैं साल 1957 की फिल्म चंपाकली का गीत राग झिंझोटी के सुरों के साथ।

0: उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभा के साथ, और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसे सुनते हुए लगता है जैसे रफी साहब ने इसे सिर्फ गाया नहीं है बल्कि जिया भी है। फिल्म है पगला कहीं का, और इस फिल्म का ये गीत अपने भीतर मोहब्बत की एक गहरी कसक समेटे हुए है। कुछ रिश्ते भले ही पीछे छूट जाएं, पर उनकी यादें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। इसी एहसास को हसरत जयपुरी ने बेहद खूबसूरत अल्फाज दिए, शंकर जयकिशन ने दर्द में डूबी हुई धुन से सजाया, और फिर मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने इसे वो गहराई दी कि गीत एक दवा भी बन गया और दुआ भी।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का ये अंक। सबसे पहले हेडलाइंस। एशियाई खेलों के वुशु में रोशिबीना देवी ने देश को दिलाया रजत पदक।
1: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक।
0: सतनाम सलमान की जोड़ी ने डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक, बलराज सिंह गर्ल्स में चौथे स्थान पर।
1: निशानेबाजी में परिनाज अनंतजीत ने स्कीट मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: और भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन चल ही रहा है खिलाड़ियों का रोशिबीना देवी से, जिन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया है। जापान एशियन गेम्स में आज रोशिबीना देवी ने वुशु में भारत को रजत पदक दिलाया। रोशिबीना ने महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में ये पदक जीता। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
2: रोशिबीना ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था। फाइनल में उन्हें चीन की झांग शिया ओयू से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। झांग ने दोनों राउंड में जीत दर्ज करते हुए 10-0 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। रोशिबीना का एशियन गेम्स में ये तीसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 17 साल की आयु में 2018 जकार्ता पालिमबांग गेम्स में कांस्य और हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक जीता था। रोशिबीना ने पदक जीतने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
2: 25 वर्षीय मणिपुर की एथलीट ने पहले क्वार्टर फाइनल में मकाऊ की चू मान सिन को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया था। वुशु की सांडा श्रेणी में सेमीफाइनलिस्ट का कांस्य पदक सुनिश्चित हो जाता है। रोशिबीना 2022 में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहती थी। उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगत्यास को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन आखिर में स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीन की झांग शिया ओयू से हार गयी। रोशिबीना का इरादा इस बार अपने पदक का रंग बदलना था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रही। हालांकि लगातार दूसरे एशियन गेम्स में रजत पदक जीतना उनकी क्षमता को दर्शाता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, रोशिबीना का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। कल भी उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी। उम्मीद की जा रही थी कि वो स्वर्ण पदक देश के लिए लाएंगे, लेकिन ये प्रदर्शन भी दर्शाता है उनके दृढ़ संकल्प को। और विशेष, लगातार अच्छा प्रदर्शन है। आज भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक देश के नाम किए। क्या स्थिति है भारत की?
1: प्रशांत, अभी भारत पदक तालिका में 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ 15वें स्थान पर मौजूद है।
0: जी विशेष, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: उधर भारतीय एथलीट सीमा कुमारी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। सीमा ने महिलाओं की

0: 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करते हुए भारत का 16 साल का इंतजार खत्म किया है।
1: सीमा एशियन गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला एथलीट बन गई। इससे पहले साल 2010 में प्रिया श्रीधरन ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि उसी इवेंट में कविता राउत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। सीमा शुरुआती 2000 मीटर में सबसे आगे रही, लेकिन अंत तक आते आते वे तीसरे स्थान पर आ गई और भारत के लिए कांस्य पदक पक्का किया। बहरीन की विनफ्रेड यावी ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं जापान की नोजोमी तनाका ने रजत पदक अपने नाम किया। सीमा ने हांगकांग में 2024 एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सीनियर महिला रेस में और 2026 में 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
2: विशेष एथलेटिक्स में ही एक अच्छी खबर आ रही है। एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। आज का ये दूसरा रजत पदक है और विशेष हम जानना चाहेंगे किन खिलाड़ियों ने ये पदक देश को दिलाया है।
0: प्रशांत, किरण, मनु, जय कुमार, पुवामा, विशाल और विथिया की टीम ने भारत को पदक दिलाकर देश का मान और गौरव दोनों बढ़ाया है।
2: बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ी का। श्रोताओं, आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह भी उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, कल वो खेलते नजर आएंगे।
0: वहीं भारतीय रोवर सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों की डबल्स स्कल्स में कांस्य पदक जीत लिया है, जबकि बलराज पंवार पुरुषों की सिंगल्स स्कल्स के फाइनल में पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: सतनाम और सलमान ने 6:13.25 के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन के जुडी ई और ईदे नी ने स्वर्ण, जबकि उज्बेकिस्तान के पावेल सोरीन और मेखरोज बेक ममात कुलोव ने रजत पदक अपने नाम किया। यह एशियन गेम्स में सतनाम का दूसरा मेडल है। 2023 में हांगझोऊ एशियन गेम्स में पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स क्रू का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इससे पहले बलराज पवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स फाइनल में चौथे स्थान पर रहे और पदक जीतने का मौका चूक गए। चीन के झिवेई डैंग ने स्वर्ण, उज्बेकिस्तान के खोलमुर जाएव ने रजत और जापान के तात्सुया सकुरामा ने कांस्य पदक जीता। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
2: पर अब बात निशानेबाजी पर। भारतीय निशानेबाजी टीम ने भारत को एक और मेडल दिलाया है। परिनाज धालीवाल और अनंत जीत सिंह की जोड़ी ने स्कीड मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। हालांकि भारत की इस जोड़ी से गोल्ड मेडल की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने फाइनल में 44 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। चीन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि साउथ कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता। अनंत और परिनाज का ये इस एशियन गेम का दूसरा मेडल है।
0: और प्रशांत, इससे पहले अनंत ने पुरुष स्कीट टीम और परिनाज ने महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का 15वां मेडल है। अनंत और परिनाज ने 138 का स्कोर करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्कीट स्पर्धा में भारत ने यह कुल तीसरा पदक जीता है। इससे पहले भारत की पुरुष स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। भवतेक सिंह गिल, अनंजिंग सिंह नारुका और मेराज अहमद खान की तिकड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में 346 का स्कोर बनाकर ब्रॉन्ज जीता था। हालांकि 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जा रही मनु भाकर फाइनल में 5वें स्थान पर रही थी और मेडल लाने से चूक गई थी। इस स्पर्धा के टीम फाइनल में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि इंदर सिंह की भारतीय तिकड़ी के लिए भी निराशाजनक अंत हुआ था।
2: जी बिल्कुल, मनु भाकर से सबकी उम्मीदें थी। हालांकि जो भी प्रतियोगिता में मनु भाकर होती है वो पदक जरूर भारत के नाम करती है, लेकिन इस प्रतियोगिता में भारत को पदक दिलाने में असफल रही। और अब बात कबड्डी पर। एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जापान पर 50-25 से शानदार जीत दर्ज की। इसी के साथ भारत ने ग्रुप ए के तीनों मुकाबलों को अपने नाम कर लिया है। गत विजेता भारत पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुकी है। भारत का मुकाबला कल नेपाल से होगा। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश पर 42-21 की जीत के साथ की थी, जिसके बाद ईरान को 37-23 से हराया था। वहीं आज भारत ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए हाफ टाइम तक 32-13 की बढ़त बना ली थी और दूसरे हाफ में भारत ने 18 जबकि और बांग्लादेश

0: इसने 12 पॉइंट जोड़े।
1: दूसरी ओर भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में चीनी ताइपे को 37-21 से हराकर अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। चीनी ताइपे के खिलाफ भारत ने 3 बोनस पॉइंट्स और 6 ऑलआउट पॉइंट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदियों ने 9 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल दर्ज किए। भारतीय पुरुष टीम ने कल बांग्लादेश को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी। इस नतीजे से टीम का मेडल भी सुनिश्चित हो गया था। भारतीय पुरुष टीम कल अपना सेमीफाइनल मैच थाईलैंड से खेलेगी।
0: और अब बात कर लेते हैं मुक्केबाजी पर। एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाज परवीन ने राउंड ऑफ 16 में तजाकिस्तान की मलिका नोजीमोवा से वॉकओवर मिलने के बाद महिलाओं के 65 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। परवीन अब मेडल सुनिश्चित करने से बस एक कदम दूर है। वहीं अलग अलग स्पर्धाओं में कई भारतीय मुक्केबाजों ने स्पर्धा किया, लेकिन आज की क्या तस्वीर रही विशेष?
1: प्रशांत, अगर आज की बात करें तो साक्षी चौधरी को महिलाओं के 51 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्वार्टर फाइनल में परवीन का मुकाबला उज्बेकिस्तान की मौजूदा वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट नवाबखोर खमीवदोवा से होगा।
0: पर अब बात स्क्वाश पर भी कर लेते हैं। एशियाई खेलों में आज स्क्वाश में भारत का दिन शानदार रहा, जिसमें 6 खिलाड़ी सिंगल्स और मिक्स डबल्स मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे। आइए जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
2: महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और तन्वी खन्ना ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। ये दोनों खिलाड़ी अब क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप विजेता और तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने सिंगापुर की ओ योंग वायलिन को सिर्फ 19 मिनट तक चले मुकाबले में 3-0 से हराया। इस युवा खिलाड़ी ने शुरू से ही मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और अपनी प्रतिद्वंदी को जमने का मौका नहीं दिया। वहीं तन्वी को सिंगापुर की ओ योंग वायलिन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला गेम 5-11 हारने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और अगले 3 गेम 11-4, 11-5, 13-11 से जीतकर 3-1 से जीत हासिल की। वहीं भारत के 2 खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली है। अभय सिंह ने श्रीलंका के रविंदु लग्जरी के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए 25 मिनट में 3-0 से जीत दर्ज की। उन्होंने ये मुकाबला 11-5, 11-6, 11-0 से जीता और अब उनका सामना जापान के यूनो सुगुए से होगा। दूसरी ओर वीर चोटरानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 1 घंटे 9 मिनट तक चले मुकाबले में 11-9, 8-11, 11-6, 15-17, 11-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। मिक्स्ड डबल्स ड्रॉ में अनुभवी जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार ने अपने ही देश के सूरज चंद और शमीना रियाज को 2-0 से हराया। एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय जोड़ी कल क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जैमिका अरिबाडो का सामना करेगी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: स्क्वॉश में शानदार प्रदर्शन रहा प्रशांत, जहां सभी 4 भारतीय सिंगल्स खिलाड़ियों और मिक्स डबल जोड़ी के अंतिम 8 में पहुंचने के साथ भारत ने आईची नागोया में अपने स्क्वैश अभियान की मजबूत शुरुआत की है।
0: बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा और कल भी या आने वाले दिनों में उम्मीद होगी कि स्क्वॉश खिलाड़ी जो है भारत को कई पदक दिलाएं। और अब बात हॉकी पर भी कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज एक तरफा मुकाबले में साउथ कोरिया को 8-2 से शिकस्त दी। ये भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। टीम ने टूर्नामेंट का आगाज इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 की धमाकेदार जीत के साथ किया है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 16-1 से रौंदा था। साउथ कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने मैच का अपना पहला गोल 4th मिनट में दागा। सिलानंद लाकरा ने भारत के लिए पहला गोल किया। भारतीय टीम का मुकाबला 26 सितंबर को जापान से होगा।
1: और अब चलते चलते बात करते हैं क्रिकेट की प्रशांत, जहां एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम अपना अभियान 28 सितंबर को शुरू करेगी। वो क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम पहले ही अपनी जगह बना चुकी है रैंकिंग के आधार पर। कैसे देखते हैं भारतीय टीम, कैसा प्रदर्शन रहेगा और किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी?
0: देखिए, विशेष जो टीम का कॉम्बिनेशन है बहुत ही सशक्त है। इसी टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी भारत को दिलाया। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो टीम में संजू सैमसन है, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज है जो कि नंबर 3 पे आते हैं, अभिषेक शर्मा है, उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी हैं, कप्तान श्रेयस अय्यर का भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी है, शिवम दुबे, तो लगातार जो बैटिंग स्ट्रेंथ है टीम का, मिडिल ऑर्डर, वो भी बहुत ही सशक्त नजर आ रहा है विशेष।
1: जी बिल्कुल प्रशांत, और गेंदबाजी में भी भारतीय टीम ने इस बार जो टीम चुनी।

0: है, वो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन रहा है। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती की जगह विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी जो है भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे, और भारतीय टीम पहले से ही गोल्ड मेडल जीत चुकी है एशियन गेम्स में, तो ये अनुभव जो फाइनल खेलने का रहेगा ये भी उनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। महिला टीम ने अपने मेडल को अभी जो है डिफेंड किया।
1: और विशेष इस पे ये भी कह सकते हैं कि बैक टू बैक चैंपियंस रही है भारत, वर्ल्ड कप जीता है लगातार और स्वर्ण पदक जीता है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है एशियन गेम्स में, तो यही उम्मीद की जाए कि इस वर्ष भी भारत को पुरुष टीम भी पदक दिलाए, वो भी स्वर्ण पदक।
0: बिल्कुल प्रशांत,
1: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
3: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
2: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
4: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है।

0: प्रशिक्षण कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
2: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
0: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
3: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
6: The character of war.
7: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
6: With the changing character of war.
3: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
8: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
9: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
10: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है, उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं, उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
3: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
11: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
12: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
11: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
3: जिनेवा में संयुक्त

0: राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशू में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हैं तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Defense Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organized by a media house in New Delhi. The Defense Minister said that a holistic approach

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
1: नमस्कार, आभार, अभिनंदन। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: नमस्कार
1: महोदय। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कवच प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करता है।
2: साधारण तरीके से ट्रेनें चलती हैं
1: जी,
2: तो उसमें ड्राइवर को सिग्नल दिखना पड़ता है, और सिग्नल अगर हरा है तो वो चलता रहता है, अगर लाल है तो उसको ट्रेन रोकनी पड़ती है। लेकिन कई बार बारिश में, अंधड़ तूफान या कुछ घुमाई पर सिग्नल होते हैं या अन्य कई कारण होते हैं जिसमें कि, या कभी ड्राइवर भी ऐसी स्थिति में होता है कि मान लो उसको नींद लग गई तो वो सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में दो ट्रेनों के टकराव की संभावना बनी रहती है
1: जी।
2: ये एक हम बोलते हैं कैप बेस्ड सिग्नलिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहली बात तो ये कि जो भी सिग्नल का वो है, वो ग्रीन है कि लाल है कि, उसके लिए ड्राइवर को बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इंजन से वो चला रहा है उसके सामने जो डिस्प्ले रहता है उसमें उसको पता लग जाता है ये हरा है कि लाल है, कि उसकी सिग्नल की एस्पेक्ट बोलते हैं क्या है, एस्पेक्ट है तो उसके हिसाब से उस ट्रेन की स्पीड निर्धारित करनी पड़ती है। और दूसरा स्टेप आता है कि उसने देख लिया कि मेरा लाल है, लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक लगाना है, उसने ब्रेक नहीं लगाया या उसने ब्रेक लगाने की कुछ की को फेल हो गया ब्रेक, तो उस कंडीशन में जब दो गाड़ियां काफी नजदीक आ जाती हैं तो उनका ये स्वचालित प्रणाली से ये दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और वो एक दूरी पर आकर रुक जाएंगी और एक जो दुर्घटना होती है उससे वो बच जाएंगी। और इसका जो उपकरण होता है वो हर इंजन में, हर लेवल क्रॉसिंग में, हर रेलवे स्टेशन में रखा रहता है, और एक ऑप्टिक फाइबर एक होता है जिससे कि डाटा ट्रांसफर होता है, वो पूरे उस जिस क्षेत्र में इसका कवरेज होता है उसमें इसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद वो उसको पूरा सुरक्षित रूप से डाटा को भेजता है और संचालित करता है, और उसकी वजह से जो ट्रेनों की घटनाएं होती थी पहले, अब एक बार ये पूरा कवरेज हो जाएगा तो वो पुरानी बात हो जाएगी, फिर ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
1: कवच 4.0 में नया क्या जोड़ा गया है जिससे सुरक्षा जाल को और मजबूती मिल सके?
2: इसमें कवच जो 4.0 है ये पुराने कवच के ऊपर एक स्टेप और आगे है। एक तो देखिए, ये आपको बताएं ये बहुत ही सुरक्षा वाला वो है, उपकरण है, और इसमें एक SIL 4 बोलते हैं, एक जो सेफ्टी के कई मापदंड होते हैं, इसमें SIL 4.0 का जो मापदंड है वो सुनिश्चित किया गया है। और इसकी जो कम्युनिकेशन प्रणाली है जो एक उससे दूसरे इंजन को और एक स्टेशन से किसी आने वाली ट्रेन के इंजन को और के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें एक सेफ्टी का एक हायर लेवल पे इसको ले जाता है, और जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी जो गति होती है, जो चाहे वो डाटा आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा हो, चाहे एक स्टेशन से दूसरी ट्रेन के ऊपर जा रहा हो या एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ जा रहा हो, डाटा का जो एक संचालन होता है उसका एक जो सुरक्षा का लेवल है वो एक स्तर और आगे बढ़ जाता है। और जो कुछ गैप्स रह जाते हैं थे पुराने जो कवच 3.0 के पहले वाले वर्जन में, वो कवच 4.0 में उन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, अब ये पूर्णतः सुरक्षित प्रणाली बन गई है।
1: दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों पर जो कवच 4.0 को 2633 किलोमीटर में चालू किया जा चुका है, तो इन मार्गों पर इसके संचालन से रेल यात्रियों को सुरक्षा और परिचालन के स्तर पर किस प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद है?
2: आपसे मैंने बताया कि वो सुरक्षा तो बढ़ती ही है, इसके साथ इसमें एक डाटा भी एक हमको मिलता है ट्रेनों का। देखिए, अभी जैसे एक हमारा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिजिटल हो गया है और हर जगह हम डिजिटल दुनिया का प्रयोग करते हैं, तो आप कवच को जो कवर्ड एरिया है उसमें आप ये समझिए कि रेलवे भी डिजिटली कंट्रोल हो गई उस एरिया में। तो ये 2660 किलोमीटर का जो एरिया है ये अब डिजिटली कंट्रोल्ड है, आप किसी मनुष्य के एक्शन पे उसके ऊपर निर्भर नहीं है, आप उस पूरे सेक्शन में एक स्वचालित प्रणाली जो कि मनुष्य की जो मानवीय गलती होती है उसके होने के पश्चात भी आपको दुर्घटना नहीं होने देगी, ये इसका एक उदाहरण है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रणाली है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोई भी नई आजकल जो तकनीक होती है उसका एक IP होता है, जो उसके मौलिक अधिकार किसके पास है। तो नॉर्मली जो ET जो एक यूरोपियन प्रणाली थी उसके मौलिक अधिकार उनके पास रहते हैं, वो लोग अपना डिजाइन नहीं देते, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भारत जैसे देश हैं उनको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उस प्रणाली को खरीदने के लिए। तो ये जो हमने स्वचालित प्रणाली स्वदेशी बनाई है उससे एक तो पैसा भी हमारा कम लगा है, कल हम इसको अपनी खुद की

0: टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आगे चल के जो इसका अगला वर्जन आएगा उसमें एआई से भी लिंक हो जाएगा ये, क्योंकि ये इतना ह्यूज डाटा
1: जी
0: जनरेट करेगा ये
1: जी
0: सिस्टम कि एक मनुष्य के लिए उसका एनालिसिस करना असंभव होगा। तो उसको एनालिसिस के लिए भी एक एआई एजेंट लगेगा, उससे जो हमारे सेफ्टी के अलावा जो हमारे ऑपरेटिंग है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हर 2 मिनट में या 2.5 मिनट में एक के बाद एक ट्रेन चला सकें। इससे हमारी जितनी ट्रेनें चलाने की क्षमता है किसी एक पर्टिकुलर रेल खंड की, उसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। अब आपको एक बता दूं कि 95% कोयला जो भी पावर हाउस में जाता है वो भारतीय रेल उसका वहन करती है, और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ये कवच सिस्टम है,
1: जी
0: इसकी वजह से जो हमारी ट्रेनों की संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है, और हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा संबल मिला है।
1: आम जनता के आवाजाही और आवागमन मैं कहूं तो उस पर कितना ये सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा?
0: आपने देखा होगा कि एक आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके पास कई ऑप्शन रहते हैं, वो रोड से भी जा सकता है, अपना हवाई जहाज से भी जा सकता है, शिपिंग से भी जा सकता है, कई तरह के उसको है। लेकिन ये माना गया है कि जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये अपने आप में एक बहुत सुरक्षित तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, आवागमन का। उसमें ये कवच भी आपने लगा दिया, तो कवच से उसको ऐसी एक सुरक्षा की एक शील्ड मिल गई है जिससे कि यात्री जब ट्रेन के अंदर रहता है तो उसको, जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि ट्रेन का सफर बस के सफर के कंपेरिजन में ज्यादा आनंददायक होता है और आरामदायक होता है, और हवाई जहाज के कंपेरिजन में, एयरलाइंस के कंपेरिजन में हमारे जो रेट्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो रेलवे में हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, रेलवे में कोई भी एक जिससे कि नई ट्रेनें चला पाए, आज ज्यादा ट्रेनें चला पाए,
1: जी
0: उसका फायदा आम जनता को मिलता है क्योंकि वही इस प्रणाली को सबसे ज्यादा यूज करती है और उसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कवच से, कवच लगाने के बाद नॉर्मल हमारी ट्रेनें चलती हैं 110 किलोमीटर पे, 110 या 130 पे, कहीं कहीं पर अधिकतर जगह 110 है, कहीं कुछ कुछ जगह 130 है, लेकिन एक बार आप कवच प्रणाली लगा देते हैं तो ये आपके लिए संभव हो तो हो पाता है कि आप अपनी ट्रेनों को 160 की गति पे चला सकें, 160 और उसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो ट्रेनों की गति बढ़ जाती है कवच लगाने के बाद,
1: जी
0: उससे कितनी ट्रेनें आप निकाल सकते हैं एक समय में उसकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है, और वो भी एक सुरक्षा के साथ। ये नहीं कि आपने ट्रेनें बढ़ाई और सुरक्षा को एक तरफ दरकिनार कर दिया, आप इसमें ट्रेनों की गति बढ़ती है, आम आदमी गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचेगा,
1: जी
0: सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा और आराम तरीके से पहुंचेगा।
1: यानी समय की भी बचत है, सुरक्षा भी है और एक तरीके से कहें तो टेक्नोलॉजी में भी विस्तार है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दूर दराज के क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है, माल ढुलाई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को अगर हम देखें, उसे किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा कवच से?
0: भारतीय रेल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि एक हम जिसे आम भाषा में बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक चलता है, जिस लाइन से कोयले की ट्रेन गुजरती है उसी लाइन से मेल एक्सप्रेस की ट्रेन भी गुजरती है, उसी यात्री से यात्री गाड़ियां भी जाती हैं। हालांकि हमने एक पहल की है कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है बिहार में सोनपुर तक और नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था, तो उससे काफी फ्रेट जो हमारी मालगाड़ियां उनका उसमें चलाने लग गए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी जो नेटवर्क है उसमें मिक्स ट्रेन चलती है, उसमें मेल एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर ट्रेन भी चलती है,
1: जी
0: और जैसे मैंने बताया है कि जो मालगाड़ियां हैं उस पे हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो निर्भर करती है। अगर ज्यादा ट्रेनें चलेंगी, ज्यादा माल ढुलाई होगी तो कारखानों तक रॉ मटेरियल पहुंचेगा, पावर हाउसेस में कोयला पहुंचेगा, और
1: जी
0: हमारे जो एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो उसमें हमको ज्यादा हम देश से निर्यात कर पाएंगे, जो आयातित चीजें उनको जल्दी तक खपा पाएंगे, तो उससे पूरी एक बहुत बड़ा पुश मिलता है पूरी इकोनॉमी को, जो कि कवच से संभव होगा। और एक जैसे मैंने बताई थी कि ये प्रणाली सबसे बड़ा खूबी यह है कि हमारी स्वदेशी है,
1: जी
0: इसकी वजह से हमारा खर्चा भी नहीं है, और जैसे आजकल के युग में देखा कि जब इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में तो कोई भी किसी का टेक्नोलॉजी बंद कर सकता है, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हमारा खुद का है, और इसको हम दूसरे को बेच के पैसा भी कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और सुर्खियों में देखते हैं कि रेल के जो एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं पर धुंध लग जाने से, कोहरे की वजह से हो जाते हैं, जो कि कवच जैसी जो प्रणाली है वो बचाती है इस तरह के एक्सीडेंट होने से, और खास करके एक्यूरेसी, जैसा आपने मुझे बताया अभी कि एक्यूरेसी बढ़ाती है और स्पीडिंग जिससे बढ़ती है। तो ऐसे में अगर हम देखें किस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उसमें भी थोड़े से जो रेट्स हैं वो कम होंगे।
0: अगर आप हमारा इतिहास निकालेंगी रेलवे का तो उसकी संख्या बहुत ही मेजर गिरावट आई है, उसमें उसके कई आधारभूत कारण हैं। हमने ट्रैक की क्वालिटी, अपने जो रोलिंग स्टॉक बोलते हैं जो डब्बे कोचेज उसकी क्वालिटी, और हमारी सिग्नलिंग प्रणाली, हमारी सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, हमारे जो चालक गण हैं उनके ऊपर एक निगरानी, उनकी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और सुरक्षा संबंधित जो उपकरण हमने लगाए हैं उससे एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जो आज की तारीख में जो एक्सीडेंट्स हैं वो बिल्कुल नगण्य हो गए हैं अगर हम उसको पिछले कुछ पुराने वर्षों से उसकी तुलना करें तो।
1: लेकिन ये किस तरीके से रेलवे सुनिश्चित करेगा या सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये छोटे छोटे जो शहर हैं उस तक भी ये सिस्टम उसी तरीके से पहुंच पाए, कनेक्टिविटी वैसी ही रहे?
0: देखिए, मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बोला था कि ये जो कवच प्रणाली है
1: जी,
0: ये अपना जहां भी कवच जाता है ये अपना खुद का ऑप्टिक फाइबर केबल लेके जाता है, और एक नहीं दो, तो एक पेयर जाता है, दो ऑप्टिक फाइबर केबल उस, चाहे वो कितना भी अंदरूनी गांव हो, कितना दूर दराज का इलाका हो, उस तक ही हमारे ऑप्टिक फाइबर केबल चलाए जाते हैं, और इसका हमारी जो आम जो नेटवर्क इशू है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं है, और ये हमारा कवच के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ये दो ऑप्टिक फाइबर केबल। उसके अलावा हर कुछ दूरी पे रेडियो टावर बनाए जाते हैं, हर स्टेशन के ऊपर एक रेडियो एंटीना रहता है, और हम अब इसको कोशिश कर रहे हैं कि LTE और 5G में भी इसको ले जाएं, तो इसके, लेकिन इसका जो भी नेटवर्क होगा वो हमारे बाकी जो हम, आप और हम जिस मोबाइल फोन से बात करते हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं है, ये इसका जो संचालन प्रणाली है वो अपने आप में एकदम अलग है, और वो जहां जाएगा वो अपना खुद का केबल लेके जाएगा, अपने खुद के रेडियो टावर्स लेके जाएंगे, अपने खुद के दूसरे उपकरण लेके जाएंगे, जिससे कि चाहे इलाका महानगर का हो चाहे दूर दराज का हो सुरक्षा का लेवल दोनों जगह बराबर होगा।
1: जी महोदय, देश भर में इस तकनीक को लागू करने में क्या आपकी नजर में कोई चुनौतियां भी हैं कि ये चुनौती आ सकती है?
0: चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इसमें दो चार चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि इसमें बजट का काफी खर्चा आता है, एक किलोमीटर करने में करीब करीब 50 लाख रुपए खर्चा आता है, एक जो हमारे इंजन में उपकरण में लगाया जाता है उसमें 50 लाख रुपए का उपकरण आता है। उसके अलावा जो कंपनियां, ये क्योंकि SIL 4 जो होता है, सुरक्षा का जो लेवल है 4 का, SIL 4 बोलते हैं उसको हमारी रेलवे की भाषा में, तो जिन कंपनीज के पास उसका उस लेवल की टेक्नोलॉजी है वही इसको लगा सकती है, और ऐसी कंपनी जो कि इसको लगा सकती हैं वो आज की तारीख दिन में सिर्फ 4 या 5 ही हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी जो जिनके पास ये तकनीकी है वो बढ़ेगी, उस दिशा में हमारा जो RDSO है, हमारी रेलवे बोर्ड है, हमारी मिनिस्ट्री है, ये काफी प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस काम के लिए सक्षम हो सके, और एक बार और उनका सक्षम जो सक्षमता का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे RDSO द्वारा दिया जाता है, और जैसे जैसे उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि वो भी इस काम को कर सकती हैं और ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगी।
1: महोदय, रेलवे में जो रिफॉर्म्स चल रही हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कवच 4.0 किस तरीके से उसमें अपनी भागीदारी देता हुआ नजर आ रहा है?
0: कवच जो 4.0 है ये एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है, और इसके साथ जो एक इकोसिस्टम बनेगा टेक्नोलॉजी का, जो कंपनियां इसको डेवलप कर पाएंगी वो न सिर्फ कवच में अन्य जुड़े, जैसे हमारी आगे चल के प्लानिंग है कि हमारा फ्रेट का सिस्टम है फ्वाइस बोलते उसको, FOIS, ऐसी कोचिंग ट्रेन का COIS क्वाइस है, तो ऐसे हमारे कई इसके अलावा पैरेलल में नेटवर्किंग चल रही है, तो हमारी ये 4.0 और उसके आगे के जो लेवल्स आएंगे तो उसमें एक तो सुरक्षा तो मिलेगी और उससे जो डाटा जनरेट होगा, अगर हम कोशिश रहेगी कि उसको हम अपने फ्वाइस प्रणाली और क्वाइस प्रणाली से कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो यात्री ट्रेनें हैं, जो हमारी मालगाड़ियां हैं, उनके प्रचालन में भी एक अद्भुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और एक ओवरऑल रेलवे को एक मेजर पुश मिलेगा डिजिटलाइजेशन की डायरेक्शन में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide.

0: अग्रणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
2: ए गुड बुक ओपन्स ए विंडो ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। इट इनवाइट्स अस टू थिंक, नॉट ओनली टू थिंक, टू क्वेश्चन, नॉट ओनली टू क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड एंड समटाइम्स टू लुक एट फेमिलियर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव।
0: सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वह उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशेबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी।

0: जनवरी तक अपने व्यापारिक युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द किया। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशो बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने G7 के वर्तमान अध्यक्ष फ्रांस द्वारा आयोजित दूसरी G7 विकास मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस दौरान श्री जॉर्ज ने सर्वोदय के सिद्धांतों पर आधारित भारत के मानव केंद्रित और समावेशी विकास पथ पर बल दिया। भारत की विकास साझेदारी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री जॉर्ज ने कहा कि विकास का अर्थ केवल वित्त पोषण प्रदान करना नहीं है, बल्कि घरेलू क्षमताओं का निर्माण और लचीलेपन को मजबूत करना है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यावहारिक सहयोग पर भी जोर देता है। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 63वें सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता हरलीन कौर ने कहा कि POJK के लोग महीनों से भोजन, बिजली, रोजगार, बेहतर बुनियादी ढांचे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। उन्होंने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक CHOGM की सफलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका और चीन ने अपने व्यापार युद्ध विराम को 2 महीने बढ़ाने पर सहमति जताई है। इससे दोनों देशों को व्यापक आर्थिक समझौते पर बातचीत के लिए और समय मिलेगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बुसान समझौते के अंतर्गत हुआ यह युद्ध विराम अब 10 जनवरी तक जारी रहेगा। चीन ने अभी इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, शुल्क, तकनीक, AI, सैन्य संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस परिसर में 3 समाचार चैनलों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यायाधीश ने आज आदेश दिया कि CNN, MS Now और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश की अनुमति बहाल की जाए।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे उन चैनलों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जो उनके अनुसार फर्जी खबरें फैला रहे थे। बाद में उन्होंने तर्क दिया कि उनकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। इन चैनलों ने संयुक्त रूप से दायर मुकदमे में तर्क दिया है कि ये प्रतिबंध प्रथम संशोधन का घोर उल्लंघन है क्योंकि ये उनकी कवरेज की सामग्री के आधार पर उन्हें निशाना बनाता है। अपने फैसले में अमेरिका के जिला न्यायाधीश टिमोथी केली ने व्हाइट हाउस

0: को तीनों चैनलों को प्रवेश की अनुमति तुरंत बहाल करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसे आचरण के लिए स्पष्ट मानक होने चाहिए जिनके आधार पर प्रेस पास रद्द किया जा सके। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका ने कहा है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा तथा खाद्यान्न से जुड़े मामलों में युद्ध विराम पर विचार करने को तैयार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी प्रकार के व्यापार समझौते या औपचारिक प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई समझौता या बातचीत तय नहीं हुई है। श्री रूबियो ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि सीमित युद्ध विराम से युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे तनाव कम करने और आगे की शांति वार्ता का रास्ता तैयार करने में मदद मिल सकती है। यमन के हूती विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने हूती विद्रोहियों की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया है। गठबंधन ने कहा है कि ये मिसाइलें सऊदी अरब के तैफ और यानबू शहरों को निशाना बनाकर दागी गई थीं। गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा कि हूतियों की किसी भी प्रकार की हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा। बांग्लादेश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने बोइंग के साथ 11 नए विमानों की खरीद के लिए समझौता किया है। इससे बांग्लादेश विमानन क्षेत्र का विस्तार करने और नए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 2026 को देखने के लिए आज राजस्थान पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने कहा है कि वे दोनों देशों की सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षण करते देखने के लिए उत्सुक हैं। और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
3: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
2: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की स्वतंत्र जांच का आग्रह किया। अमेरिका और चीन ने अगले वर्ष 10 जनवरी तक अपने व्यापारिक युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द किया। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम हरप्रीत कौर विद वर्ल्ड न्यूज। India affirms commitment to inclusive development, international cooperation and multilateral reforms. Human rights activists urge UN Human Rights Council to set up independent probe and crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. United States and China agree to extend their trade truce until January 10 next year. Federal judge blocks US President Trump's White House media ban

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कहते हैं ना कि दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, रात आते ही दिल कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है। किसी की मुस्कान, किसी की आवाज और किसी के साथ बिताया हुआ वो एक छोटा सा पल। तो आज की शाम उन सभी लोगों के नाम जिनके दिल में किसी के लिए खास जगह है, और उन लोगों के नाम भी जो प्यार और मोहब्बत तो महसूस करते हैं लेकिन उन्हें लफ्जों में, शब्दों में बयां नहीं कर पाते। तो चलिए कुछ देर के लिए दुनिया की सारी चिंताओं को दरकिनार कर देते हैं और डूब जाते हैं प्यार, याद और मीठे उन मीठे एहसासों के नाम इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: मोहब्बत कितना खूबसूरत लफ्ज है ना। कभी किसी की एक नजर से दिल की धड़कन बदल जाती है, कभी कोई बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है, और कभी कभी तो हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब कोई इंसान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम या यूं कहूं कि सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। ठीक इस खूबसूरत से गीत की तरह
1: प्यार वो है कि मर कर भी तुमको

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

क्या खूबसूरत धुन थी, और शायद कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो कानों से सीधा हमारे दिल तक पहुंचती हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि प्यार हमें बदलता नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी कुछ खूबसूरत चीजों को सामने ले आता है। हम किसी के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना सीख जाते हैं, किसी की पसंद याद रखने लगते हैं, और किसी के चेहरे की मुस्कान देखने के लिए हर छोटी से छोटी कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता है, बल्कि किसी की खुशी के लिए दिल से काम करना भी होता है। लेकिन दोस्तों की हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए, मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लफ्जों से नहीं, बल्कि सम्मान, भरोसे और समझ से भी बनती है।

दोस्तों, रात का अपना एक जादू होता है। दिन में हम कितने ही लोगों से घिरे रहें, कितनी ही बातें कर लें, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हम खुद से मिलने लगते हैं, और इसी खामोशी में कभी किसी की याद बहुत करीब से महसूस होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान

0: योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें पीएएफआई वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि एमडीआर का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाज धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे. उदयन, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस स्लंप. सेंसेक्स टंबल्स ओवर 1200 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,063. द गवर्नमेंट सेज इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग ओवर 99% ऑफ द कंट्रीज टोटल डोमेस्टिक डिमांड फॉर मोबाइल फोन्स. And global crude oil.

0: Oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स 1200 अंकों से अधिक फिसला. निफ्टी 23063 के स्तर पर बंद हुआ. सरकार ने बताया कि देश में मोबाइल फोन की घरेलू मांग का 99% से अधिक का उत्पादन भारत में हो रहा है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73581 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 384 अंक लुढ़ककर 23063 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी दबाव देखने को मिला. मिड कैप 100 सूचकांक 2.3% फिसला, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सत्र की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बैंकिंग तथा बीमा शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार को प्रभावित किया. सेंसेक्स और निफ्टी पूरे कारोबारी सत्र के दौरान दबाव में रहे और कारोबार के दूसरे हिस्से में बिकवाली और तेज हो गई.
0: Benchmark domestic equity indices slumped over 1.6% today. Sensex tanked 1,028 points to close at 73,581. Nifty plunged 384 points to settle at 23,063. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index shed 2.3%, while the small-cap 100 index lost over 1.5%. This morning, markets opened with a gap down as a spike in bond yields, elevated crude oil prices and a sell-off in banking and insurance stocks weighed on the indices. Sensex and Nifty remained under pressure throughout the session, with a sell-off intensifying during the second half of the trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 29 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एनटीपीसी अपरिवर्तित रहा. प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस करीब 5.5%, एक्सिस बैंक 4.7% और बजाज फिनसर्व 4.1% नीचे बंद हुआ.
0: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, all 28 sectors edged downward. Among the top losers, mid-small private banks declined 2.8%, housing finance lost 2.6%, and financial services shed more than 2.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,884 companies declined, 1,473 companies advanced, and 216 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. उद्यन, हम जिस तरीके से मार्केट को अगर ट्रैक करते हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले लगभग कुछ महीनों से अगर मैं कहूँ, तो हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड को लेकर के अभी कुछ दिनों से एक सतर्कता है मौजूद. कच्चे तेल के दाम कितने वॉलेटाइल हैं वो हम देख ही पा रहे हैं. लेकिन आज बीमा के शेयरों में जो एक उहापोह और उथल पुथल देखने को नजर आया, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से इसने मार्केट की गिरावट में, जो 1.5% आज मार्केट गिरा, उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है?
2: जो बीमा क्षेत्र ने काफी कंट्रीब्यूट योगदान रहा, और उसका कारण यह है कि ये सिर्फ बीमा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये बैंकों से भी जुड़ा हुआ है.
1: तो दबाव उन स्टॉक्स पे भी हमने
2: बिल्कुल हुआ है. जो आपने कुछ बैंकों के नाम लिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, वो सीधा जुड़ा हुआ है. तो घटनाक्रम ऐसी रही कि IRDA जो आपके बीमा क्षेत्र में रेगुलेटर है, जो मैनेज करती हैं, रेगुलेशन रेगुलेट करती हैं, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला जो कि बीमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वितरण होता है, उससे जुड़े वहां पे कमीशन मिलता है, वहां पे फीस होती है, तो उससे जुड़ी हुई कई बातें जो है उसमें, अभी तो वो नियम बने नहीं है, पर उसमें उनकी मंशा, उनकी सोच सामने आ रही है. और ये एकदम से नहीं आया, इसके बारे में काफी संकेत मिल रहे थे और ये डिस्कशन पेपर आ गया. क्योंकि ये सरकार और रेगुलेटर की मंशा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि इस तरफ ये जा रहा है। और ये अभी जिस तरीके से बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस को किया जा रहा था, उसकी जिस तरीके से उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुनाफा जनरेट किया जाता था, उसके उसमें एक भारी बदलाव की के संकेत हैं। उसके वजह से आपके जो जितने भी कंपनीज, जो बीमा क्षेत्र की कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, स्वास्थ्य इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, जीवन बीमा हो गया, और वो बैंक जो वहाँ देखिए, बीमा का जो वितरण होता है वो दो तरीके से, एक तो एजेंटों के थ्रू से होता है, एक ब्रोकर जो ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिया होते हैं उनके थ्रू से होते हैं, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट ब्रोकिंग, और तीसरा होता है बैंक के थ्रू से जाता है। तो ये तीन पाइप्स हैं जिनके थ्रू से आम जनता या जो भी उपभोक्ता है उसके पास पहुंचती है। ये तीनों में असर है, ये जो डिस्कशन पेपर है वहां पे तीनों में असर है। और आप अगर बेचते हैं उसमें, उसके एवज में आपको जो कमीशन मिला करता, तो उसमें कमी के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आप कमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कंपनियां उसको बेचती थी, जो इनको मैन्युफैक्चर कर, जो बीमा कंपनी इनको तैयार करके छोड़ते थे, क्योंकि अगर आपके बिचौलिए या ब्रोकर्स या एजेंट बेचेंगे तभी आप कमाएंगे
1: जी।
2: तो नंबर वन उनको फर्क पड़ा, बीमा कंपनी के जो कंपनी है वो उनको फर्क पड़ा, जो बीच में है उनको फर्क पड़ा, और जो बैंक है उनको फर्क पड़ा। तो अगर आप बीमा कंपनी और बैंक अगर लेते, बैंक खुद ही जो फाइनेंशियल सेक्टर में आप इंडेक्स में देख लीजिए, जबरदस्त उनका वेटेज है। तो ये दोनों मिला के ही, ये अगर ये तेल के दाम वाला जो सुर्खी जो है वो ना होता, ये खुद में ही काफी था, और उसके ऊपर तेल वाला हेडलाइन आ गया जो उसकी खबर आएगी, जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिला, और चारों तरफ विश्व भर में बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड में जो आपको मिलता है उसमें भी आ गया। तो उस वजह से आपने इतना जबरदस्त मार्केट में रिएक्शन देखा। तो ये बताता चलूं एक एक एक सेंटेंस और, कि बैंकों के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बैंकों के लिए इंश्योरेंस जब वो बेचते हैं वो फी इनकम है। तो बैंकों के दो तरह की आय होते हैं, एक तो वो आप और हम जैसे लोगों से पैसे लेके, वो डिपॉजिट लेके फिर दूसरों को लोन देते हैं, तो वो फंड इनकम होता है, तो उसमें जो बीच में जो मार्जिन होता है उससे वो कमाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फी इनकम, वो इंश्योरेंस को बेचते हैं, उसके एवज में उनको एक परसेंटेज मिलता है, ब्रॉडली हम मान के चलते हैं। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ऐड करता था। अब अगर कोई आके कहता कि आपका 15% या जो भी कमीशन था वो आपको नहीं मिलेगा, या आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो उसमें पूरा जो आपने जो इन्वेस्टमेंट में जो गणित आप बनाते हैं निवेश करने से पहले, एक बैंक में, एक इंश्योरेंस कंपनी में, या किसी ब्रोकिंग कंपनी में, ऑनलाइन जो एग्रीगेटर्स हैं जो वो बेचते हैं, जो ऑनलाइन बेचते हैं, सब में ये फर्क पड़ जाता है। तो उसके वजह से आप देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो इस वजह से।
0: So basically, IRD has recommended a cap on life insurance policy sales to the tune of 25%. Agencies making that commission fee, and the distributors being banks with the income has been hit. We have more on that story from my co-anchor.
1: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत बीमा वितरण के लिए तीन स्तरीय सरल व्यवस्था, खर्च की सीमाओं में कमी, कमीशन ढांचे में बदलाव और बीमा की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। बीमा विनियामक ने बीमा वितरण की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव से संबंधित एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें बीमा वितरण व्यवस्था, खर्च, कमीशन, बाजार आचरण, पारदर्शिता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत बीमा कंपनियों और बड़े वितरण संस्थानों को अपनी कमीशन नीतियों और ढांचे की जानकारी सरल और आसान भाषा में देनी होगी। कुछ निर्धारित वाणिज्यिक बीमा पॉलिसियों में भी कमीशन से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा ताकि ग्राहक ये जान सके कि पॉलिसी की कीमत में वितरण की कितनी लागत शामिल है। इरडा ने प्रस्ताव दिया है कि हर बीमा पॉलिसी को बेचने वाले संबंधित व्यक्ति की पहचान से जोड़ा जाए, साथ ही बीमा की गलत बिक्री से जुड़े मामले की जानकारी सार्वजनिक की जाए और गलत बिक्री के मामले में एजेंट या संबंधित विक्रेता से कमीशन वापस लेने का प्रावधान किया जाए। प्राधिकरण ने प्रस्तावित सुधारों पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 25 अक्टूबर 2026 तक सुझाव तथा टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
0: उदयन, वाइल देयर इज क्लियरली अ बेनिफिट फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बाइंग इंश्योरेंस इज लाइकली टू कम डाउन बिकॉज ऑफ अ कैप ऑन एजेंसी फी, द मार्केट टुडे लॉस 1.25 लाख करोड़ रुपीस financial and insurance stocks because of the hit on their income sources with this policy decision, which is not, it's been a recommendation right now by IRDA. How do you see the markets bouncing back, especially in the backdrop of what's happening geopolitically?
2: Well, let's start with the insurance bit because I think it's fairly important what has come out. So, this, even if I want to be very restrained, I still cannot help but say this is the right thing to be done. Let's forget about the bank income aspect for a little while. Just for a little while, let's forget it. And just concentrate on why an insurance company exists. Does it exist for the stock market or does it exist to give protection to the people in this country? So my answer would be the latter. So if you're existing for your customer, then you should better be doing things which are in the interest of the customer. Now, if you see what you just read, you must have read about a couple of sentences on mis-selling. Mis-selling has been a terrible phenomenon in the insurance industry, and nobody can, in his right or her right mind, can ignore it. Now, in the study on the discussion paper, IRDA brings it out very clearly. Arjun, it's worth noting some of the stats are nothing to be proud of. If a person on an average, an Indian buys an insurance policy, by the fifth year, half of them are not holding the policy. That's ridiculous, to say the least. And the 10th year, these are like 15, 20 year policies. People are putting their hard earned money in insurance policy. And the maximum benefit that people are getting, which isn't, if 100 rupees is the average benefit a person is getting from an insurance policy, the discussion paper says 37 rupees is coming from surrenders. So people are not, sticking on to their life insurance policy. What good is a long-term commitment by a regulated institution when somebody cannot trust your product? So that has to change. And if there's a bloodbath in the stock market for a day, I think it's a very small price. Because imagine a person in his or her crisis, health crisis, life crisis, gets let down by the, feels let down by the product or is uncovered. Then there's no point in having an industry like this. So it's a very good thing that has happened. The other part is about the compression in margins. There are rules, okay? And if you're a smart manager, if you're a smart promoter, you'll adjust to the rules. Every industry has a set of rules. Now, one staggering statistics, let me share it with you. As a percentage of GDP, the coverage of life insurance in our country is abysmal. It's single digit. It's like 3 or 4% of the GDP. We have the largest population, but we have the 10th largest life insurance market. I cannot even wrap my head around such statistics. So it obviously, this discussion paper has to move beyond immediate stock market reaction. I'm sure they'll bounce back. And it is not happening. They have talked about a glide path. They're not saying it's going to happen day after tomorrow. So all these things are required, you know. And eventually, this will call for a much cleaner, better product, cleaner product. If your business spreads around, you'll do better. You know, the discussion paper, every para is so scary. You know, some of the new business is happening from portability. You know, one customer, you're getting customers from existing customers. The idea is to add new people in our country. So, I mean, pretty much, it's a bad report card for the industry that has been brought to my IRDAI. I have friends, I have colleagues, and I have associates in the insurance industry. So obviously they'll take offense if they're listening to this. But when you see something like that, you really cannot be diplomatic about it. So I think if today investors have suffered, my sympathies are with them, because they're not going to need the money day after tomorrow. But this cleanup is badly needed.
1: एशियाई शेयर बाजारों में आज जापान का निके लगभग 0.8% बढ़ा, वहीं दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहा.
0: How concerned are you about Asian markets correcting today as well with what's happening geopolitically, bond yields, what's happening with the US stock market, with the AI sell-off and the oil market which is creeping into global inflation? Everything is costing more because of oil prices, and really the flow of oil being affected by wars at two fronts.
2: Well, Arjun, they're actually, whatever you said, they're all interlinked, okay? So oil prices rising means higher pressure all around, governments possibly borrowing more. If they borrow more, they'll borrow more for a longer tenure. If they borrow for more a longer tenure, they'll have to offer more so that they can raise money. If the long-dated, longer tenured bonds, their yields go up, that means what's happening is the value, because they're inversely, value of a debt investment is inversely related to the interest rate, right? The coupon. So if they are rising, your value of your existing bond investments are going down. So anybody who's holding those investments, you know, trying to balance, having an asset allocation, little bit of equity, little bit of debt and whatever, so their portfolios are getting hit, right? So all those things are related. And of course, you mentioned AI, they have monster appetites for debt now, okay? Whether it's equity, whether it's debt, if governments are going to borrow, who's going to lend to them? So it's a crowding out that's happening. So see, that's how it's happening. See, I have 100 rupees in the system. Suddenly government says, I'm going to borrow 50 rupees more. What's going to happen to somebody who needs 90 rupees? Naturally, the government comes and raises money more, because the government's risk is less. So where will the money go? It'll go to the government, right? So that is which is basically called crowding out. I mean, in my way,
0: there's also a lot of private sector borrowing by pledging assets, usually hardware of IT companies, to propel the boom of AI investment. That's also hit many of the companies which are listed on these Asian stock markets. So I want to bring your attention to the Nikkei 225, which actually rose. It was a contrarian rise, 2.8%. Tell us about the Bank of Japan, their decision to raise the repo rate to 1.25%. It's been very low, 1% only, 1.25%.
2: Well, Arjun, the thing is that Japan is seeing something which it has not seen in the last, since 90s, you know. They're actually seeing inflation. And that is because the government has said that we're going to spend our way out of this mess that we are in. Now, that has made the global markets nervous, because people used to bring money to Japan and get it into yen and then invest.
0: The carry-on trade.
2: Yeah, carry trade. So that mechanism is now under stress. And the borrowing which Japanese government is doing is making people nervous. And that's why it's every time you'll see in any global market review, Japan is getting the headlines or whatever coverage.
0: In more news, electronics and IT Secretary S. Krishnan has said that India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones, addressing the inaugural session of the 13th Annual Public Affairs Forum of India 2026 in New Delhi today. Mr. Krishnan said that India manufactures around 32 to 33 crore mobile phones annually. He added that five major global phone brands are present in India and are manufacturing the devices in the country. In more news, RBI Deputy Governor Rohit Jain today said technology was no longer merely an enabler of banking but was increasingly becoming a part of banks' risk architecture. Addressing the 13th SBI Banking and Economics Conclave 2026 in Mumbai, Mr. Jain highlighted the growing role of technology in banking and said technology is now embedded in almost every critical banking function. While talking to the media on the sidelines of the conclave, the deputy governor said that due to the festive season, there's a lot of credit demand on managing liquidity. He said banks will have little difficulty deploying available liquidity in the coming months as credit demand continues to grow at 19% to 20%. The key question is at what rate?
2: But at the moment still it is, we haven't seen any kind of cascading effect. It's still...

0: within we still haven't reached a stage, Arjun, where we'll have to have a crease on our foreheads. So, but maybe at some point some of these things will show up. I mean, the oil price, domino effect.
1: More news. The government has reduced the basic customs duty on a major imported crude edible oils to moderate domestic edible oil prices. This will provide relief to consumers and help mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been reduced from 10% to nil, while the basic customs duty on crude soybean oil and crude palm oil has been reduced from 10% to 5%. The new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of next month. Under this framework, the unified payments interface UPI transactions of up to 2000 rupees will attract zero MDR merchant discount rate. Here are details on how UPI MDR is different from traditional debit and credit card MDRs.
2: National Payments Corporation of India, NPCI, has said that UPI MDR is structured to be much lower than all traditional card-based transaction fees. Standard credit card MDRs typically range from 1.5 to 2.5% per transaction. Debit card MDRs are capped at up to 0.90%. NPCI has said that the baseline UPI MDR of 0.4% on transactions above 2000 rupees with a cap of 300 rupees for high value purchases has been set to ensure that UPI remains the most affordable digital payment acceptance tool for commercial enterprises. It said that this cost difference helps merchants lower their payment processing expenses while accepting digital transactions. Ayushi Singh for Market Mantra.
3: अमेरिका और चीन ने अपने व्यापार युद्ध विराम को 2 महीने बढ़ाने पर सहमति जताई है। इससे दोनों देशों को व्यापक आर्थिक समझौते पर बातचीत के लिए और समय मिलेगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बुसान समझौते के अंतर्गत हुआ ये युद्ध विराम अब 10 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। मूल युद्ध विराम समझौते की अवधि 10 नवम्बर को समाप्त होने वाली थी। ये समझौता पिछले अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई सहमति के बाद हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में ढील और व्यापार युद्ध के दौरान लगाए गए भारी शुल्क को रोकना शामिल है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। उदयन, आप इसे कैसे देखते हैं और बेसिकली स्टॉक मार्केट पर इसका आप कैसा प्रभाव देखेंगे?
0: नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, पर दिलचस्प बात यह है कि अभी ये तब हो रहा है जब वो 100% 100% टैरिफ लगाने वाली बात हो रही है कि जो भी रशिया से तेल लेंगे। देखिए कैसे मानदंड है, चीन के लिए एक मानदंड है
3: जी
0: और हमारे लिए एक मानदंड है
3: जी।
0: तो ये आपने सवाल पूछा नहीं था, पर ये बताने लायक बात है
3: जी, बिल्कुल।
0: क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बातचीत भारत और अमरीकी प्रशासन के बीच में हो रहा है, तो दिलचस्प बात ये कि उससे जो नेगेटिव हेडलाइन बनता है और सेंटिमेंट बनता है, क्योंकि बुरे खबरों का जो हेडलाइंस हैं वो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो उसका जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, हाई ऑयल प्राइसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्लाई चेन के ऊपर असर, तो एक और सुर्खी ऐसी आ जाती है जो नेगेटिव होती है, उससे बेहतर है कि जितने हैं उसी को हम मैनेज करें।
1: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 2.1% higher at $105.25 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.7% up at $93.76 per barrel at the time of writing this report. Then some more bad news. Diesel prices have been going up substantially in this short term. How is that going to be arrested?
0: I don't know much about diesel prices in India. I have only read about in the US. But if they are going up, I'm sure the government is going to intervene because it's an essential input in agriculture and in your transport. So I don't think the government is going to be a spectator in this, and they will come into act. But this is not as tough, Arjun, to manage as the LPG problem and the natural gas problem, which we were
1: It's affecting Russia and Europe because of what's happening.
0: No, of course, we have long-term contracts with Qatar. So that was an issue. But I think this is more manageable, I would say.
3: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 0.8% की गिरावट के साथ 150,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग 2% के नुकसान से 228,248 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई। उदयन, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और अर्जुन के सवालों के जवाब देने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices slump. Sensex tumbles over 1,200 points. Nifty settles at 23,063. The government says India is manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी

0: भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग दो राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said, spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
2: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, आवाज है मुकेश की और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

जी हाँ, एक वो भी जमाना हुआ करता था जब परदेश जाने वाले की एक उम्मीद बंधी होती थी कि परदेसी परदेश में सुकून से अपना काम कर पाता था और प्रेम को संजो कर रख पाता था, क्योंकि प्रेम खत में बंद होकर पास पहुंचता रहता था और उसी प्रेम के सहारे वो परदेश में खुशी खुशी अपना काम करता था, जीवन यापन के संसाधन जुटाता था और फिर उन संसाधनों के साथ प्रेम की सौगात लेकर वापस अपने गांव की तरफ लौटता था, अपने घर की तरफ लौटता था। एक वो भी जमाना हुआ करता था। कभी खत लिखना एक रस्म हुआ करती थी। कागज पर किसी अपने का नाम लिखते ही मन खिल उठता था। स्याही सूखने तक जैसे भावनाएं उसी पन्ने पर सांस लेती थी और फिर लिफाफा बंद होता और इंतजार शुरू। डाकिये की साइकिल की घंटी कितनी प्यारी लगती थी उन दिनों। एक खत आता था और पूरा दिन अपना हो जाता था। और आज संदेश पल भर में पहुंचते हैं, मगर उस इंतजार जैसी मिठास नहीं होती। कहते हैं कुछ रिश्ते शायद दूरी से नहीं पर इंतजार से गहरे हुआ करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उसी पुराने जमाने की ओर और लौटते हैं उसी पुराने जमाने में, करते हैं ढेर सारी बातें। फिलहाल सुनते हैं एक गीत, आवाज है आशा भोसले की और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में मैं हूं आपके साथ जयती। बात कर रहे हैं उस जमाने की जब खत लिखना किसी रस्म की तरह हुआ करती थी और निभाने वाले बड़े मन से इस रस्म को निभाया करते थे। गांव की गलियों में डाकिये की आहट कभी किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। लोग अपने नाम की पुकार सुनने को बेचैन रहा करते थे। किसी के लिए मायके का खत आता और किसी के लिए परदेश गए पिया का संदेश होता। नवविवाहिता के लिए तो वह लिफाफा जैसे उसके अपने घर की खुशबू लेकर आता और कभी कभी प्रेम में सराबोर होकर वो खत जब नवविवाहिता के पास पहुंचता तो चेहरे पे जो रंग आते थे वो रंग भी देखने लायक होता था। कागज खोलने से पहले ही आंखें जाने कितनी बातें पढ़ लिया करती थी। एक छोटा सा खत कई दिनों की दूरी मिटा देता था। आज आवाज और तस्वीरें तुरंत पहुंच जाती हैं, पर उस कागज को छूकर अपनेपन को महसूस करने की जो बात हुआ करती थी वो बिल्कुल अलग हुआ करती थी। और यही था खतों का वो खूबसूरत सा दौर। आगे और भी बातें करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक गीत। फिल्म का नाम है मेरे लाल, आवाज लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज हम बात कर रहे हैं बीते जमाने में जो खतों की एक दुनिया हुआ करती थी, जब खत लिखना सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। खतों में छुपी होती थी दुनिया भर की बातें, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा इंतजार और न जाने कितनी सारी बातें। कागज के एक टुकड़े में बंद होकर वो खत, जिसे जहां पाना होता था, जब वो खत मिलता था तो पाने वाला भी उन सारे एहसासों से होकर गुजरता था जो लिखने वाला कागज में बंद करके अपने प्रियतम तक पहुंचाता था। गांव की नई दुल्हन को मायके से आया खत सिर्फ कुछ पन्ने नहीं, पूरा अपना घर जैसा लगता था। माँ की लिखावट देखते ही आंखों में आंगन उतर आता। बाबूजी का हाल पढ़ते हुए मन जैसे घर की चौखट तक पहुंच जाता था। भाई की शरारतें, बहन की शिकायतें, सब कुछ कुछ पंक्तियों में समाया होता था। वो खत पढ़कर कई बार तह किया जाता, फिर संदूक या कपड़ों के बीच बड़े जतन से रख दिया जाता, क्योंकि कागज पुराना हो सकता था मगर उसमें लिखे अपने लोगों के शब्द कभी पुराने नहीं होते। शायद इसलिए खतों में आज भी स्मृतियां कहीं ना कहीं जीवित हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है मोहम्मद रफी की।

रात ढली तो पारिजात ने, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से। जैसे नभ ने चुपके से तारे भेजे हों धूलों से। केसरिया डंठल वाले सफेद फूल कितने प्यारे ओस में भीगे लगते हैं, धरती के सपनों से न्यारे। भोर हुई तो शाखें खाली, आंगन फूलों से भर आया। रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया, रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया। भोर की पहली किरण पड़ी, पारिजात मुस्कुराया। रात की गोद से झरकर धरती ने श्रृंगार सजाया। सफेद पंखुड़ियों के बीच केसरिया रंग दमकता है, जैसे किसी चित्रकार ने एक रंग से स्वप्न रचा है। हवा चले तो महक उठे पूरा आंगन पूरा द्वार, इतना कोमल, इतना कोमल फूल की जैसे छू जाए कोई मधुर विचार। पारिजात की इस खुशबू में रात अभी भी बाकी है। भोर भले आ गई हो लेकिन फूलों में अब भी रात बाकी है, फूलों में अब भी रात बाकी है। और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है भाभी।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: चाहिए, अभी तो मरने हो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग दो राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी विधायक छोटे लाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे पिछले दो दिन से बुखार से पीड़ित थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर परिवार उन्हें आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में उनकी तबियत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे लाल वर्मा का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। तंजानिया से कांगो जा रही एक नाव कल टांगानिका झील में उलट गई। हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में लगभग 100 लोग और सामान लदा हुआ था। 49 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate, MDR, on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे खतों की, और भी बातें करेंगे खतों की, उस जमाने की बातें करेंगे, लेकिन जब इतनी बातें हो चली हैं तो क्यों ना हम थोड़ी बातें मौसम की भी कर लें। जी हाँ, बारिश का जाता हुआ मौसम अपने पीछे बहुत सारी

मीठी मीठी यादें छोड़ कर जाता है। बारिश भी हमें बीते जमाने की याद दिलाती है। बचपन में बारिश आती थी तो गली का पानी जो है वो नदी बन जाता था, कागज की नाव बहती थी और उसे बहते देखना किसी बड़े सफर से कम नहीं लगता था। किसी की नाव सबसे आगे निकलती और किसी की मोड़ पर पलट जाती। हारने का दुख भी बस उतनी ही देर रहता जितनी देर दूसरी नाव बनाने में लगती। आज उम्र ने बहुत कुछ सिखा दिया, मगर उस खेल की एक बात अब भी बहुत खूबसूरत है, चल पड़ने के लिए हमेशा बड़ी नाव की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक साधारण सा कागज भी पूरे बचपन को एक छोटी सी नदी दे देता है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है बातों बातों में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है चंबल की कसम।

बात हो रही थी खतों की, पुराने जमाने की। तो खतों के जमाने में इंतजार की भी अपनी खूबसूरती थी। जवाब आने में कई कई दिन लग जाते, लेकिन उन दिनों में हर आहट उम्मीद बनकर आती थी। डाकघर से निकला एक लिफाफा कितनी दूरियां पार करता था, किसी शहर से किसी गांव तक, किसी आंगन से किसी मन तक। आज हम पढ़ लिया और देख लिया, कुछ सेकंड में जान लेते हैं, तब एक जवाब के लिए कई दिन दिल थाम कर बैठना पड़ता था। शायद इसलिए उन दिनों के रिश्तों में शब्दों की कीमत ज्यादा महसूस होती थी। एक खत देर से आता, मगर आते ही जैसे पूरा इंतजार सार्थक कर देता था। सुन रहे हैं आप गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म का नाम है साजन, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

और एक बार फिर से वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है आप आए बहार आए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास

0: मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में सातवीं नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। नदी उत्सव के तहत 6 प्रदर्शनियां इस महीने की 30 तारीख तक हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा। इस 5 दिन के आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये व्यापार मेला 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत पहली बार यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। यह फैसला महाराष्ट्र और पूरे देश की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी से अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग मानचित्र पर पुणे की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, "We are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India." Government sources has emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJ and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission ABDM at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The Ministry of Health and Family Welfare has said Arogya Manthan 2026 will also witness the launch of a number of initiatives aimed at further strengthening India's digital health and health assurance ecosystem. Education Minister Pralhad Joshi will inaugurate the Seva First Innovation Challenge in Bengaluru today. The Education Ministry said the initiative will encourage young people to identify problems

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में हम बातें कर रहे हैं। आज जो विषय लेकर हम आपके पास आए हैं वो है पुराना जमाना, और खासकर जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं खतों की। जी हाँ, जब खतों की बातें चली हैं तो पाना, लिखना, खत भेजना, इन सारी बातों में एक और बात आती है कि खत लिखने वालों के लिए ये भी किसी धुन से कम नहीं थे जो बैठकर खत लिखा करते थे। पहले सोचा जाता था कि क्या लिखना है, फिर शब्द चुने जाते थे, और फिर पन्ने पर एक एक बात बड़ी कारीगरी के साथ उतारी जाती थी। गलती हो जाए तो पूरा पन्ना बदलना पड़ता था, इसलिए लिखे हुए शब्दों में एक ठहराव, एक सावधानी होती थी। शायद इसी कारण पुराने खत पढ़ते हुए हमें सिर्फ लिखा हुआ नहीं, लिखने वाले का मन भी महसूस होता था। हर अक्षर में उसका समय लगा था, हर पंक्ति में उसका इंतजार। यही तो खतों की असली खूबसूरती थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। आज हमने बहुत ढेर सारी बात की, बीते हुए जमाने की, खतों की, बारिश की, पर कुछ बातें खतों की अब भी रहती हैं। ये वो जमाना था जिसकी जितनी बातें करें बातें निकलती चली आती हैं। पुराने घरों के संदूक में कपड़ों के साथ कुछ खत भी बड़े जतन से रखे जाते थे। कागज पीला पड़ चुका होता था, स्याही भी कहीं कहीं हल्की हो जाती, मगर पढ़ने वाले की आंखों में वही कहानी आज भी साफ साफ दिखाई दे रही होती। हर खत किसी बीते हुए रिश्ते का प्रमाण नहीं, हर बीता हुआ समय किसी की धरोहर होता था। उसे खोलते ही कई आवाजें लौटकर आसपास आ जाती थी, मां की, पिता की, किसी भाई की, किसी प्रिय की। आज शायद हम संदेश डिजिटल दुनिया में सुरक्षित करके रख भी लेते हैं, लेकिन पुराने खतों की तरह उन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। कागज सचमुच यादों को एक आकार दे देता था, जिन्हें देखकर, जिन्हें छूकर, जिन्हें पढ़कर हम न जाने कहां से कहां पहुंच जाते। एक गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक गांव के एक छोटे से घर में बैठी हुई नई नवेली दूर अपने पिया के पास परदेश में खतों के माध्यम से पहुंच जाती, और पिया की जो वो भावनाएं थी वो नवेली के पास खतों में सिमट कर पहुंच आती। कितना सुंदर होता था वो दौर, जिस दौर को हम जाने कहां पीछे छोड़ आए हैं। सुन रहे हैं आप रात सुरमई, और अगला गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अर्पण।

0: इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघल कर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ ही हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे दीजिए अनुमति, छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4वां उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों के सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री, मोबाइल ऐप और अन्य शामिल हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बंगलुरु

0: में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिकार नहीं है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
1: संभावना है।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
3: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
2: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stands within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda, will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The Ministry of Health and Family Welfare has said Arogya Manthan 2026 will also witness the launch of a number of initiatives aimed at further strengthening India's digital health and health assurance ecosystem. Education Minister Prahlad Joshi will inaugurate the Seva First Innovation Challenge in Bengaluru today. The Education Ministry said the initiative will encourage young people to identify problems they see in their communities and develop solutions that can be tested, improved and taken towards implementation. The challenge will bring together young participants from schools, industrial training institutes, polytechnics, colleges and universities. The government has reduced the basic customs duty on major imported edible oils to help moderate domestic prices and ease inflationary pressures caused by a rise in global edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said the duty on crude sunflower oil has been reduced to nil, while that on crude soybean and palm oil has been cut from 10% to 5%. The government has also reduced the duty on refined edible oils while maintaining a 19.25% duty difference between crude and refined edible oils.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 5 सेकेंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और रात की इस तन्हाई में कभी कभी जिंदगी की भागती दौड़ती राहों में कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिसकी मौजूदगी भर से दिल को सुकून मिलने लगता है जैसे किसी तपती दोपहर में ठंडी हवा का झोंका जैसे किसी खामोश शाम में दूर से आती हुई कोई मीठी सदाएं और जैसे किसी अधूरी दास्तान को अचानक उसका सबसे खूबसूरत लफ्ज मिल जाए। कहते हैं मोहब्बत सिर्फ किसी का साथ पाना नहीं बल्कि उसके आने से अपने दुनिया को रोशन होते देखना भी है। आज का ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है कुछ ऐसी ही कैफियत अपने अंदर समेटे हुए हैं। एक ऐसा गीत जिसमें मिलन की खुशी है दिल की नरमी और रिश्तों की वो गहराई है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। गुलजार साहब के खूबसूरत अल्फाज और आरडी बर्मन साहब के दिल को छू लेने वाले ये संगीत और लता मंगेशकर जी किशोर कुमार साहब की आवाज तो फिर ये दुनिया ही बिल्कुल अलग सी लगने लगती है। फिल्म आंधी का ये बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमा आपके लिए हमराही के इस महफिल के आगाज में

हो नूर आ गया है। हर इंसान की जिंदगी में कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसके आने की खुशियां इतनी खूबसूरत होती है कि पूरी जिंदगी उसी एहसास के साए में गुजार देने की कोशिश करता है। कहते हैं दिल की किताब का पहला पन्ना हमेशा कोरा होता है, ना कोई कहानी ना कोई अफसाना, बस कुछ अनकहे ख्वाब और अनजाने एहसास। फिर जिंदगी में कोई आता है और उसकी एक मुस्कुराहट, एक नजर, एक मुलाकात उस कोरे कागज पर मोहब्बत की पहली इबारत लिख देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं पड़ती, बस किसी का साथ, उसकी आवाज और उसके होने का एहसास दिल को मुकम्मल कर देता है। आज का अगला ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा गीत जिसमें इश्क की मासूमियत है, जज्बात की रवानी है और प्यार के रंगों से सजे एक दिल की कहानी है। फिल्म आराधना का ये सदाबहार गीत आनंद बख्शी साहब के अल्फाज, एसडी बर्मन का बेहद खूबसूरत संगीत और किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का जादू जो आज भी दिल के किसी खामोश कोने को छू जाते हैं और फिर

ऐसे अल्फाज निकलने लगते हैं। आज अपने दिल के उस कोरे कागज को कुछ हसीन यादों के हवाले करते हैं हम और आप मिलकर। शायद कोई पुरानी मोहब्बत याद आ जाए, शायद कोई भूला हुआ चेहरा मुस्कुरा उठे, या शायद किसी खास शख्स की कमी से ये महसूस हो जाए। कि कोई था हमारी जिंदगी में जिस नगमे के जरिए लौट कर आ गया है।

0: क्या हुआ?
1: अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती।
0: अरे विनू, तुम खाम का घबरा रही हो, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग, मेरे पास आओ।
1: छोड़ दो मुझे, तुम नशे में हो।
0: डार्लिंग डार्लिंग, नशा शराब का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का।
1: मत छुओ मुझे।
0: अरे विनू मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो विनू मेरी बात तो सुनो। विनू रुक जाओ, अरे वापिस आ जाओ, नहीं तो मैं पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगा।
1: दे दो अपनी जान, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं।
0: कोई मतलब? ठीक है, जाता हूँ, बाद में पछताना ना।

0: आ जाओ वरना वरना मैं यहाँ से कूद पड़ूंगी।
1: कूद पड़ो।
2: बड़े अफसोस की बात है, तुमने मुझे इतना खराब समझा, चाय के पानी को शराब समझा। अरे पी के देखो पानी है, ये तुम्हारी टीकाराम का आइडिया।
0: कुछ भी हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तो जान निकल गई थी।
2: मेरी जान तो तुम हो, तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता।
0: अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना।
2: नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता, और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली और सुबह की हर कली खिल उठती है।
0: जाओ।
3: तो दोस्तों ये था ये एक ऐसा नगमा जिसने मोहब्बत के कोरे कागज पर यादों के रंग भर दिए। जिंदगी में चाहे कितने भी मसरूफियात क्यों ना हो, कभी कभी ठहर कर उन एहसासात को याद कर लेना चाहिए जिन्होंने हमें मुस्कुराना सिखाया। आपकी शाम, आपकी रात और आपकी हर सुबह संगीत से महकती रहे, इसी दुआ के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले खूबसूरत नगमे की तरफ। बने रहिए, क्योंकि आपकी फरमाइशें, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत ही हमारे इस रेडियो सफर की असली रौनक है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गीत और संगीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को यूं ही आगे बढ़ाएंगे बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ। फिलहाल ये पैगाम आपके लिए।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट

हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:30:42। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की और मैं हूं आपका हमराही आपके साथ। रात की खामोशी में कुछ नगमे और भी खूबसूरत लगते हैं, और जब बात हो मोहब्बत के उन इशारों की जिन्हें सिर्फ दिल समझता है, तो ये गीत अपने आप में एक हसीन अफसाना बन जाता है। किसी की आंखों में छुपी शरारत, किसी की मुस्कान में बसी नजाकत और किसी के करीब होने का वो एहसास जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है। कभी किसी ने आपको सिर्फ एक नजर से इतना कुछ कह दिया है कि जवाब में आपके पास कोई लफ्ज ही नहीं बचा। अगर हाँ तो शायद आप भी जानते हैं कि इश्क की सबसे खूबसूरत गुफ्तगू अक्सर खामोशी में होती है। तो आइए इसी एहसास को एक बार फिर जीते हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। फिल्म कश्मीर की कली का ये सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कभी किसी की आंखों में छुपा सवाल पढ़ा है आपने? कभी किसी ने मुस्कुरा कर यूं पूछा हो कि दिल में कौन बसा है, और आप जवाब देने के बजाय बस नजरें झुका ले हैं। मोहब्बत की दुनिया भी बड़ी अजीब है दोस्तों। यहां कभी एक सवाल में पूरी दास्तान छुपी होती है, और कभी एक मुस्कान में इकरार होता है, और कभी किसी की छेड़छाड़ भरी बात दिल की धड़कनों को बेकरार कर देती है। अगला यह नगमा भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही चुलबुली मोहब्बत, मीठी नोकझोंक और दिलकश सवालों से सजा हुआ यह नगमा, एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की मासूमियत है, गांव की मिट्टी की खुशबू है, और रिश्तों की वो अपनापन भरी मिठास जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत अल्फाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का बेहद खूबसूरत सुरीला संगीत, और मुकेश जी और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का ये जादू, मिलन फिल्म का ये सदाबहार नगमा हमें याद दिलाता है कि इश्क में सवाल भी कितने हसीन हो सकते हैं, और जवाब का इंतजार भी कितना दिलकश। तो दोस्तों, जरा अपनी फिक्रों को किनारे रखिए, दिल में थोड़ी सी शरारत जगाइए, और याद कीजिए वो लम्हे जब किसी खास शख्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर

वो बेहद खूबसूरत मुस्कान आ जाया करती थी। अब सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मैं फिर से जी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही में मैं ये बेहद खूबसूरत नगमों को लेकर हाजिर हूँ आपके।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। आप तमाम लोगों के बेहद खूबसूरत पैगाम हम तक पहुँच रहे हैं, कोशिश करेंगे उन्हें भी हम शामिल करें, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ। दोस्तों कहते हैं इश्क भी कितना अजीब है ना, कभी दिल को सुकून देता है, कभी चेहरे पर मुस्कान लाता है, और कभी किसी की एक नजर, एक अदा, एक प्यारी सी बात हमें इस कदर बेकरार कर देती है कि दिल बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपकी जिंदगी में यूं दाखिल हो जाए जैसे कोई मीठी धुन खामोश शाम में उतरती चली जाती है, उसकी आवाज सुनते ही दिल खिल उठते हैं, उसकी मुस्कान देखते ही वक्त थम सा जाता है, और उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा एक हसीन याद बन जाती है। फिर दिल कहता है, हुजूर ये मोहब्बत है या कोई जादू। अगला यह नगमा भी कुछ ऐसी ही शरारत वाला है, कुछ ऐसा ही बेकरारी, ऐसी ही बेकरारी और ढेर सारी मोहब्बत से सजा ये बेहद खूबसूरत नगमा मजरूह सुल्तानपुरी साहब के दिलकश अल्फाज और आरडी बर्मन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत, किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का वो जादू जो सुनते ही दिल में इश्क की हल्की सी लहर दौड़ा दे। फिल्म मेरे जीवन साथी का ये खूबसूरत नगमा जिसमें मोहब्बत की शरारत भी है, इकरार की मिठास भी है, और किसी खास शख्स के लिए दिल की वो बेकरारी भी जिसे छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। दिल को थोड़ा सा और मचलने दीजिए और उस खूबसूरत एहसास में खो जाइए जहां कोई आपको इतना प्यार, इतना प्यारा लगने लगे कि शिकायत भी मोहब्बत जैसे महसूस हो जाए।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये था मोहब्बत की शरारत और दिल की बेकरारी से सजा बेहद खूबसूरत नगमा। कभी कभी किसी गीत में हमें अपनी ही कहानी सुनाई देने लगती है, किसी की याद, किसी की मुस्कान या किसी के साथ बिताया हुआ वो खूबसूरत लम्हा जिसे हम आज भी दिल में सजो कर रखते हैं, वो तमाम चीजें याद आने लगती है ऐसे नगमों को सुनने के बाद। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हैं हमराही की इस दिलकश महफिल में। बहुत सारे पैगाम हम तक पहुंचे हैं, जिनमें फहीम साहब ने एक पैगाम भेजा है जम्मू से, किशन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है लेकिन दिल की गहराइयों से अपना प्यार भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ कुंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कुंवर सिंह ये पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है और आप हमें सुनते हैं, आपको पसंद आता है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिल के करीब जो नगमे हैं उन्हें ही हम आपके लिए लेकर आएँ ताकि आप उसे और पसंद करें और बेहद मोहब्बत के साथ हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आगे बढ़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। दोस्तों कहते हैं संगीत की कोई जबान नहीं होती, वो दिल से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंच जाता है। कभी किसी धुन पर पांव खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, कभी कोई ताल हमारी हथेलियों को ताली बजाने पर मजबूर कर देती है, और कभी कोई गीत ऐसा होता है जिसमें मोहब्बत भी होती है, मस्ती भी होती है और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी। अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, इसे सुनकर आप यकीनन जरूर गुनगुनाएंगे भी और झूमने भी लगेंगे। एक ऐसी धुन जिसमें लोक संगीत की मिठास है, इश्क की शरारत है और दिल को झूमने पर मजबूर कर देने वाली बेहद खूबसूरत आवाजें हैं। एक महफिल हो, चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे हो, ऐसा सोचें आप, और साथ ही साथ किसी की आंखों में प्यार हो, किसी की बातों में नटखटपन हो और फिर बज उठे ये बेहद खूबसूरत नगमा जो आपके दिल में उतर जाए, तो मत पूछिए मौसम क्या होगा, समय क्या होगा और अंदाज क्या होगा।

0: सरगम फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए हमराही से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा ठीक 4:10 पर लेकर अगला प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा साथ यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4th उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय, स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बरबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with PM of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The Ministry of Health and Family Welfare has said Arogya Manthan 2026 will also witness the launch of a number of initiatives aimed at further strengthening India's digital health and health assurance ecosystem. Education Minister Pralhad Joshi will inaugurate the Seva First Innovation Challenge in Bengaluru today. The Education Ministry said the initiative will encourage young people to identify problems they see in their communities and develop solutions that can be tested, improved and taken towards implementation. The challenge will bring together young participants from schools, industrial training institutes, polytechnics, colleges and universities. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the implementation of the two-state solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Government sources has emphasized that merchant discount rate on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported edible oils to help moderate domestic prices and ease in

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 6 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं उन तमाम बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हूं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है और हमें एक नई सोच के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में अगर कोई सच्चा हम सफर मिल जाए तो छोटी सी दुनिया भी पूरी कायनात जैसे लगने लगती है, और जब साथ में मोहब्बत हो, भरोसा हो और दिल से निकली हुई एक प्यारी सी दुआ हो तो फिर और क्या चाहिए। आज का यह नगमा भी कुछ ऐसा ही है जिसे आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। ये बेहद खूबसूरत नगमा कैफियत बयान करता है आपके दिल की, आपके जज्बात की। जहाँ किसी महबूब का साथ मिलना कोई अपना हो जाना जैसे पूरी दुनिया मिल जाने के बराबर है। फिल्म नया दौर का ये बेहद खूबसूरत नगमा जिसे अपनी पुरकशिश आवाज में मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने सजाया है। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर साहब के बेहद खूबसूरत संगीत से सजा ये नगमा जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो जरा दिल को सुकून दीजिए, आराम दीजिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और महसूस कीजिए वो खूबसूरत एहसास जिसे आप दिल की गहराइयों से चाहते हैं और आप पसंद करते हैं। आपका अपना ये पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे से आज के सफर का आगाज करते हैं।

मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म नया दौर से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त जुड़े हैं आप अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। जिंदगी एक ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ अपने साथ एक नया एहसास लेकर आता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी थोड़ी मुश्किल, कभी कोई अपना साथ चलता है तो कभी कुछ खूबसूरत यादें ही हम सफर बन जाती हैं। लेकिन किसी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर गुजरता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए जो बीत गया उसे शिकवा बनाकर नहीं, याद बनाकर रखिए, और जो आज आपके पास है उसे पूरे दिल से सजा लीजिए। क्योंकि जनाब वक्त की अपनी रवानी है, ये ठहरता ही नहीं, बस आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो क्यों ना इस सफर में हम भी हर पल को मुस्कुरा कर सलाम करें और आने वाले कल के लिए दिल में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी रोशनी और ढेर सारा प्यार रखें। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ, इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ आगे बढ़ते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में फिल्म आपकी कसम का ये बहुत ही प्यारा नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है आर डी बर्मन साहब का। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर ये जिंदगी के फलसफे को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है ये नगमा।

जी हाँ, जिंदगी के सफर में जो मकाम गुजर जाते हैं वो शायद फिर लौट कर कभी नहीं आते। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स हमसे दूर हो जाता है, मगर उसकी यादें दिल से कभी दूर नहीं होती। वो भले ही हमसे कुछ तो दूर चला गया हो, हमेशा के लिए भी चला गया हो, लेकिन उसकी यादें हमारे इर्द गिर्द हमारे दिल में बसी रहती हैं। और शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात है। फासले बढ़ सकते हैं, मगर सच्ची भावनाओं की रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। इंतजार हमेशा सिर्फ किसी के लौटने का नहीं होता, कभी कभी इंतजार होता है उस एक खुशखबरी का, उस एक मुस्कान का, या उस पल का जब जिंदगी फिर से कोई हसीन मोड़ ले ले। तो अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई उम्मीद, कोई दुआ या कोई ख्वाहिश बाकी है तो उसे संभाल कर जरूर रखें, क्योंकि उम्मीद का दिया छोटा जरूर होता है, मगर अंधेरी रात में उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है। और इसी एहसास को बड़ी ही खूबसूरती से आवाज देते हैं आशा भोसले और भूपेंद्र, फिल्म एतबार के इस खूबसूरत यादगार नक्शे के साथ। इस गीत को लिखा है हसन कमाल साहब ने और संगीत है बप्पी लहरी साहब का। तो आइए दिल की खिड़की जरा खोलिए, पुरानी यादों को मुस्कुराकर याद कीजिए और सुनिए मोहब्बत, इंतजार और उम्मीद से सजाइए बेहद खूबसूरत गीत, ये बेहद खूबसूरत कलाम। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कुछ इंतजार हमें कमजोर नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत और उम्मीद की गहराई से रूबरू कराता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:37 और 38 सेकेंड। महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। रात के इस तन्हाई में प्यार मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, जिंदगी में आने वाले मुश्किलात और उससे किस तरीके से डटकर मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ें, जब कोई साथी आपका साथ हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है, इन तमाम मौजूदात पर हम और आप बातें भी कर रहे हैं और मिलकर इस सफर को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, और आप अपने पैगामात हमें ईमेल्स के ज़रिए भेज सकते हैं, और ईमेल के ज़रिए हमारा पैगामात पहुंचाने के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप हमें इस पर मेल कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम हम तक पहुंचाएं, तब तक हम आपके लिए जो बेहद खूबसूरत चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नाम या पहचान की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे पर एतबार हो तो रिश्ता खुद ब खुद खूबसूरत बन जाता है। कहा यह भी जाता है कि वादे शब्दों से नहीं उन्हें निभाने से खूबसूरत बनते हैं। मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थामे रखना, खुशियों में दिल खोलकर साथ मुस्कराना और हर हाल में अपने रिश्तों की कदर करना, यही तो सच्ची मोहब्बत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर हम किसी को एक चीज दे सकते हैं तो वो है भरोसा, क्योंकि भरोसा वो दौलत है जो रिश्ते को वक्त के साथ और भी मजबूत बनाते हैं। तो आज जरा उन लोगों को याद कीजिए जिनसे आपने कभी कोई वादा किया था, और अगर मुमकिन हो तो उस वादे को फिर से दिल में ताजा कीजिए। आखिर रिश्तों की असली खूबसूरती तो साथ होने में ही है ना, साथ निभाने में ही है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आगे बढ़ेंगे अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में, और इसी खूबसूरत एहसास को अपनी आवाज में पिरो रहे हैं किशोर कुमार साहब और लता जी फिल्म कसमे वादे के इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा है हम सब के प्यारे RD बर्मन साहब।

कस्में वादे निभाएंगे हम, जिंदगी की ये बेहद खूबसूरत चीजें हैं जो भरोसे वादों पर चलती है और उसे निभाने वाला ही सच्चा इंसान होता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। दोस्तों, कई बार हमें लगता है जिंदगी कितनी अजीब है, लगता है ना, आपको भी लगता होगा। और कई बार हमें ये लगता है कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, बेशुमार मोहब्बत, बेशुमार प्यार। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन देखते ही देखते पल, दिन और साल यादों का हिस्सा बन जाते हैं। शायद इसीलिए जिंदगी हमें हर रोज एक छोटा सा पैगाम देती है। जो पल आज आपके पास है, उसे पूरे दिल से जी लीजिए। क्या पता ये कल फिर हो या ना हो। नाम, शोहरत, दौलत, कामयाबी अपनी जगह, लेकिन इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि उसने अपनी मौजूदगी से कितने दिलों में खुशियां बांटी, मोहब्बत और उम्मीदें छोड़ी उसके दिल में। तो आने वाले कल की फिक्र में आज को मत खोइए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। किसी अपने से दो मीठे बोल बोल दीजिए, किसी चेहरे पर मुस्कान ले आइए और अपनी छोटी सी खुशी को भी पूरे एहसास के साथ महसूस कीजिए। क्योंकि वक्त का सफर चलता रहता है, लेकिन हमारे अच्छे लम्हे, हमारी बातें और हमारी यादें किसी न किसी के दिल में ठहर जाती हैं। इसी बेहद खूबसूरत फलसफे को अल्फाज दी है साहिर लुधियानवी साहब ने, आवाज दे हम सब के प्यारे मुकेश ने और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। और ये नगमा है 1976 में आई फिल्म कभी कभी से। मैं पल दो पल का शायर हूं। और आज की छोटी सी बात याद रखिए, जिंदगी कितनी लंबी है ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हर पल को कितना खूबसूरत बनाना है ये जरूर हमारे हाथ में है। तो मुस्कुराते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए और अपने हर आने वाले पल का खैर मकदम कीजिए, इस्तकबाल कीजिए और जिंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए इस नगमे की तरह।

मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुकेश साहब की बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज़ यकीनन हम सबके जहन में कहीं ना कहीं हमेशा के लिए बस गई है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल है अरुणिमा की, और आप तमाम लोगों के पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे लेकिन इस अगले नगमे के बाद। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा पल आता है जो बहुत साधारण होते हुए भी दिल में एक खास जगह बना लेता है। किसी अपने को देखना, उसकी मुस्कुराहट महसूस करना और अचानक दिल में एक खूबसूरत सा ख्याल आ जाना, शायद जिंदगी की असली खूबसूरती भी इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छुपी है। हम बड़ी खुशियों की तलाश में अक्सर उन छोटी नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हर रोज़ हमारे आसपास होती हैं। एक प्यारी मुस्कान, किसी अपने की आवाज़, साथ बैठकर की गई छोटी छोटी सी बातें। तो आज ज़रा ठहरिए, अपने आसपास के लोगों को महसूस कीजिए और उन रिश्तों के लिए शुक्रगुजार रहिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को मायने देते हैं। क्योंकि खुशी हमेशा किसी बड़ी मंजिल पर नहीं मिलती, कभी कभी वो रास्ते में ही मिल जाती हैं, किसी की आंखों में, किसी की बातों में और किसी खूबसूरत मुलाकात में। और ऐसे ही एहसासात हर रोज़ हम कहीं ना कहीं ज़रूर देखते हैं, महसूस करते हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है, नगमा कह ले या गलाम कह ले, जो आज के लिए बेहद खूबसूरत है। जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में, जिसे लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और संगीत है कुलदीप सिंह साहब का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तू घना साया। बेहद खूबसूरत आवाज जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी की। अब तमाम लोगों के पैगाम हम तक पहुंचे हैं, वक्त है कि हम उन्हें भी शामिल करते हुए आगे बढ़ें। तो हमारे पास जो पैगाम आया है वो आया है, अरविंद साहब हमसे जुड़े हैं, सुशांत प्रिया हमसे जुड़ी हैं और फहीम साहब हमसे जुड़े हुए हैं, साथ में किशन जी हैं जो जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम इन सबको बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है और साथ ही साथ डॉक्टर कुंवर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। और एक और पैगाम हम तक पहुंचा है पटना से, नीरज कुमार गुप्ता जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बेहद खूबसूरत पैगाम हम तक पहुँचाने के लिए। इसी के साथ आज के इस अरुणिमा को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद मैं एक बार फिर आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी, जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बेहद खूबसूरत बातें होंगी और किस तरीके से जिंदगी को

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी 29 सितम्बर तक चलेगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शक, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार देश हैं। करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल दिसंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें पीएएफआई वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। श्री जॉर्ज ने सत्र को संबोधित करते हुए विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। ये सत्र विकास के अधिकार संबंधी घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी एक कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 30% से अधिक नहीं होगी जिन्हें इतालवी भाषा का बहुत कम ज्ञान है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि नियमों का उद्देश्य बच्चों को समाज में बेहतर तरीके से जोड़ना है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। नई सुबह नई उम्मीदें और एक नया दिन यानी जिंदगी ने हमें फिर एक बार बेहतरीन शुरुआत का मौका दिया है। हर सुबह अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है, कल चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो आज की सुबह नई है और नई सुबह में हम नए नजरिए के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जो रास्ते कल बंद नजर आ रहे थे हो सकता है आज उनमें कोई नया रास्ता दिखाई दे। बस जरूरत है थोड़े से हौसले, थोड़े से सब्र और एक खूबसूरत सी उम्मीद की। और जब राह मुश्किल लगे तो दिल से एक दुआ निकलती है, ऐ खुदा मुश्किलों को आसान कर दे, ऐ ईश्वर हमारी राह को आसान कर दे, हमारे इरादे को मजबूत कर दे और हमारे कदमों को सही रास्ता दिखा दे। और हम जो भी काम शुरू करते हैं उसे खुदा उसे ईश्वर के नाम से करते हैं और इसीलिए तो हम हर दिन का आगाज उसके नाम से करते हैं। लेकिन याद रखें दुआ के साथ साथ कोशिश भी जरूरी है, क्योंकि मंजिल सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, उसकी तरफ उठाया गया हर छोटा कदम हमें मंजिल की तरफ लेकर जाता है, मंजिल के करीब लेकर जाता है। तो आज इस नई सुबह का एक हम भी वादा खुद से करें, जो मेरे बस में है मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा और जो मेरे बस में नहीं है उसे फिक्र नहीं दुआ के हवाले कर दूंगा। और इसी खूबसूरत उम्मीद और इल्तिजा के साथ आज के सफर का आगाज करेंगे मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में ये नगमा, मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा।
1: मुश्किलें
0: पैगाम फिल्म का ये नगमा है जो हम सबके दिल के बेहद करीब है।

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन का आगाज करते हैं। हम हर काम उसी खुदा उसी ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है भोर सुहानी की, और इस नई सुबह में मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ।

स्वागत करता हूँ। दोस्तों जरा सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर है तो समय उसका सबसे खामोश हमसफर है। शायद आप भी ऐसा ही मानेंगे। वो न रुकता है न पीछे लौटता है, बस हमें हर दिन कुछ नया सिखाता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। कभी समय के दर्पण में हमें अपनी पुरानी यादें दिखाई देती हैं, कुछ खुशियां, कुछ शिकवे, कुछ अधूरे ख्वाब। लेकिन गुजरे हुए कल का मकसद हमें रोकना नहीं बल्कि बेहतर आज की तरफ ले जाना है। इसीलिए जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दीजिए, गुजर जाने दीजिए। जो आज मिला है उसकी कदर कीजिए और जो कल आने वाला है उसके लिए दिल में उम्मीद और हौसला रखिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों से होकते हुए गुजरती है जो हमें रास्ते में मिलती है। इसीलिए हर लम्हे को पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई से जिए। एक प्यारी सी बात भी याद रखिए, वक्त बदलता रहता है और यही बदलाव जिंदगी को नया अर्थ देता है। मुश्किल दौर हमेशा नहीं रहता, जैसे अच्छी सुबह भी हर रात के बाद आती है, तो आज अपने अतीत से सीखिए, वर्तमान को जी भर कर जिए और भविष्य का खैर मकदम करते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। ऐसा ही पैगाम अगला यह नगमा लेकर आया है। सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ और आशा भोसले जी उनका साथ दे रही हैं इस बेहद खूबसूरत नगमे में।

समय के दर्पण में आओ मिलजुल कर एक सपना देखें। सचमुच मिलजुल करके ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों कहते हैं ना, हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है जैसी चीजों को हम अपने दिल और दिमाग में जगह देते हैं। तो क्यों ना आज से एक छोटी सी कोशिश की जाए, बुरा ना देखें, बुरा ना सुनें और बुरा बिल्कुल भी महसूस ना करें। दुनिया में नकारात्मक बातें कम नहीं हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा ये चुनाव रहता है कि हम अपने दिल में क्या जगह देना चाहते हैं। किसी की अच्छी बात सुनकर उसे आगे बढ़ाइए, किसी के चेहरे पर मुस्कान देकर मुस्कुरा दीजिए, और अगर कोई बात आपके मन को सुकून को छीन रही हो तो उसे थोड़ा सा फासला जरूर बना लीजिए। क्योंकि जनाब, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और ये बातें हर रिश्ते में कायम जरूर रखें। कभी कभी खामोशी भी एक बहुत खूबसूरत जवाब होती है। और हाँ, जिंदगी में सिर्फ अच्छा देखना ही काफी नहीं है, अच्छा करना और अच्छा बांटना भी जरूरी है। एक छोटा सा नेक काम किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकता है, किसी का पूरा दिन बेहद खूबसूरत बना सकता है। तो आज के दिन की शुरुआत भी हम भी ऐसे ही करें, एक अच्छी और साफ नीयत के साथ। दिल में किसी के लिए नफरत नहीं हो, जबान पर किसी के लिए बुराई नहीं हो, और जहां तक मुमकिन हो अपने आसपास खुशियों की थोड़ी सी रोशनी जरूर फैलाएं, वो भी बगैर किसी भेदभाव के। और इसी मस्त मौला खुशमिजाज मिजाज के साथ आगे बढ़े और ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमा सुने रफी साहब की आवाज में, फिल्म आया सावन झूमके से।